हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की सातवीं तिथि, तदनुसार 28 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 हुए हैं। मंगल ध्वनि के साथ अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, कुछ ही लम्हों बाद सुबह के 6 बजा चाहते हैं। अब हिंदी समाचारों के लिए आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र लिए चलेंगे। उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे विविध भारती से कार्यक्रम वंदन वार। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आपके साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगे। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय

कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन ने बकरी ईद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर टू मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेंगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार। प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन। भर्तृहरि के नीतिक शतकम के अनुसार विद्वान होने पर भी दुष्ट मनुष्य सर्वथा परित्याग करने योग्य होता है, क्योंकि जैसे मणि धारण करने से सांप की भयंकरता कम नहीं होती, वैसे ही विद्या से अलंकृत दुर्जनों की स्वाभाविक दुष्टता का नाश भी कभी नहीं होता। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से थोड़ी देर में सुबह 6:35 से सुनेगा श्री रामचरित मानस गान भाग 202। सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से आपको सुनवाएंगे संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला कर्नाटक संगीत पद्धति के राग। कलाकार हैं शकुंतला नरसिंहन। आज श्रृंखला की 6 कड़ी आप सुन सकेंगे। भूले बिसरे गीत, ये कार्यक्रम 7 बजे से।

सुबह 7:30 सुनेगा हम है राही प्यार के, 8:15 से सुनवाएंगे त्रिवेणी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सुबह 8:30 से चित्रलोक, सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से सुनेगा आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा निर्देशक महबूब खान पर। आज सुबह 10 से पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान, इसके अंतर्गत आप सुनिएगा डॉक्टर सुनीता दुबे से यूनुस खान की बातचीत, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। सुबह 11 रात्रि 11 से रंग तरंग, दिन में 12:05 से यादों की महफिल।

दोपहर 1 बजे से सुरीला सफर, दोपहर 2 बजे से त्रिवेणी, 2:30 से आपको सुनवाएंगे दो सदाबहार नंग में। सखी सहेली इस कार्यक्रम का वक्त होता है दोपहर 3 बजे से। इसके अंतर्गत अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत के चलमल नारियल अम्मा की कहानी, मुझे कुछ कहना के अंतर्गत गेमिंग का दलदल, उपयोगी टिप्स के अंतर्गत किचन टिप्स, संवादक हैं सोनाली पाठक और आरती श्रीवास्तव, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। शाम 4 बजे से हेलो फरमाइश, संवादक हैं मंदाकिनी जोशी, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। छाया गीत का पुनर्प्रसारण आप सुनते हैं शाम 5:30 से सुनेगा तराने नए पुराने। झरोखा शाम 6:30 से, 6:35 शाम संध्या रंजन। जयमाला सुनवाएंगे शाम 7 बजे से। शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए के अंतर्गत अभिनेत्री प्रकृति नौटियाल से यूनुस खान की बातचीत सुनेगा प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। रात्रि 8 बजे से हवा महल के अंतर्गत नाटक यादों की परछाइयां भाग 4, लेखन सुरेंद्र गुलाटी का, निर्देशन दीनानाथ। रात 8:15 से चित्रलोक, रात 9 बजे से आपके लिए, और रात्रि 10 बजे से सुनेगा छाया गीत, आलेख एवं स्वर संगीता श्रीवास्तव, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात 10:30 से आपको सुनाएंगे कार्यक्रम ढलती जाए रात। अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत कार्यक्रम

पृथ्वीराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचकर भरत पुलकित हैं। हृदय में श्री राम सीता और लक्ष्मण के लिए उमड़ते स्नेह से आंखों में आंसू उमड़ आए हैं। निर्दोष भाव से वे भरद्वाज जी के सम्मुख अपने उद्गार प्रकट करते हैं। उन्हें अपनी माता कैकेयी की करने का कोई विषाद नहीं है और न ही पिता के निधन का शोक है, क्योंकि दिवंगत महाराज का पुण्य और सुयश समस्त जगत में विदित है। जिन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र पाए और पुत्र विरह में नाशवान शरीर त्याग दिया, ऐसी पुण्यात्मा के लिए शोक करना तो उसकी मर्यादा के प्रति अपमान होगा। भरत को सोच इस बात का है कि राम लक्ष्मण तथा सीता मुनियों का वेश धारण कर वन वन फिर रहे हैं, वलकल वस्त्र पहनते हैं, कंदमूल का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों की छाया में सर्दी गर्मी वर्षा और हवा के झोंके सहते हैं। इसी दुख से भरत की छाती फटती है, न भूख लगती है न नींद आती है। इस दुख का निदान उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देता। निदान मात्र एक है, श्री राम को अयोध्या लौटा लाना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती से कार्यक्रम वंदनवार। FM 102.3 MHz पर हम आपकी सेवा में आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए पेश खिदमत है कार्यक्रम रूपरेखा। आपके खिदमत में हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का मिला जुला खुलासा।

श्रोताओं, पहले आपकी खिदमत में हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का खुलासा हम करते हैं। अब से कुछ ही देर बाद प्रातः 6:55 पर संस्कृत समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 7:00 हिंदी समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी समाचार भी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होंगे। हरियाणवी लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग आप सुनेंगे आज सुबह 7:10 पर। और श्रोताओं, आज सुबह 7:40 पर आप आनंद ले सकते हैं कार्यक्रम सुप्रभात का।

श्रोताओं, आज सुबह 8 बजे समाचार प्रभात के लिए हम आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र लिए चलेंगे। 8:15 पर अंग्रेजी समाचार भी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होंगे। प्रातः 8:30 पर विविध भारती से आप सुनेंगे सदाबहार सुरीले कार्यक्रम भारत की गूंज। ये कार्यक्रम प्रातः 9 बजे और 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम भी आप सुन सकते हैं विविध भारती से।

श्रोताओं, कार्यक्रम नमस्ते हिसार हम आपके लिए लेकर हाजिर होंगे सुबह 10 बजे। 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम आप विविध भारती से सुनेंगे और 12 बजे कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती से ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। दिन में 1:10 पर गीतमाला कार्यक्रम भी आप विविध भारती से सुनेंगे। दिन में 1:05 पर प्रादेशिक समाचारों के लिए हम आपको आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र लिए चलेंगे। दोपहर 2:30 पर सदाबहार फिल्मी नगमे हम आपको सुनवाएंगे विविध भारती से और दिन में 3 बजे सखी सहेली कार्यक्रम का लुत्फ आप उठा सकते हैं विविध भारती से। श्रोताओं, दिन में 4 बजे सैनिकों के नाम संदेश हम कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 5 बजे आप हमारे केंद्र से सुनेंगे कार्यक्रम थारी म्हारी पसंद। प्रभु वंदना का कार्यक्रम आज शाम सुनेगा भक्ति संगीत 6:20 पर। श्रोताओं, 6:30 पर एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे उमंग। आज शाम 7 बजे किसानवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम महारे गांव। ये कार्यक्रम आपके लिए पेश होगा आज शाम 7:30 पर। श्रोताओं, आज रात्रि 8 बजे आप आनंद लीजिएगा पंजाबी गीतों का। रात्रि 8:30 पर आज रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने कार्यक्रम और आज रात 10 बजे आप हमारे केंद्र से सुनेंगे ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम।

आई श्रोताओं, अब आपको हम हल्की जानकारी दे दें हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। श्रोताओं, कल हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी प्रातः 5:55 पर। सुबह 6 बजे हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे और कल सुबह 6:05 पर कार्यक्रम वंदनवार आप सुनेंगे विविध भारती से। कार्यक्रम रूपरेखा आपकी पेशे खिदमत होगी कल प्रातः 6:45 पर। 6:55 पर संस्कृत समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होंगे। 7 बजे हिंदी समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी समाचार भी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होंगे। लोकरंग कार्यक्रम का आप आनंद ले सकते हैं कल सुबह 7:10 पर और 7:40 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुप्रभात।

श्रोताओं, समाचार प्रभात हम कल प्रातः 8 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 8:15 पर अंग्रेजी समाचार भी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होंगे। भारत की गूंज, ये कार्यक्रम कल प्रातः 9 बजे विविध भारती से होगा और आज के फनकार कार्यक्रम 9:30 पर होगा विविध भारती से। नमस्ते हिसार, इस कार्यक्रम का आप कल सुबह आनंद लीजिएगा 10 बजे।

श्रोताओं, रंग तरंग कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे विविध भारती से यादों की महफिल। ये कार्यक्रम दिन में 12 बजे आप सुनेंगे विविध भारती से। दिन में 1:10 पर गीतमाला कार्यक्रम का आप आनंद लेंगे विविध भारती से। और श्रोताओं, दिन में 1:05 पर प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं, दिन में 2:30 पर सदाबहार फिल्मी नगमे हम आपको सुनवाएंगे विविध भारती से। और दिन में 3 बजे सखी सहेली कार्यक्रम भी आप विविध भारती से सुनेंगे। श्रोताओं, कल दिन में 4 बजे गीतों भरी कहानी आप सुनेंगे विविध भारती से। और कल शाम 5 बजे आप हमारे केंद्र से सुनेंगे फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम हेलो हिसार। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे कल शाम 6:20 पर। और 6:30 पर एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे। कल शाम 7 बजे खेती किसाना सेते ये कार्यक्रम आपके लिए पेश होगा। और 7:30 पर कार्यक्रम होगा म्हारे गांव।

श्रोताओं, कल रात्रि 8 बजे आप हमारे केंद्र से सुनेंगे पंजाबी गीत और रात्रि 8:30 पर कार्यक्रम होगा एक ही फिल्म से। कल रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या के लिए हम आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र लिए चलेंगे। और श्रोताओं, कल रात्रि 10 बजे आप हमारे केंद्र से सुनेंगे कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे।

अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का मिला जुला खुलासा। ये आकाशवाणी हिसार है, FM 102.3 MHz पर। आइए श्रोताओं, संस्कृत समाचारों के लिए हम आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र ले चलते हैं। प्रतीक्षा के हल्के से पल हमारे साथ।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियानम् 2.0 इत्यस्य प्रभावपूर्ण क्रियान्वयनस्य आवश्यकतामुद्दिश्य सबलं प्रोक्तवान् यत् अभियानम् आधारभूत संरचना निर्माणमतिक्रम्य नियमित निरीक्षणेन नागरिक सहभागितया अथ विभिन्न हितधारकाणां समन्वयेन मापन योग्य परिमाणान् सुनिश्चितं कुर्यात्। नवदिल्ल्याम् 150वें प्रगति उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्रीमोदी राज्येभ्यः निर्दिष्टवान् यत् अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्राणि सहैव गोबरधन संयंत्राणि च सम्मिलितं कृत्वा कठोर अपशिष्ट प्रबंधन संबद्धानां आधारभूत परियोजनानां कार्यं शीघ्रं पूर्णं कुर्वन्तु। उपवेशनावधौ प्रधानमन्त्रिणा 30,000 कोटि रूप्यकाणां सप्त महत्वपूर्ण परियोजनानां समीक्षा विहिता। सः अवोचत् यत् विद्युत् व्ययं न्यूनीकर्तुं ऊर्जा सुरक्षां वर्धयितुं गृह सामुदायिक स्तरे च स्वच्छ ऊर्जायाः प्रसारार्थं रूफटॉप सौर योजना मिशन मोड रूपेण स्वीकरणीया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अद्य गैंगटॉक नगरस्य पालजोर क्रीडांगणे आयोजिते समारोहे सिक्किम आरक्षीबलाय प्रतिष्ठितं प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति सर्वोच्चं सम्माननं प्रदास्यति। एतेन सह सिक्किम राज्यं सम्मानमिदं प्राप्तुं देशस्य 15वें राज्यं तथा उत्तर पूर्व क्षेत्रस्य 3वें राज्यम् अभवत्। प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति सम्माननं देशे कस्यापि आरक्षीबलस्य असाधारण सेवायाः सुदृढ़ अनुशासनस्य राष्ट्रं प्रति निष्ठायाः च कृते दीयमानं सर्वोच्चं औपचारिक सम्मानं वर्तते। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा CBSE इत्यनेन हैदराबाद स्थितस्य शैक्षणिक तंत्रज्ञान संस्थायै कोइम्ट एड्युटेक इत्यस्मै परीक्षा परिणामानुबंध आवंटनस्य विषये आरोपाः निराकृताः। एकस्मिन् सामाजिक अंतर्जालीय पटलीय संदेशे CBSE इत्यनेन आरोपाः त्रुटिपूर्णः भ्रमात्मकः तथ्यहीनास्ति इति प्रतिपादितम्। परिषदा उक्तं यत् संस्थायै अनुबंध प्रदाने सामान्य वित्तीय नियमानां नियमावल्याः च निष्ठापूर्वकं पालनं कर्तव्यम्। परिषदा सूचितं यत् 26,000 वर्षस्य बोर्ड परीक्षायाः उत्तरपुस्तिकानां डिजिटल मूल्यांकनेभ्यः RFP इति गतवर्षस्य अगस्तमासे केन्द्रीय सार्वजनिक क्रयण पोर्टल इत्यत्र आरभ्य योग्याय निविदानुबन्धः प्रदत्तः आसीत्। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः अद्य गुजरात राज्यस्य यात्रां प्रति एष्यति। स्वयात्रावधौ गृहमंत्री अहमदाबाद गांधीनगर मण्डलयोः प्रायः 12 जनोपयोगी शिक्षा ग्रामीण आधारभूत संरचना परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विधास्यति। ईद उल अजहा अद्य कृत्स्ने उत्तर प्रदेशे सोत्साहं सोल्लासं आचर्यते। बकरीद पर्व निर्विघ्नेन आचरितुं प्रशासनेन विस्तृता व्यवस्था कृतास्ति। राज्य सर्वकारेण सर्वेषां मंडल आरक्षि प्रमुखाणां कृते संचेतना च प्रसारिता अस्ति यत् क्षेत्रे नूतन परंपरायाः आरंभः न भवेत्, निषिद्धानां पशूनां बलिः न भवेत् इति सुनिश्चितं कर्तव्यम्। अन्ते च क्रिकेट क्रीडायां IPL क्रिकेट स्पर्धायां गतरात्रौ न्यू चंडीगढ़ नगरे क्रीडिते एलिमिनेटर द्वंद्वे राजस्थान रॉयल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलं 47 धावनांकैः पराजितम्। राजस्थान रॉयल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलस्य सम्मुखं 44.2 धावनांकानां लक्ष्यं स्थापितम् आसीत्। प्रत्युत्तरे हैदराबाद दलं केवलं 96.1 धावनांकानेव अवाप्नोत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
2: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधन परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृहमंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाट लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को पूरा करने का आग्रह किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने हैदराबाद की एक कंपनी क्वेम्प्ट एडुटेक को परीक्षा मूल्यांकन का कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने में किसी भी तरह की गड़बड़ी के आरोपों को खारिज किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने इन आरोपों को भ्रामक और निराधार बताया। बोर्ड ने कहा कि कंपनी को अनुबंधित करने में उसने सामान्य वित्तीय नियमों का पूरी तरह से पालन किया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि बोर्ड परीक्षा 2026 की उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन के लिए सरकारी नियमों के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की गई थी। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मैच खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Sunil Verma. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlines that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi, Mr. Modi asked states to expedite the completion of solid waste management related infrastructure, including waste processing plants and Gobardhan plants. During the meeting, the Prime Minister reviewed 7 critical infrastructure projects across the railways, power and road sectors, covering 9 states worth around 30,000 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, PDS, including ration transport, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement regarding the cabinet's decision while briefing media in New Delhi.
4: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं.
5: 3 मेजर रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोग्राम टुडे. फर्स्ट, द गवर्नमेंट विल सपोर्ट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड इन मूविंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम लार्ज एफसीआई वेयरहाउसेस इन द स्ट्रीट्स टू फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स. सेकंड, देयर वाज अ नीड टू इंक्रीज द रेम्युनरेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एंड अ डिसीजन हैज बीन टेकन इन दिस रिगार्ड एज वेल. थर्ड, एफर्ट्स विल बी मेड टू मॉडर्नाइज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी.
4: पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं?
3: यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज डायरेक्टेड अथॉरिटीज टू स्ट्रिक्टली एनफोर्स जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स इलीगल कंस्ट्रक्शंस विद इन 15 किलोमीटर्स ऑफ द कंट्रीज बॉर्डर्स एंड डिमोलिश ऑल सच स्ट्रक्चर्स दैट हैव कम अप ओवर द इयर्स. चेयरिंग अ सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग इन बीकानेर, Mr. Shah assessed security-related issues concerning the border districts of Rajasthan along the India-Pakistan border. The Home Ministry has assigned enhanced responsibility to the district magistrates to ensure legal and financial compliance of banking transactions in the border areas by all banks, verify big business establishments, examine their funding sources, track mule accounts and false companies, identify fake Aadhaar cards and control cross-border smuggling. The West Bengal government has handed over 142 acres of land to the BSF for setting up outposts and barbed wire fencing infrastructure along the India-Bangladesh border. The handover is part of the BJP government's decision taken at its first cabinet meeting on May the 11th to transfer 600 acres of land within 45 days for border fencing and related infrastructure projects. Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan will inaugurate the National Conference on Agriculture for Kharif Campaign 2026 in New Delhi today. The two-day program is aimed at deliberating strategies for the forthcoming Kharif season with a focus on sustainable agriculture, enhanced productivity, climate resilience, infrastructure strengthening and

नई सुबह, नए सवेरे की शुरुआत। आकाशवाणी सार कार्यक्रम लोक रंग के साथ। हरियाणवी लोक रंग के आज के कलाकार हैं प्रताप जोगी व साथी। कार्यक्रम की शुरुआत में यह पेशकश।

ಕರ್ಮತ ಕಾಯ ಸೂರ ಹೋ ಕರ್ಮತ ಡಾಕೋ ಜಾಲ ಸಾ ಜಬ್ಬದ ಮಾಸ.

कर्म तबग मा बाड़ा हो बिना कर्म ना बना से पाई बिना कर्म ना

हेरे झुकिया बाड़े रया दिल्ली में हडोई मुफ्त बेगार तने ओ कर्तव्य से भोगे

0: करमत राजा शेठ बादशाह करमत लग्न फकीर बने।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हरियाणवी लोक रंग आकाशवाणी के एसआर केंद्र से। ये कार्यक्रम आप न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन सके हैं। हरियाणवी लोक रंग हर रोज सुबह 7:10 पर प्रसारित करा जाए।

ये सुने भाइयों, आज आपने प्रताप जोगी व साथियों के गाए सारंगी पे भजन। इसी के साथ आज का हरियाणवी लोकरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ। सारे बण भैया ने राम राम।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

श्रोताओं, अभी आपने हरियाणवी लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोकरंग सुना आजाद सिंह के संग। FM 102.3 MHz पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए आपके लिए पेश है कार्यक्रम सुप्रभात।

सुप्रभात का शुभारंभ हम करते हैं आज के पंचांग के साथ। आज 28 मई सन 2026 का दिन है, आज गुरुवार है। आज शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है दोस्तों। नक्षत्र आज स्वाति नक्षत्र है। योग वरियान आज योग है और अभिजीत मुहूर्त की आज बात करें तो सुबह 11:50 से दोपहर 12:45 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। इसमें आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, ये समय उत्तम है। राहु काल की बात करें तो दोपहर 1:30 से 3 के बीच राहु काल का समय होगा। इस समय कोई भी शुभ कार्य ना करें। श्रोतों, आज सूर्योदय 5:25 पर हो चुका है और सूर्यास्त शाम 7:12 पर होगा।

और दोस्तों अब आज का सुविचार। जीवन की वास्तविकता यही है कि जब आप ढूंढना छोड़ देते हैं तब आपको सब मिल जाता है। जो चीज जितनी भागकर चाहोगे वो उतनी ही दूर जाती रहेगी। जो तुम्हारे लिए बना है वो बिना पीछा किए भी तुम तक पहुंच जाएगा। इसलिए तो श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो बाकी मुझे सौंप दो। जी हाँ श्रोताओं, ये इंसानी फितरत है कि हर समय कुछ पाने की ललक, कुछ चाहने की चाहत, कुछ नया कर गुजरने का जज्बा और हर हाल में अपने आप को सबसे बेहतर दिखाने का जुनून न जाने उसे किस तरफ लेकर जा रहा है। श्रोताओं, हर शख्स जिंदगी में कुछ ऐसा ढूंढता रहता है, ऐसी चीज खोजता रहता है और ऐसी तलाश में रहता है कि कोई ऐसी नायाब चीज उसके हाथ लग जाए ताकि वो सबके दिलों पर छा जाए और बस सिर्फ और सिर्फ उसी के नाम का डंका चारों तरफ बज उठे। दोस्तों, ये शाश्वत सत्य है कि जो इंसान अपने जीवन में कठोर परिश्रम करता है, मेहनत करता है, संघर्ष करता है और इन सब से ऊपर अपने काम की साधना करता है, उस इंसान को अपने जीवन में कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो हर चीज उस शख्स के समक्ष खुद चलकर उसके पास आती है, क्योंकि दोस्तों साधना में बहुत शक्ति होती है। माना दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान कुछ ना कुछ हर वक्त अपने लिए तलाशता रहता है, उसे पाने के लिए पीछे भागता रहता है। लेकिन दोस्तों, ये भी उतना ही सच है कि हर वक्त किसी चीज के पीछे भागने से वो मिल जाए ये जरूरी नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल सच है कि उस सृष्टिकर्ता ने जो हमारे लिए तय किया है, जिस किसी को भी हमारे लिए बनाया, वो हमें एक दिन अवश्य मिलता है। हमें उसके पीछे भागने की कतई जरूरत नहीं है। श्रोताओं, जो चीज हमारे लिए जिस वक्त तय की गई है वो हम तक श्री कृष्ण की कृपा से स्वयं पहुंच जाएगी। दोस्तों, हमें तो सिर्फ अपने सच्चे कर्म करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है, बाकी सब श्री कृष्ण को सौंप देना है, ये कहते हुए।

आयशोतम, अब रामचरित मानस के पद का वाचन करते हैं। पुनि जल देख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपति चले कमला पति पाही। अर्थात मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया, तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होंठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देहूं शाप की मरहूं जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। अर्थात मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए, साथ में लक्ष्मी जी और वहीं राजकुमारी भी थीं।

आइए दोस्तों, अब आपको एक गुरु और शिष्य का प्रसंग हम बताते हैं। गुरुजी ने छात्र को कांच का एक छोटा और एक बड़ा गिलास दिया और कहा, बड़े वाले गिलास को छोटे वाले गिलास के अंदर डालो। छात्र बोला, ये असंभव है गुरुजी। गुरुजी ने दूसरे छात्र को बुलाया। दूसरे छात्र ने बड़े वाले गिलास के बहुत सारे टुकड़े किए और उन टुकड़ों को आसानी से छोटे वाले गिलास में डाल दिया। गुरुजी बोले, हम अपनी ज़िंदगी में यही कर रहे हैं, जहाँ फिट नहीं बैठते वहाँ खुद को तोड़कर फिट

बैठाने की कोशिश करते हैं। जहाँ टूट कर रिश्ता निभाना पड़े उससे अच्छा है अलग हो जाओ। रिश्ता वहीं तक निभाओ जहाँ तक एडजस्ट आप कर सकते हो। अगर टूट कर बिखर गई, अगर तुम्हारा वजूद ही समाप्त हो गया, फिर कैसा रिश्ता और कैसी जिंदगी। जाने वाले को इज्जत के साथ विदा करो और आने वाले का स्वागत करो। इस धरती पर तुम जीने आए हो, मर मर कर जीने नहीं आए हो। जी हाँ दोस्तों, कोई भी रिश्ता हो उसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, बड़ी ईमानदारी और सच्चाई के साथ अगर हम निभा सकते हैं तो निभाएं। और हमें कोई भी रिश्ता सच्ची ईमानदारी के साथ ही निभाना चाहिए, क्योंकि वही रिश्ता आगे चलकर निभता है। और उस प्रभु का नाम लेते हुए हम कोई भी रिश्ता निभाएं, उसके साथ चलें ये कहते हुए।

दोस्तों, आज कार्यक्रम सुप्रभात में बस इतना ही। अब अपनी दोस्त क्षमा को इस कार्यक्रम से अनुमति दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात FM 102.3 MHz पर। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, समाचार प्रभात के लिए हम आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र लिए चलते हैं। इंतजार के हल्के से पल हमारे साथ।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतरराज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतरराज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
5: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेनदेन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
3: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
6: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधाम परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
7: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में जो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
3: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई हैं। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल है। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।
8: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्त स्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
3: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
9: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है

0: उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
1: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि यह त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज की समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद जागृति। एसआईआर पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा एसआईआर। पंजाब केसरी ने लिखा है, शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जांच कर सकता है चुनाव आयोग। वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध ढांचा को ध्वस्त करें। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले पर खबर दी है। ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को, सीबीएसई ने कहा ये झूठ। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया। एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% कमी की घोषणा के 2 सप्ताह बाद ये फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है, कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे मानसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, अमेरिका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा होर्मुज, संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनोखी पहल को प्रकाशित किया है, अब ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू। हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलिडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। अमर उजाला ने मौसम को अहमियत दी है, नौतपा में तप रहा उत्तर भारत, कल से राहत मिलने की उम्मीद।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति मीटिंग की सदारत की। इस दौरान वजीर आजम ने तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के सात अहम प्रोजेक्टों का जायजा लिया।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 28 मई है। आज है स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी की जयंती। आपका जन्म 28 मई सन 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगुर गांव में हुआ था। सावरकर जी ने युवावस्था से ही देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आरंभ कर दिया था। उन्होंने विदेशी शासन के विरुद्ध जन जागरण किया और भारतीयों में राष्ट्रभक्ति की भावना जगाई। उनकी सुप्रसिद्ध कृति 1857 का स्वतंत्रता संग्राम ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा प्रदान की। अंग्रेज सरकार ने उन्हें काला पानी की कठोर सजा देकर अंडमान की सेलुलर जेल में भेजा, जहां उन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी अपने साहस और आत्मबल को बनाए रखा। सावरकर जी केवल स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि कुशल लेखक, समाज सुधारक और ओजस्वी वक्ता भी थे। स्वतंत्र वीर सावरकर जयंती हमें देश प्रेम, साहस और आत्मबल की प्रेरणा देती है। उनके विचार आज भी युवाओं को प्रेरित करते हैं। स्वातंत्र वीर सावरकर जी को सादर कोटि कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत मणिकर्णिका फिल्म से।
1: देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए।

मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार।

0: शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए।
1: भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए।
0: है मुझे सौगंध भारत, भूलू ना एक क्षण तुझे। है मुझे सौगंध भारत, भूलू ना एक क्षण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए।

दोस्तों आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार है। ईद उल अजहा त्याग भक्ति निस्वार्थ भावना और आपसी सौहार्द का त्यौहार है। आप सभी को ईद उल अजहा की ढेरों मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक। वक्त हो गया एक छोटे से अंतराल का, तुरंत हाजिर होते हैं।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ।

0: let it be.
1: अभी आप सुन रहे थे रागिनी टंडन और आशीष छाबरा की आवाजों में बॉबी और ऋषि की लव स्टोरी फिल्म का गाना। लीजिए अब सुनिए आशा भोसले की आवाज में बेगम जान फिल्म का गाना। गीतकार हैं कौसर मुनीर और संगीतकार हैं

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए मयूर पुरी का लिखा और सचिन जिगर का संगीतबद्ध किया गाना। आवाज है बेनी दयाल की, फिल्म का नाम ABCD2।

अभी आप सुन रहे थे स्निग्धो जीत भौमिक की आवाज में छिपकली फिल्म का गाना, गीतकार सोहम मजूमदार और संगीतकार मीमो। लीजिए अब सुनिए भूत बंगला फिल्म का गाना। विशाल मिश्रा, नकश अजीज और अंतरा मित्रा की आवाजें हैं, कुमार के बोल और प्रीतम की है तर्ज।

0: तंबाकू जानलेवा होता है। गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं, विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 बीईएसटी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता। सुनना न भूलिए शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में।
1: सुनिए,
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना।
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: यसिर देसाई और पवनी पांडे की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे भैया जी सुपरहिट फिल्म का गाना। गीतकार और संगीतकार थे अमजद नदीम। आइए सुनते हैं यह संदेश।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: चित्रलोक, ये कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए सोहेल सेन, रेखा भारद्वाज और साथियों की आवाजों में डबल एक्सएल फिल्म का गाना। गीतकार हैं मुदस्सर अजीज और संगीतकार हैं सोहेल सेन।

हमारे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए सुनिए हिमेश रेशमिया और शालमली खोलगड़े की आवाजों में समीर अंजान का लिखा हुआ और हिमेश रेशमिया का संगीतबद्ध किया गाना, फिल्म का नाम एक्शन जैक्सन।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
3: और आज के चित्रलोक कार्यक्रम की आखिरी पेशकश ड्रीम गर्ल 2 फिल्म से मीत ब्रदर्स और नेहा कक्कर की आवाजें, कुमार के बोल और मीत ब्रदर्स की है तर्ज़।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था, उस बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में सभी दोस्तों को यूनुस खान का नमस्कार। आज उस फिल्मकार की कहानी जिसकी फिल्में इस शेर के साथ शुरू होती हैं।
1: मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।
0: बहुत बरस पहले की बात है, गुजरात में बड़ौदा के पास एक गांव में एक गरीब परिवार में एक लड़का रहता था। उस लड़के को फिल्मों का ऐसा शौक था कि बड़ौदा से निकलने वाली किसी ट्रेन में सवार हो जाता और आसपास के गांव या कस्बे में पहुंच जाता, लाइन से एक दो फिल्में देखता और लौटती ट्रेन से चुपचाप वापस आ जाता। किसी को कुछ पता नहीं चलता। घर वाले ये सोचते कि ये लड़का यहाँ वहाँ भटकता रहता है, जाने किन किन के साथ खेलता रहता है। ऐसे ही एक दिन वो ट्रेन में बैठा, मुंबई की तरफ जाने के लिए इरादा ये था कि वो कभी वापस नहीं आएगा। पिताजी को पता चल गया, पिताजी ने जमकर कुटुम्बस की और वापस ले आए। आज के फनकार कार्यक्रम में आज रोचक दास्तान महबूब खान की।

प्यार। महबूब खान का जन्म 9 सितंबर 1906 को बड़ौदा के पास सरार गांव में हुआ था। बहुत सामान्य सा परिवार था, छोटा मोटा काम था, बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, जिंदगी खुशनुमा थी। जैसा कि हमने आपको बताया, महबूब खान की बचपन की जिंदगी में ट्रेनें चला करती थीं और उन ट्रेनों पर सवार होकर वो आसपास जाते, फिल्में देखते और वापस लौट आते। जहन में बस ये चलता रहता कि किसी तरह से वो खुद को पर्दे पर देख पाएं, शौक अभिनय करने का था। तो भाई ये सिलसिला जारी रहा, पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी थी नहीं, इसलिए कायदे से पढ़ाई लिखाई हो न सकी और फिर हुआ यूं कि आसपास के शहरों में फिल्में देखना होता रहा। समय बीतता गया। हुआ यूं कि महबूब खान की दोस्ती एक रेलवे गार्ड से हो गई थी और उस रेलवे गार्ड ने उनको पूरी तरह से यकीन दिला लिया कि उनके भीतर फिल्मी पर्दे पर अभिनेता बनने के गुण हैं और उन्हें भाग जाना चाहिए मुंबई। हुआ यही, 16 बरस की उम्र में महबूब खान मुंबई भाग आए और सिनेमा में अपना नसीब आजमाने लगे। कांस्टेबल पिता को पता चल गया, वो सीधे मुंबई आए, अपने बेटे को ढूंढा, उसका कान पकड़ा और उसको वापस बड़ौदा ले गए। वहां जबरदस्ती महबूब खान की शादी कर दी गई, ये सोचकर कि वो बस यहां बंध जाएंगे और सिनेमा के अपने जुनून को जहन से निकालकर फेंक देंगे। बहुत जल्दी महबूब खान एक बेटे के पिता भी बन गए, लेकिन जिम्मेदारी नहीं आनी थी सो नहीं आई और आखिरकार महबूब खान ट्रेन में सवार होकर आ पहुंचे मुंबई।

मुंबई में महबूब खान उस जमाने के वीटी स्टेशन के पास ज्योति स्टूडियोज के बाहर खड़े रहते और इस फिराक में रहते कि किसी तरह से स्टूडियो में घुसने का मौका मिल जाए, बाकी का काम वो निपट लेंगे और किसी तरह से अभिनेता तो बन ही जाएंगे। लेकिन ये हो नहीं रहा था। दिन पर दिन बीत रहे थे, महबूब खान रातें प्लेटफॉर्म पर सोते हुए गुजारते, तरह तरह की परेशानियां होती, वो हौसला नहीं हारते, हर सुबह ज्योति स्टूडियोज के सामने खड़े हो जाते। एक दिन गार्ड सचमुच इंप्रेस हो गया और उसने महबूब खान की मुलाकात करवाई आर्दशीर ईरानी से, जो उन दिनों भारत की पहली बोलती फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे। यहां से महबूब खान की गाड़ी चल पड़ी क्योंकि आर्दशीर ईरानी ने उन्हें बतौर एक्स्ट्रा काम दिया। सन 1927 में यह फिल्म थी अली बाबा और 40 चोर। इसके बाद वो क्राउड का हिस्सा बनते रहे, फिर जूनियर आर्टिस्ट बने, फिर सपोर्टिंग रोल्स मिलते रहे और फिर ऐसा मौका आया जब भारत की पहली बोलती फिल्म के हीरो के तौर पर आर्दशीर ईरानी ने महबूब खान को बस चुन ही लिया था। लेकिन फिल्मों में पैसा लगाने वाले और तब के विशेषज्ञ ये मानते थे कि ऐसे लड़के पर दांव नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि बोलती हुई फिल्में बनाना अपने आप में एक बड़ा दांव है। महबूब खान को इस रोल से हटा दिया गया। वहीं उन्हें समझ में आ गया कि अभिनय में वो कुछ ज्यादा तीर नहीं मार पाएंगे, उन्हें जिंदगी में कुछ और करना चाहिए। यहां से एक नया जुनून शुरू हुआ, अपनी एक स्क्रिप्ट लिखने और उसका निर्देशन करने का। उन्होंने आखिरकार अपनी एक स्क्रिप्ट पूरी की और अलग अलग स्टूडियोज के चक्कर फिर से काटने लगे। प्रोड्यूसर्स उनकी कहानी सुनते, उन पर हंसते और उन्हें दरवाजा दिखा देते। आखिरकार सन 1935 में एक प्रोड्यूसर को उनकी कहानी पसंद आई और तब आई महबूब खान की निर्देशित पहली फिल्म अल हिलाल। ये फिल्म सीसिल बी डिमेलो की जानी मानी फिल्म साइन ऑफ द क्रॉस से प्रेरित थी। फिल्म चल पड़ी और महबूब खान की गाड़ी भी चल पड़ी। लगभग यही दौर था जब चिमनलाल देसाई के सागर मूवी टोन में महबूब खान बतौर विलन काम करते थे और अच्छे खासे पैसे बना रहे थे। इसी दौरान सागर मूवी टोन ने उन्हें निर्देशन का मौका दिया। सन 1936 में महबूब खान ने डेक्कन क्वीन फिल्म बनाई। सन 1939 में आई एक ही रास्ता। सन 1940 में अली बाबा। सागर मूवी टोन के लिए उन्होंने सन 1940 में बनाई अपनी फिल्म औरत।

इसके बाद महबूब खान सागर मूवी टोन और नेशनल स्टूडियोज की फिल्मों का निर्देशन करते रहे। सन 1940 में आई फिल्म औरत महबूब खान के करियर की एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। सन 1942 में महबूब खान ने बनाई फिल्म रोटी और उसके बाद फिल्म नजमा का निर्देशन किया। ये फिल्म साल 1943 में आई थी। इसके बाद उन्होंने तकदीर और हुमायूं जैसी फिल्में बनाई। सन 1946 महबूब खान के निर्देशन में आई फिल्म अनमोल घड़ी।

अनमोल घड़ी के कलाकार थे नूरजहां, सुरैया और सुरेंद्र। इस फिल्म के गाने तनवीर नकवी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था। 11 नवंबर 1946 को रिलीज की गई ये फिल्म काफी कामयाब रही।

1949 महबूब खान के करियर की एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म आई अंदाज। कलाकार थे दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर फरीदुन ईरानी थे। 26 अगस्त 1949 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। ये फिल्म एक प्रेम त्रिकोण थी। इसके गाने मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था।

सन 1952 महबूब खान लेकर आए अपनी बेमिसाल फिल्म आन। इसके कलाकार थे दिलीप कुमार, निम्मी, प्रेमनाथ और नादिरा। संगीत नौशाद का था। ये फिल्म 4 जुलाई 1952 को रिलीज की गई थी।

सन 1954 महबूब खान की फिल्म आई अमर। 1 अक्टूबर 1954 को रिलीज इस फिल्म के कलाकार थे दिलीप कुमार, मधुबाला और निम्मी। संगीत नौशाद का था।

ऐसा कलाकार जिसने अपनी यात्रा बतौर स्पॉट बॉय शुरू की हो और जिसके जहन में हो अनमोल ऊंचाइयों को छूने के सपने। उस कलाकार ने मुंबई फिल्म उद्योग को दिया हॉलीवुड स्टाइल का पहला फिल्म स्टूडियो महबूब स्टूडियोज। महबूब स्टूडियोज का आगाज सन 1952 में हुआ। मुंबई के बांद्रा में स्थित इस स्टूडियोज में आज भी फिल्मों की शूटिंग की जाती है।

0: भारत के इतिहास में 1957 का अक्टूबर महीना बड़ा मायने रखता है। इसी साल 3 अक्टूबर को यानी 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती अस्तित्व में आई थी और विविध भारती पर प्रसारण शुरू होने के कुल 23 दिन बाद रिलीज हुई थी महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया। रिलीज डेट है 25 अक्टूबर 1957। भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक कालजयी फिल्म। कलाकार नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार। दिलचस्प बात ये कि ये फिल्म महबूब खान की ही 1940 में आई फिल्म औरत का रीमेक थी। इस फिल्म की पटकथा और संवाद एस अली रजा, वजाहत मिर्जा और महबूब खान ने मिलकर लिखे थे। संगीत नौशाद का था, गीत शकील बदायूनी के। मदर इंडिया भारत की एक बेमिसाल फेमिनिस्ट फिल्म। महबूब खान एक स्त्रीवादी फिल्मकार माने जाते हैं, एक ऐसे फिल्मकार जो महिलाओं के पक्ष में खड़े नजर आते हैं, चाहे उनकी फिल्म आन हो, अमर हो, मदर इंडिया हो या औरत। सशक्त नायिकाओं की भूमिकाओं वाली ये फिल्में सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद की जाएंगी। मदर इंडिया को तो एकेडमी अवार्ड्स के लिए शॉर्ट लिस्ट भी किया गया था। ये अलग बात है कि ये फिल्म पुरस्कार जीत नहीं पाई, लेकिन विश्व स्तर पर जितना हंगामा मदर इंडिया ने उस जमाने में किया शायद ही किसी फिल्म ने किया होगा। कुछ गानों की झलक।
1: भर भर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पा।

मदर इंडिया जैसी बड़ी लकीर खींचने के बाद महबूब खान ने ज्यादा फिल्में नहीं बनाई। सन 1962 में आई उनकी निर्देशित फिल्म सन ऑफ इंडिया।

एक फिल्मकार जिसे अभी और आसमान छूने थे, जिसे कामयाबी की और बुलंदियां छूनी थी, जिसके सहन में सपनों की फसल लहलहा रही थी, लेकिन वक्त ने उसकी रफ्तार को रोक लिया। 28 मई 1964 को सिर्फ 56 बरस की उम्र में महबूब खान ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। रह गया महबूब खान का सिनेमा और सिनेमा की महबूब खान की विरासत महबूब स्टूडियोज। आज भी महबूब खान को अपने समय से आगे का फिल्मकार माना जाता है। महबूब खान के सम्मान में भारत सरकार ने एक पोस्टल स्टैंप जारी किया था, जो डाक टिकट के संग्रहकर्ताओं के लिए एक अनमोल विरासत है। महान फिल्मकार महबूब खान को हमारा विनम्र नमन।

के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था फिल्मकार महबूब खान पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह और प्रस्तुति रमेश गोखले।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती से सदाबहार सुरीली कार्यक्रम FM 102.3 MHz पर। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए पेश खिदमत है कार्यक्रम नमस्ते हिसार।

श्रोताओं, आपका प्यार, आपका इंतजार, आपका ख्याल, आपका ख्वाब, आपकी ख्वाहिश, आपकी तमन्ना, आपकी सुरीली धड़कनों की सदा और आपके मखमली एहसासों की फरमाइश आकाशवाणी हिसार।

आज के दिन में एक अजीब सी हलचल है। आज के दिन के उजाले में एक अजीब सी महक है। आज तो हर चेहरा खिला खिला सा है, ना जाने फिर भी आज के मंजर को किसकी तलाश है। देखो इस चांद का दीदार तो हमारे कितने पास है।

मुबारक हो ईद तहे दिल से दोस्तों, खुशियों का आगाज हो आपके जीवन में तहे दिल से दोस्तों। दोस्ती आपकी और हमारी हमेशा बनी रहे तहे दिल से दोस्तों। आपकी आवाज की दुनिया के दोस्त क्षमा का मोहब्बत से भरा नमस्कार सभी को तहे दिल से दोस्तों। दीदारे चांद कुछ ऐसा मिला कि रूहे हलचल हो गई, मुस्कुरा गए सभी होंठ इस कदर कि मुबारक सभी की ईद हो गई।

दोस्तों, एक बार फिर हमारे आकाशवाणी परिवार हिसार की ओर से सभी दोस्तों को ईद उल जुहा का ये पर्व बहुत बहुत मुबारक। दोस्तों, ईद उल जुहा इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा प्रमुख और पवित्र त्यौहार है, जो पैगंबर हजरत इब्राहिम के सर्वोच्च बलिदान और अल्लाह के प्रति उनकी अटूट आस्था की याद में मनाया जाता है। दोस्तों, इस त्यौहार का मुख्य उद्देश्य पैगंबर हजरत

इब्राहिम के उस महान त्याग को याद करना है जो उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर किया था। श्रोताओं, भाईचारे व आपसी मेलजोल का पर्व है ईद। ईद के दिन लोग एक दूसरे के दिल में प्यार बढ़ाने और नफरत को मिटाने के लिए एक दूसरे से गले मिलते हैं, ताकि दिलों की नज़दीकियां बरकरार रख पाएं। ये कहते हुए, न जाने कब से मुझको इंतजार था कि तुम मैं हो जाऊं और मैं तुम हो जाओ, पर बीच में अमावस आ जाती थी। पर आज जब आसमां के वक्ष पर चमका है चांद, तो रग रग में मेरे आज नया आगाज है।

दोस्तों हमें भी बहाना मिल गया आपकी दीद का, क्योंकि जब दीद होती है तभी तो मोहब्बत का आगाज होता है, तभी तो मोहब्बत परवान चढ़ती है दोस्तों, और तभी तो एहसासों में एक नया जज्बा उभरता है, एक नए एहसास में कुछ तरंगे उठती हैं, और तरंगों में एक नया आगाज होता है, और नए आगाज के साथ दोस्तों आपकी दोस्त अपना एक नया अंदाज लेकर आपके लिए आती है। फिलहाल आप सुन रहे कार्यक्रम नमस्ते सार अपनी दोस्त क्षमा के साथ FM 102.3 MHz पर। तो दोस्तों दीद का चांद और दीद का दीदार बहुत खूबसूरत होता है, और इस दीदार में हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, मिलते हैं और मोहब्बत की नई दास्तां लिखते हैं। लेकिन फिलहाल तो हम खबरों का खुलासा यहां करेंगे। श्रोताओं हरियाणा

सरकार युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए रोबोटिक्स व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निशुल्क कौशल प्रशिक्षण शुरू कर रही है। करनाल में बनने वाले प्रदेश के पहले रोबोटिक्स एवं एआई प्रशिक्षण केंद्र के लिए राजकीय आईटीआई हिसार में 29 मई को साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, जो सुबह 10 बजे से शुरू होगा। मंडल रोजगार अधिकारी के अनुसार टेस्ट के आधार पर 120 युवाओं का चयन किया जाएगा। इनमें 30 को असिस्टेंट रोबोटिक्स टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए गैर आवासीय प्रशिक्षण और 90 को टेक्नीशियन आईटी सपोर्ट आईटी आईटीएस के लिए आवासीय प्रशिक्षण मिलेगा। योजना के तहत प्रशिक्षण पूरी तरह मुफ्त रहेगा।

श्रोताओं, गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे इस बार टीवी और मोबाइल की स्क्रीन पर समय बर्बाद करने के बजाय अपने हुनर को निखार सकेंगे। जिला बाल कल्याण परिषद हिसार के तत्वावधान में आगामी 1 जून से बाल भवन परिसर में समर कैंप लगाया जा रहा है। उपायुक्त एवं प्रधान जिला बाल कल्याण परिषद के मार्गदर्शन में ये कैंप 1 से 30 जून तक चलेगा। जिला बाल कल्याण अधिकारी ने बताया कि कैंप का मुख्य उद्देश्य बच्चों को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़कर उनका मानसिक और शारीरिक विकास करना है। समर कैंप के कोर्सेज में सीटें सीमित है, इसलिए दाखिला पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। स्विमिंग को छोड़कर बाकी सभी 12 शॉर्ट टर्म कोर्सेज सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए पूरी तरह फ्री रहेंगे।

दोस्तों, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय परिसर में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों ने स्वच्छता अभियान के तहत विभिन्न स्थानों से कूड़ा कचरा एकत्र कर सफाई की। अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना और समाज को स्वच्छ वातावरण के महत्व के लिए प्रेरित करना रहा। स्वयं सेवकों ने श्रमदान करते हुए स्वच्छता को सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में अपनाने का संकल्प लिया।

और दोस्तों अब मौसम का हाल जान लेते हैं। वैसे तो मौसम का जो हाल है वो बेहाल है और सभी को बेहाल किए हुए है, फिर भी हमें इसकी मार को झेलना तो पड़ेगा। गर्मी के तेवर लगातार तीखे होते जा रहे हैं। मौसम विशेषज्ञ ने बताया कि 28 मई तक हरियाणा के लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा, यानी आज के दिन से भीषण गर्मी का ऐलान है। पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण पूरे इलाके के तापमान में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हरियाणा के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में लू अपने प्रचंड तीव्र दिखाएगी। तपती और झुलसती गर्मी के बीच राहत की खबर यह है कि नौतपा के बीच मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। 28 मई को यानी आज ही के दिन शाम से राज्य में एक नया मध्यम श्रेणी का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। नए सिस्टम के सक्रिय होने से 28 से 30 मई के दौरान पूरे हरियाणा के मौसम में बड़ा बदलाव आएगा। आसमान में बादलों की आवाजाही के साथ तेज आंधी चलने और हल्की बारिश व बूंदाबांदी होने की पूरी संभावना है। इस बदलाव के बाद तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को भीषण हीट वेव से बड़ी राहत मिलेगी। और दोस्तों, चांद जब बादल में छिपेगा और अपनी लालिमा के लिए फिर आएगा, रोशनी करेगा और एक सुखद अनुभूति देगा, तो फिर आप कैसा महसूस करेंगे? कुछ इस तरह ही कहेंगे ना।

दोस्तों, चांद बादल में छिप भी गया तो कोई गम नहीं। अब पूछे क्यों? क्योंकि दोस्तों, हमारे लिए तो चांद आप हैं। आपकी चांदनी में हम यूं ही महक जाते हैं और कुछ नया लिख जाते हैं, कुछ नए एहसास हमारे मन के अंदर कलरव करते हैं और उन एहसासों को लेकर हम कलमबद्ध करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, हमारे चांद तो आप हैं और इस चांदनी में हम हमेशा महक महक महक जाना चाहते हैं। फिलहाल आप सुन रहे हैं अपने दोस्त क्षमा के साथ FM 102.3 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम नमस्ते हिसार। तो दोस्तों, अब आपको इंतजार है, जी हाँ, चांद का नहीं बल्कि हमारे दो प्रश्नों का। भाई, चांद की तो बात होती रहेगी, लेकिन जो हमारा आज के जो दो सवाल हम आपसे करेंगे, उन्हें आप पहले नोट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा व्हाट्सएप जो नंबर है वो हम आपको बता दें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9729253272। नंबर एक बार पुनः सुनिए, 9729253272। और दोस्तों, जैसा कि हम हमेशा ये बात कहते हैं कि जिन श्रोताओं के दोनों जवाब सही होंगे उसकी पसंद का नगमा हम आपकी नज़र करेंगे। इसके लिए आपको हमारे दोनों सवालों के जवाब सही लिखकर भेजने होंगे। और दोस्तों, सबसे पहले सवालों के जवाब आप लिखेंगे, उसके बाद आप अपने गांव और शहर का नाम लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद अपनी पसंद का गीत लिखेंगे, फिल्म का नाम लिखेंगे और साथ में आप अपनी पसंद के 2-3 गीत लिखें ताकि हम आपको आपकी पसंद का एक नगमा जरूर सुनवा सकें। तो अब आप तैयार हो जाइए हमारे आज के दो प्रश्न सुनने के लिए। हमारा आज का पहला सवाल है, किस ग्रह को आकार और वजन में पृथ्वी के समान होने के कारण पृथ्वी का जुड़वा कहते हैं? सवाल पुनः सुनिए, किस ग्रह को आकार और वजन में पृथ्वी के समान होने के कारण पृथ्वी का जुड़वा कहते हैं? आपको उस ग्रह का नाम बताना है। और अब हमारा आज का दूसरा सवाल, जोधपुर में स्थित राव जोधा द्वारा 1459 में बनवाए गए इस किले को सूर्य का किला कहते हैं, नाम बताएं? आपको किले का नाम बताना है। सवाल पुनः सुनिए, जोधपुर में स्थित राव जोधा द्वारा 1459 में बनवाए गए इस किले को सूर्य का किला कहते हैं, नाम बताएं? आपको इस किले का नाम बताना है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूं कि आपने हमारे दोनों सवाल सुन लिए होंगे और अब हमें इंतजार रहेगा आपके जवाबों का। तब तक आइए सुनते हैं ये बहुत ही सदाबहार नगमा।

दोस्तों, हमने भी चांद से ये सवाल किया कि हमारे दोस्तों के जैसा हंसी कोई है कि नहीं, तो पता है चांद ने हमको क्या कहा? चांद ने कहा, हमारे दोस्तों से हंसी तो कोई हो ही नहीं सकता है। और दोस्तों, हम भी ये मानते हैं कि आप जैसे दोस्तों से हंसी कोई और दोस्त कैसे हो सकता है। भाई, आप हमें चाहते हैं, हम आपको चाहते हैं, आप आकाशवाणी हिसार के कार्यक्रमों को सराहते हैं और हम आपके लिए एक नए अंदाज के साथ, एक नए आगाज के साथ बहुत बेहतर से बेहतर कार्यक्रम लेकर आने की पूरी कोशिश करते हैं। दोस्तों, फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते हिसार, अपनी दोस्त क्षमा के साथ FM 102.3 MHz पर। तो दोस्तों, हमें हमारे सवालों के जो जवाब हैं वो कुछ श्रोताओं ने लिखकर भेजे हैं, हम उनके नाम आपको बताएंगे। लेकिन पहले हमने जो दो सवाल आपसे किए थे उनके जवाब हम आपको पहले बताएंगे।

0: हमारा पहला सवाल था कि किस ग्रह को आकार और वजन में पृथ्वी के समान होने के कारण पृथ्वी का जुड़वा कहते हैं। इसका सही जवाब है शुक्र ग्रह। और हमारा दूसरा सवाल था, जोधपुर में स्थित राव जोधा द्वारा 1459 में बनवाए गए इस किले को सूर्य का किला कहते हैं। हमने आपसे इस किले का नाम पूछा था और इसका सही उत्तर है मेहरानगढ़ किला। तो आइए अब आपको बताते हैं कि हमारे किन श्रोताओं ने हमें सही जवाब लिखकर भेजे हैं। सबसे पहले हम इन श्रोता का नाम आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये श्रोता है चरखी दादरी हरियाणा से, नम्रता खुशबू खुशदेव और इनके परिवार के सभी सदस्य। इनके दोनों जवाब जो हैं वो सही हैं। तो नम्रता खुशबू और खुशदीप, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपके दोनों सवालों के जवाब सही हैं। इसके अलावा हमें जो सवाल लिखकर भेजे हैं वो हैं कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत को जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत गुरशब्द सिंह राहुल, इनके भी दोनों जो जवाब हैं वो सही हैं। इसके अलावा हमें एक जवाब सही मिला है, उनका नाम तो हम लेंगे नहीं क्योंकि हमारी कुछ मर्यादा है। और जिनके दोनों सवालों के जवाब सही हैं उनमें हमारे ये नियमित श्रोता हैं जिनके हमेशा ही सही जवाब होते हैं। आप हैं गांव कुतुबपुर ढाणी जिला हांसी से रामधारी अवाना, अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया, गुरदीप बेबी कीरत अवाना। तो अवाना साहब, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो कि आपके दोनों जवाब सही हैं। और इसके बाद यानी कि सबसे पहला जवाब जो हमें मिला है और इनके दोनों जवाब सही हैं, आप हैं हमारे बहुत पुराने और नियमित श्रोता गांव नलोई तहसील सिवानी मंडी जिला हिसार से सज्जन कुमार जांगड़ा, कार्तिक और वेदांश। सज्जन साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपके दोनों जवाब सही हैं और इस बात की आपको डबल मुबारकबाद हम देते हैं कि आपने सबसे पहले हमें इन सवालों के जवाब भेजे हैं। तो आपकी पसंद का गीत बनता है, आपने खट्टा मीठा फिल्म से नगमा सुनना चाहे, तुमसे मिला था प्यार कुछ अच्छे नसीब थे। बहुत ही प्यारा गीत है जो हमें भी बेहद पसंद है। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद आपके साथ, आपकी पसंद आपकी नजर।
1: हमारा इस तरह से और मिलना क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता।
2: कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम जैसे मिलते आए हैं मिलते रहेंगे।
1: फिर भी जरीन, आखिर वो तुम्हारे डैडी हैं, तुम्हारे लिए जरूर कुछ और सोच रखा होगा।
2: सोचने दो,
1: बुरा मत मानना जरी, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी उठानी पड़े। और फिर यह भी तो सच है कि मैं एक मामूली घर का लड़का हूँ।
2: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो।
1: लेकिन जरी, सिर्फ प्यार से तो सब कुछ नहीं होता, तुम बड़े घर की लड़की हो, तुम्हारे डैडी
2: तुम मुझे प्यार करते हो।
1: फिर मेरे कॉलेज का यही आखिरी साल है, बीए के बाद और पढ़ भी नहीं पाऊंगा, पता नहीं कब कैसी नौकरी मिले। और
2: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो?
1: प्यार तो करता हूँ जरीन, बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन
2: प्यार करते हो ना?
1: पर जरीन, तुम
3: तुमसे मिला था प्यार कुछ अच्छे नसीब थे।

0: वाकई दोस्तों, हम तो आज अपने आप को बहुत बहुत बहुत अमीर मानते हैं, क्योंकि आपकी मोहब्बत जो है हमारे साथ। और हमें कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, आपकी बेशुमार बेशकीमती बेमिसाल मोहब्बत को पाकर हमें और क्या चाहिए, क्योंकि हम तो अपने आप में बहुत अमीर अपने आप को महसूस करते हैं। हम चाहते हैं कि आपकी मोहब्बत हमारे साथ यूं ही बनी रहे और हम आपके लिए एक नए अंदाज के साथ हमेशा हमेशा कार्यक्रम लेकर आते रहें। फिलहाल आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त क्षमा के साथ नमस्ते हिसार कार्यक्रम FM 102.3 MHz पर। दोस्तों, कार्यक्रम का अगला पड़ाव हम आप तक पहुंचाएंगे, इससे पहले एक छोटा सा अंतराल हम यहां लेंगे।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

KIR at 90. आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल

दोस्तों, कार्यक्रम नमस्ते हिसार में आपका हम पुनः स्वागत करते हैं। हम आपको आज की प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में बताएं, उससे पहले दोस्तों हम यहाँ एक श्रोता का नाम लेना चाहेंगे। उन्होंने दोनों जवाब सही भेजे हैं, लेकिन थोड़ा सा वो लेट हो गए थे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। गांव हांडीखेड़ा, जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा और इंदिरा शर्मा, इनके जवाब दोनों सही थे। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि हमेशा थोड़ा टाइम पर भेजें, वरना आपको हमसे शिकायत हो जाती है कि हम आपका नाम नहीं लेते। हमारी कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ सीमाएं हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको बता रहे हैं आज की प्रेरक जो व्यक्तित्व हैं हमारी, वो हैं भैरी अकबरपुर की बेटी भावना। जी हाँ, भैरी अकबरपुर की बेटी भावना का चयन सितंबर माह में जापान में होने वाले पैरा एशियन गेम्स के लिए हुआ है। भावना 70 मीटर दूरी से निशाना साधते हुए देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। भावना के पिता नरेश कुमार ने बताया कि पैरा एशियन गेम्स के लिए सोनीपत स्थित साइंस सेंटर में ट्रायल हुए थे। इसमें देश भर के पैरा आर्चरी खिलाड़ी पहुंचे थे। भावना ने ट्रायल के दौरान 5 राउंड में शानदार प्रदर्शन किया। अलग अलग राउंड के पॉइंट जोड़ने के बाद भावना ने देश भर में पहला स्थान पाया। 3 साल की उम्र में जब भावना के पैरों ने साथ छोड़ दिया, तब परिवार को लगा था कि उसकी जिंदगी चुनौतियों से घिर जाएगी, लेकिन व्हीलचेयर पर बैठी बेटी ने हौसले को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। भैरी अकबरपुर की भावना पैरा आर्चरी में देश भर में पहचान बना रही हैं। नरेश कुमार बताते हैं कि बचपन में पैर में आई समस्या के कारण भावना चल नहीं पाई, लेकिन उसने कभी खुद को कमजोर नहीं माना। उसके बड़े भाई विशु खिलाड़ी हैं और उनकी आर्चरी अकादमी में कुछ दिव्यांग खिलाड़ियों को अभ्यास करते देखकर भावना प्रेरित हुई। इसके बाद उसने आर्चरी में करियर बनाने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि भावना ने वर्ष 2020 में कोरोना काल के दौरान आर्चरी खेलना शुरू किया। भावना ने शुरुआती प्रशिक्षण गुरमीत सिंह से लिया, बाद में उसने दीप पब्लिक स्कूल SRM अकादमी में अभ्यास किया। अभी वो नोएडा स्थित अभिमन्यु आर्चरी स्पोर्ट्स फाउंडेशन में कोच मोनिका रावल की देखरेख में प्रशिक्षण ले रही हैं। श्रोताओं, भावना ने ये मेडल हासिल ये कर चुकी हैं। इटली में हुई यूरोपियन पैरा आर्चरी कप लीग 2025 में इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया। चीन में एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2025 मिक्स टीम में स्वर्ण और महिला टीम में कांस्य पदक इन्होंने हासिल किया। चेक रिपब्लिक में हुई यूरोपियन पैरा आर्चरी कप लीग में 2025 में इन्होंने रजत पदक हासिल किया। जींद में हुई राष्ट्रीय पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2022 में इन्होंने कांस्य पदक जीता। पटियाला में हुई राष्ट्रीय पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में इन्होंने कांस्य पदक जीता। और श्रोताओं, जयपुर में हुई राष्ट्रीय पैरा आर्चरी 2024-25 में इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया। दोस्तों, पैरा एशियन गेम्स का पिछला आयोजन चीन के हांगझोंग शहर में हुआ था। ये प्रतियोगिता मूल रूप से 2022 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे 2023 में आयोजित किया गया। पैरा एशियन गेम्स का आयोजन हर 4 साल में किया जाता है। इसमें एशिया के दिव्यांग खिलाड़ी विभिन्न खेलों में हिस्सा लेते हैं। अगला पैरा एशियन गेम्स 2026 में जापान के आईची नागोया में आयोजित होगा। तो दोस्तों, भावना के इन हौसले को, इस जज्बे को हम सलाम करते हैं और कहते हैं और इनके लिए दुआ करते हैं कि ये हमेशा आगे बढ़ती रहें।

दोस्तों, आम का मौसम है और आम हम सबको पसंद है, लेकिन क्या आप जानते हैं पका आम खाने से पहले पानी में रखना जरूरी क्यों है? चलिए दोस्तों, हम बताते हैं। गर्मियों में आम का स्वाद लेने से पहले दादी नानी हमेशा कहती थी, आम को पानी में भिगो कर रखो। यह सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि विज्ञान और आयुर्वेद के लिहाज से उपयोगी साबित हुआ है। जानते हैं इसके फायदे। दोस्तों, पके आम को पानी में कुछ देर भिगो कर रखने से फाइटिक एसिड कम होता है, कीटनाशक घटते हैं और फल की गर्मी घटती है, जो आयरन, जिंक और कैल्शियम जैसे खनिजों के अवशोषण में बाधा डालता है, पानी में भिगोने से ये खुल जाता है। दोस्तों, डॉक्टर आधे घंटे तक आम को भिगोने की सलाह देते हैं। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के अनुसार 20-30 मिनट तक पानी में भिगोने से आम के पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है और कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव होता है।

दोस्तों, हमें चांद की सिफारिश तो बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें तो आपकी सिफारिश चाहिए। आप पे हम फना हो जाना चाहते हैं, आपकी मोहब्बत को हमेशा अपने दिल में बसाना चाहते हैं और अपने एहसासों में सिर्फ आपको मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपकी चाहतों में, आपके एहसासों में, आपके दिल में, आपकी ख्वाहिश में, आपकी तमन्ना में और आपके ख्वाबों में सिर्फ और सिर्फ आपकी दोस्त क्षमा हमेशा के लिए बसी रहे। तो आज इसी बात पर हम आपकी भावनाओं को, आपके एहसासों को, आपकी ख्वाहिशों को, आपकी तमन्नाओं को अपने साथ ले जाते हैं फिर से एक नए अंदाज के साथ लौटने के लिए। तो अपनी दोस्त क्षमा को कार्यक्रम नमस्ते हिसार से आज इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते हिसार। एफएम 102.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आपकी सेवा में आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, विविध भारती के सदाबहार सुरीले कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपको कुछ ही लम्हों बाद लिए चलते हैं।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।

कैलाश खेर का लिखा ये गीत था झूमे रे एल्बम से। गीत और संगीत थे कैलाश खेर के और आवाज भी थी कैलाश खेर की। आप सुन रहे हैं रंग तरंग।

सूरज दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में अमर अकबर एंथनी फिल्म की ये कव्वाली आपने सुनी। आनंद बख्शी के लिखी ये कव्वाली थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई।

0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
1: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: बटवारा फिल्म का ये गीत था अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति का गाया, हसन कमाल के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: ये विविध भारती है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाए। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल से अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया।
5: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियाँ सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर

0: सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। गंगटोक के सिक्किम विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने यह घोषणा की। केंद्र द्वारा उल्लास पहल के अंतर्गत ये घोषणा की गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गृहमंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृहमंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्यूषा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार खगड़िया और मुजफ्फरपुर जिलों में दो दो मौतें हुई हैं, जबकि मुंगेर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में एक एक मौत हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रूपये की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। आज ईद उल अजहा का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद को सुचारू रूप से मनाने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय की प्रार्थना की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज न अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 2 दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल, इस प्रोग्राम के लिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में आपकी कसम फिल्म का गीत आपने सुना। आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज़,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में ये दुगाना मेरे हमसफर फिल्म का था। आनंद बख्शी का लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: इस समय विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: ओपिनियत का ये सुरीला संगीत था मंजूर सुल्तानपुरी के बोल, मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजें, फिर वही दिल लाया हूँ इस फिल्म का गीत था। और इसके पहले आपने सुना जानवर फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल थे शंकर जयकिशन की तर्ज थी।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, आनंद बख्शी का लिखा गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर की आवाजें थी, फिल्म थी फर्ज।
1: क्या हुआ?
2: हाय, गम का फसाना बन गया अच्छा।
1: अच्छा जी।
2: एक बहाना बन गया अच्छा।
1: अच्छा।

मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में ये दो गाना आपने सुना अनजाना फिल्म से, आनंद बख्शी के बोल थे। कार्यक्रम यादों की महफिल यहीं संपन्न हुआ।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम सुरीला सफर। आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। अपने सभी श्रोताओं का हम इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओ, आजकल जरूर हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं वो पहाड़ों का रुख कर चुके होंगे। बहुत मुमकिन है कि आप रास्ते में विविध भारती भी सुन रहे हों, तो चलिए हम भी आपके साथ हो लेते हैं। विविध भारती के साथ सुरीले सफर में आज चलते हैं हम और आप साथ साथ। यूं कह लें कि गर्मियों में पहाड़ों का जो मौसम होता है श्रोताओ, आशिकाना होता है। छोटी छोटी सी पगडंडियां ऊंचे आसमान से बातें करते, देवदार के पेड़, खुला खुला नीला आसमान एक अलग वादियों में खो जाते हैं हम सभी कहीं, और तमाम खुशियां जो हम अपने साथ कर लेते हैं थोड़ी से समय में हम अपनी मुट्ठी में इन खुशियों को भर लेना चाहते हैं। ऐसे में गीतों का साथ हो तो क्या कहने। इबारत की जहां तक बात है श्रोताओं, जो टेक्स्ट हमने इस प्रोग्राम के लिए आपको फेसबुक पेज पर दिया उसे हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने देखा होगा प्रोग्राम में, तो फिर आप भी शामिल हो जाइए। हमारे नए श्रोताओं के लिए हम बता देते हैं www.facebook.com/vbsmumbai के इस पेज पर लॉगिन कर आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स हम तक भेज सकते हैं। और अब आज का टेक्स्ट या पैसेज जो भी आप कहें या इबारत कहें उसे आपके लिए पढ़ देते हैं एक बार फिर। गर्मियों के मौसम में पहाड़ों का हुस्न बेमिसाल होता है। राहत और सुकून से भरे रास्ते पुकारते चले जाते हैं। हर चेहरा यहाँ चांद है तो कहीं चांद से रोशन चेहरे भी हैं। सादगी से भरपूर जीवन और यहाँ के लोगों की मासूम मुस्कुराहट। मोहब्बत नहीं तो फिर क्या है। धुंध का पर्दा हटा तो पर्वत के पीछे गांव का नजारा था, जहां इस मौसम में सैलानी खूब आया करते हैं। हमारे गांव भी कोई जरूर आएगा और कहेगा प्रीत तोरी सांची। परदेसी ने फल, कपड़े और टोकरियां भी खरीदी। किसी सपनों की रानी के जैसे ये बर्फीले प्रदेश और यहाँ के लोग डोरी बुनकर प्यार बांध लेते हैं। परदेसी एक दिन चले जाते हैं एक और मुलाकात का वादा करके। तो ये थी आज की इबारत, और बहुत सारे श्रोताओं ने हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स भी भेजे हैं, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हमने देखी हैं। साथ ही आपने जो गीत चुने हैं वो भी बड़े ही मुकम्मल हैं आज के कार्यक्रम के लिए। तो चलिए देखते हैं हमारे और भी श्रोता इन गीतों के बारे में क्या लिखते हैं, इन शब्दों को कैसे चुनते हैं, और हमारे जो श्रोता नए हैं वो भी हमें अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें कार्यक्रम में।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती की सदाबहार सुरीले कार्यक्रम FM 102.3 MHz पर। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रादेशिक समाचारों के लिए आपको आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र लिए चलते हैं। प्रतीक्षा के हल्के से पल हमारे साथ।

नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जन भागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार एक नई पहल शुरू करने जा रही है, जिसके तहत अब खेल में रुचि रखने वाले बच्चों की ग्रामीण स्तर पर पहचान की जाएगी और उन्हें अपनी पसंद के खेल में प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए पंचायत, स्कूल और खेल विभाग घनिष्ठ तालमेल से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कल चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में हरियाणा विजन 2047 के तहत खेल विभाग के 5 साल के रोडमैप और कार्य योजना की समीक्षा करने के बाद ये बात कही। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पंचायत, स्कूल और खेल विभाग संयुक्त रूप से इस उद्देश्य के लिए एक कार्य योजना तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि खेल विभाग को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि गांवों में स्टेडियम बनाए जाएं, ताकि जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान की जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों के परिसरों का उपयोग भी खेलों के लिए किया जाएगा। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ओलंपिक 2036 के लिए दीर्घकालिक योजना जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी। इसके लिए 10 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों की पहचान की जाएगी, उनके खेल हितों को परिष्कृत किया जाएगा और उनके लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आज हरियाणा और चंडीगढ़ में ईद उल अजहा का त्योहार श्रद्धा, सौहार्द और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कुरुक्षेत्र, पलवल और फरीदाबाद जिले से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि जिले में सुबह शहरी और ग्रामीण इलाकों के

0: मस्जिदों तथा ईदगाहों में नमाजियों की भारी भीड़ देखी गई। सभी ने मिलकर नमाज अता की और देश में अमन चैन और भाईचारे की दुआ मांगी। हरियाणा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के माध्यम से पीएम कुसुम योजना के तहत प्रदेश के किसानों को खेतों में सौर ऊर्जा पंप लगाने के लिए 75% तक की सब्सिडी दी जा रही है। किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इस पंप की कुल लागत का 30% केंद्र सरकार और 45% राज्य सरकार देती है। किसान को केवल अपनी तरफ से 25% राशि का भुगतान करना होता है। किसान अपनी जरूरत के अनुसार 3 हॉर्स पावर से लेकर 10 हॉर्स पावर तक के सौर ऊर्जा पंप लगा सकते हैं। योजना का लाभ उठाने वाले जींद के गांव रदाना के प्रगतिशील किसान दलवीर चहल ने बताया,
1: प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत जो है सोलर पंप हमने लिया था गवर्नमेंट की तरफ से करीब 3-4 साल पहले। बहुत अच्छी योजना है। तो जो सोलर पंप है ये किसानों के लिए एक वरदान है, ना किसी प्रकार का कोई प्रदूषण है और करीब करीब 12 घंटे हमें सुविधा मिलती है। हमें दिन में पानी मिलता है, रात को लाइट कभी आती है कभी नहीं आती, ये भी काफी परेशानी थी और कट वगैरह होते थे। सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप सोलर पंप का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें।
0: प्यूत करनाल असंध टोल प्लाजा पर बीटेक छात्र योगराज पर 26 मई की रात हुए जानलेवा हमले के मामले में निसिंग थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इस मामले में टोल प्लाजा पर तैनात लगभग 10 कर्मचारियों द्वारा छात्र पर बेरहमी से हमला किए जाने का आरोप है। पीड़ित पक्ष के अनुसार छात्र योगराज अपने साथियों के साथ वाहन में सवार था। वाहन स्थानीय टोल फ्री श्रेणी में आता था। आरोप है कि टोल प्लाजा पर बिना वर्दी और बिना नेम प्लेट ड्यूटी कर रहे कुछ युवकों ने ईंटों, डंडों और लोहे के रॉड से हमला कर छात्र को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद घायल छात्र को पहले करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत के चलते उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। छात्र की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा 30 मई को प्रदेश भर में दूसरी हेरिटेज एंड सिटी वॉक का आयोजन किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य युवाओं, विद्यार्थियों और महिलाओं को प्रदेश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत से जोड़ना है। हरियाणा पर्यटन निगम के सहायक महाप्रबंधक हरविंदर यादव ने बताया कि आओ चलें अपने विरासत के साथ अभियान के तहत सुबह 6 बजे से 8 बजे तक 7 प्रमुख स्थलों पर वॉक आयोजित होगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।
2: हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.3 MHz पर। लीजिए श्रोताओं, विविध भारती के सदाबहार सुरीले कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपको हम ले चलते हैं।
3: आज की भारत के बारे में उन्होंने लिखा है और बेकरारी से इस सफर का इंतजार भी है। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जो ये गद्य है इबारत से पहाड़ों के हुस्न के साथ साथ परदेशी के की बात जो है इस पर है, परिदृश्य के प्रणयात्मक भावनाओं वाले माहौल का एक अच्छा चित्रण खींचा गया है और इस दृष्टिकोण से ये इबारत इस ग्रीष्म ऋतु के सुख का चित्रण करते रहने में सक्षम है। किंतु वे परदेशी जो परदेश जाने में असमर्थ हैं उनके लिए तो एक उपहार है ये गद्य, किंतु जो असमर्थ हैं उनके लिए अपनी सुरीली धड़कन के सुरीले धुन वाले गीत ही कुछ एक घंटे के लिए इस ग्रीष्म ऋतु में शीतल बयार तो जरूर बहाएंगे। और भी इन्होंने कुछ कुछ बातें लिखी हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के गद्यांश बर्फीले पहाड़ों के हुस्न की बात करते हुए जहां पर्वतीय गांव के लोगों के सादगी और चेहरे की मुस्कान को उजागर करते हैं, साथ ही में इस गांव की खूबसूरती और वहां आने वाले प्रवासी परदेसी को मिलने वाली ताजगी भरे मौसम को महसूस करने की बात भी कर रहा है। ऐसी ताजगी की अनुभूति हाल ही में खुद मुझे हुई जब पिछले हफ्ते नैनीताल की वादियों में घूमने गया था और पहाड़ों, जंगलों, घुमावदार रास्ते के बेहतरीन नजारा देखकर मन सुकून से भर गया। तो ये तो बताइए कि ये जो रास्ते हैं या ये जो वादियां हैं जहां आप सभी घूमने जाते हैं, हमारे बहुत सारे श्रोता घूमने जाते हैं, तो इनमें बड़े छोटे छोटे से गांव होते हैं श्रोताओं, जो पर्वतों की जो जगह हैं वहां पर स्थित होते हैं, निपथ में या कह सकते हैं थोड़ा पीछे की तरफ होते हैं। तो ऐसे कोई गांव जहां आप घूमने गए जो कुछ खास था उसके बारे में आप हमें लिख सकते हैं जरूर, और आपको बताना है कि गीतकार और संगीतकार इस गीत में कौन थे जो गीत अभी आपने सुना, और इस गीत में आपको ये बताना है कि ये वृक्ष जो हैं वो कौन से हैं।

विश्वजीत और आशा पारेख पर फिल्म है गया ये गीत था मेरे सनम फिल्म का। मोहम्मद रफी की आवाज में मजरूर सुल्तानपुरी के बोल थे। ओपन ईयर का संगीत था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने पिछले गीत के लिए लिखा है कि गीत और संगीत रविंद्र जैन के थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि गर्मियों का ये मौसम चाहे कितना भी तपन से भरा हो मगर हम सबके मन में कभी न कभी बचपन की वो गर्मियां बसी रहती हैं। इन भरी गर्मियों में पहाड़ का हुस्न देखा है कभी, जब सारी दुनिया सूरज के ताप से हैरान परेशान होती रहती है वो अपनी जगह पर अडिग अचल खड़ा रहता है। यही हुस्न है पहाड़ों का, इसमें बड़ी गहराई छुपी है। खेत में फसलों के बीच बनी पगडंडी से लगा गांव और वहां के लोगों की सादगी, सब कुछ मनमोहक। स्मृति का वो छोटा सा आंचल जहां पहाड़ है, गांव है और कुछ ऐसी ही बातों की यादों में आज भी मन डूबा रहता है किसी परदेसी की याद में। जी हाँ, ऐसा तो है श्रोताओं। और जब आपने इन जगहों की बात की है तो एक बात आप जरूर बताएं कि क्या पहाड़ों की सैर जरूरी है या फिर कहीं कभी कभी घूमना फिरना जरूरी है? अगर है तो क्यों है? और आज के कार्यक्रम में जो गीत हमने सजाए हैं उसमें एक बड़े प्यारे से एक गीत है, उसमें बड़े प्यारे से एक गांव का नाम आता है जो सर्द वादियों में है। तो उस गांव को अगर आप पहचान सकें तो क्या ही बात है। और आपको बताना है कि ये जो गीत आपको हम सुनवा रहे हैं इसमें एक खास तरह की नाव है, कश्मीर में इसे क्या कहते हैं? एक और श्रोता लिखती हैं कि प्रकृति का सानिध्य, हरी भरी पहाड़ियां और वहां का सादगी भरा मासूम सम्मोहक लोक जीवन, उन लोगों की छोटी छोटी वाजिब इच्छाएं, मनोकामनाएं, मेहमान नवाजी करते करते प्यार में पूरी तरह समर्पित हो जाना, परदेसियों से दिल के रिश्ते जोड़ लेना, ऐसी दिलकश बातों का सुंदर वर्णन इस परिच्छेद में किया गया है जो इन गांव के लोगों की तरह मन को मोह लेता है। तो आपका मन किसने मोह लिया श्रोताओं जब आप गए ऐसे किसी जगह पर घूमने के लिए? और हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि रेडियो की हर शय का इतना ही फसाना है, एक विविध भारती सुनना है, दूसरों को सुनाना है।

एसएच बिहारी के बोल ओपी नैयर का संगीत, काश्मीर की कली फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। ये जो छोटी सी नाव दिखाई देती है जिसमें बहुत सारे फूल होते हैं, श्रोताओ हमने आपसे पूछा कि इस नाव को क्या कहते हैं, क्योंकि कश्मीर की बोलचाल की भाषा में इस नाव को कुछ अलग ही कहते हैं, यह आपको बताना है। और कश्मीर के बड़े सारे सुंदर सुंदर जो चीजें होती हैं, बहुत सारी जो हाथ की बनी हुई होती हैं, क्या आपने उनमें से कोई चीज खरीदी है, या ऐसी जगहों का यानी पहाड़ी अंचलों का कोई मेला आपने देखा है। कुछ एक यहाँ के पारंपरिक पहनावे होते हैं, जैसे केदारनाथ की सुंदर घाटियों की अगर हम बात करें तो वहाँ कुछ गांवों में लवा पगड़ू या फिर ट्रेडिशनल ज्वेलरीज की अगर बात करें तो बुलाक गुलबंद, तो इस तरह की कोई चीज क्या आपने इन जगहों से कभी खरीदी है। वैसे हमें खरीदना तो जरूर चाहिए क्योंकि ये चीजें हाथ से बनी हुई होती हैं, और इन चीजों को खरीदने से हमारे दिल को एक खुशी तो मिलती ही है, साथ ही साथ यहाँ के लोगों को जो रोजगार है वो भी मिलता है, क्योंकि ये चीजें बनाना इनका एक घर का कह सकते हैं कि पारंपरिक रिवाज सा हो जाता है, जो इनका इनके जीविकोपार्जन के लिए बहुत जरूरी होता है। एक श्रोता लिखती है कि आज मौसम पहाड़ों चांद रास्ते परदेसी बर्फीले आदि शब्दों की झड़ी लगने वाली है, और कुछ गीत भी इन्होंने सुझाए हैं बताए हैं।

और एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि पहाड़ की प्रकृति की सबसे सुंदर कृतियों में से एक है ऊंचे ऊंचे पर्वत, वहाँ की हरियाली, झरने, बर्फ से ढकी चोटियाँ और शुद्ध हवा मन को शांति और आनंद देती हैं। पहाड़ों पर सूर्योदय और सूर्यास्त का भी सौंदर्य अद्भुत होता है। जलवायु संतुलन में भी पहाड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अधिकतर नदियाँ पहाड़ों से ही निकलती हैं। पर्यटन के लिए भी पहाड़ों का बहुत महत्व है। भाग दौड़ वाली जिंदगी से दूर सुकून के दो पल पहाड़ों के संग हमें रिचार्ज कर देते हैं। ये बिल्कुल सही है श्रोताओं, और वहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे खेल भी होते हैं जिनमें हम अक्सर भाग लिया करते हैं। तो ऐसे खेल भी क्या आपने खेले हैं तो आप बता सकते हैं। स्की वगैरह जो होता है वो पहाड़ों का बड़ा ही प्रसिद्ध खेल है। और कुछ एक बाग बगीचे होते हैं जो बड़े सुंदर होते हैं, जहाँ फूल बहुत ही अलग तरीके के होते हैं, तो वो भी आपने देखे हैं तो वो आप हमें लिख सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है, प्रकृति के नैसर्गिक रूपों का स्वाद चखना हो तो एक याद के रूप में संजोना चाहते हैं आप अगर, तो आम शहरी जिंदगी से बाहर निकल किसी भी पहाड़ पर सैर करना चाहिए। पहाड़ों पर कहीं आपको बर्फ की गिरते फाहों की ठंडक मिलेगी। शुद्ध हवा जो ऊंचे ऊंचे पेड़ों के पत्तों से एक भीनी सी खुशबू लिए आपको ऐसी शीतलता प्रदान करती है, मन मस्ती से झूमने लगता है। तो आप ये बताइए कि जब आपने पेड़ों की बात करी है तो ये ठंडे प्रदेश, यानी अगर खास हम कश्मीर की बात करें तो यहाँ एक बड़ा ही सुंदर सा पेड़ होता है जिसके पत्ते बड़े मशहूर हैं, क्योंकि ये पत्ते मौसम के हिसाब से रंग बदलते हैं श्रोताओं। तो इन पत्तों के बारे में बताइए। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने शिकारा लिखा है जो कश्मीर की खास नाव है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि गर्मियों में ठंडे और बर्फीले पहाड़ की सैर मानसिक शांति और सुकून के लिए बेहतरीन होती है। ताजी हवा, चांदनी रातें, परदेशियों से मिलना, मनमोहक दृश्य यकीनन सभी को मंत्रमुग्ध कर देते हैं।

जॉय मुखर्जी और साधना पर फिल्माया गया ये गीत आपने सुना एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज थी। एसएच बिहारी के बोलों को सुर में ढाला ओपी नैयर ने। वैसे हम आपसे पूछना चाहते थे कि संगीतकार के बारे में। जी हाँ, ये गीत जब सुनाई देते हैं श्रोताओं तो बड़े ही अच्छे लगते हैं, और ऐसा ही एक चित्रण हमारी ऐसी ही एक बात हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है। एक श्रोता लिखती है, गर्मियों में ठंडे और बर्फीले पहाड़ों की सैर मानसिक शांति और सुकून के लिए बेहतरीन होती है। ताजी हवा, चांदनी रातें, परदेसियों से मिलना, मोहक दृश्य, यकीनन सब कुछ अच्छे लगते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि ये विस्तृत पर्वत श्रृंखलाएं प्रकृति की एक अद्वितीय और मंत्रमुग्ध कर देने वाली कलाकृति है, जो अपनी विशालता, शांत वातावरण और अलौकिक दृश्यों से हर किसी के मन को असीम सुकून और आनंद से भर देती है। इन खूबसूरत पहाड़ों की ढलान घने देवदार, पाइन और ओक के पेड़ों से ढके रहते हैं, जो प्रकृति की मखमली हरी चादर जैसे दिखते हैं। साथ ही पहाड़ों के सीने को चीर कर निकलने वाले जलप्रपात और कलकल बहती हुई नदियां पहाड़ों के शांत वातावरण में एक मधुर और प्राकृतिक संगीत घोल देते हैं। जो भी यहां आता है बस यहीं का होकर रह जाता है। और अमीर खुसरो के बारे में भी इन्होंने लिखा है कि अगर फिरदौस बरवे जमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जी हाँ, ये कश्मीर के बारे में लिख रहे हैं। और एक श्रोता और लिखते हैं कि पिछली गर्मियों में मुझे हिमाचल प्रदेश के सुंदर पर्यटन स्थल खजियार जाने का अवसर मिला। चारों ओर फैली हरियाली, ऊंचे देवदार के पेड़ और ठंडी हवाएं मन को बहुत सुकून दे रही थी। वहां का सुंदर मैदान और छोटी झील देखने लायक थी। शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता ने मेरे मन को मोह लिया। खजियार की ये यात्रा मेरे जीवन की एक यादगार यात्रा बन गई। आप ये एक बात बताएं श्रोताओं कि आपने इतनी जगहों पर घूमा है, आपने यहाँ की जो सुंदर वादियां हैं वो इसी तरह से रहें और प्रकृति की गोद में ऐसे ही रहें, ये हमें देखने में क्योंकि बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि ये साफ सुथरी रहती हैं, और ऐसी क्या आपने कोशिश की तो ये हमें जरूर बताएं। और कौन सी ऐसी जगह थी जो आपको बहुत अच्छी लगी। एक और श्रोता ने लिखा है, गर्मियों में पहाड़ों की खूबसूरती मन को सुकून देती है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि इस तपती हुई गर्मी में पहाड़ पर जाना बहुत अच्छा लगता है। एक और भी श्रोताओं के बहुत सारे कमेंट्स हैं श्रोताओं, हम शामिल करने की कोशिश करेंगे एक के बाद एक। आप यहाँ की फोटोग्राफी के बारे में कुछ अगर बताना चाहें तो जरूर बता सकते हैं।

संजय खान और साधना नजर आते हैं और ये सेब का बगीचा है श्रोताओ, बड़ा ही सुंदर। और आप एक सवाल का अगर जवाब दे सकें कि कश्मीर में किस चीज की खेती सबसे ज्यादा होती है, तो इस सवाल का जवाब आपको देना है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बाजारों में चहल पहल बढ़ते ही रौनक दुगनी हो जाती है। जी हाँ, इन जगहों के जो बाजार होते हैं श्रोताओं, वो बहुत अलग होते हैं। दूर दराज से आए सैलानी यहाँ की बनी हाथ की कलाकृतियाँ, गर्म शॉल और मीठे पहाड़ी सेब बड़े चाव से खरीदते हैं। हर मोड़ पर मुस्कुराते चेहरे और उनकी मेहमान नवाजी अजनबियों को भी अपना बना लेती है। शाम ढलते ही जब पहाड़ों पर दीयों की तरह रोशनी जगमगाती है, तो एक सुहाना रूहानी जुड़ाव महसूस होता है। मुसाफिर यहाँ की अनमोल यादें और कभी न टूटने वाला स्नेह अपने दिल में समेट कर अगले साल फिर लौटने की कसम खाकर विदा लेते हैं। एक श्रोता और लिखते हैं कि पहाड़ों पर यही मौसम सबसे ज्यादा सुकून देता है, जो सर्दी का मौसम सा होता है वो। पहाड़ों पर शोरगुल बिल्कुल थम सा जाता है, आवाज आती है तो सिर्फ हवा, नदी के बहते पानी और कलरव करते पक्षियों की। पहाड़ी जीवन शैली सादगी में स्थिरता को सबक देती है। पहाड़ में बुलाते ही नहीं, वो पुकारते हैं। जो एक बार चला जाए वो बार बार वहां जाना चाहता है। बहुत सारे गीत भी इन्होंने लिखे हैं। और एक श्रोता लिखती है कि हिमालय की पीर पंजाल की बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां हो या अरावली की शांत प्राचीन पर्वतमालाएं, हर पहाड़ अपने भीतर अलग कहानी, अलग सुकून और अलग संगीत समेटे हुए है। गर्मियों के मौसम में पहाड़ों की सुंदरता अपने चरम पर होती है। बर्फ की चादर हटने के बाद हरी भरी वादियां, ठंडी और ताजा हवाएं और रास्तों पर पसरा सन्नाटा मन को असीम सुकून देता है। जब सुबह के समय पहाड़ों से धुंध का पर्दा हटता है, तो ढलानों पर बसे छोटे छोटे गांव और चमकती हुई बर्फीली चोटियां किसी जादुई सपने जैसी दिखाई देती हैं। यहाँ की सादगी, प्रकृति वैभव और पहाड़ों का शांत वातावरण मन मोह लेता है। पर्वत केवल धरती का श्रृंगार नहीं, बल्कि भावनाओं का वो संसार है जहाँ हर परदेसी अपना एक हिस्सा छोड़ आता है। आपने पीर पंजाल की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनकी बात करी है, तो लीजिए वहीं का गीत सुनिए।

महबूबा फिल्म का ये गीत था राजेश खन्ना और हेमा मालिनी पर फिल्माया गया है। श्रोताओं, आपने क्या इस गांव को देखा है? क्या ये गांव जिसका जिक्र हो रहा है वो सचमुच है हमारे देश में? अगर आप गए हैं या फिर अगर है तो आप हमें जरूर बताएं। और हमने आपसे पूछा था कि क्या आपको ऐसी जगहों पर फोटोग्राफी करना अच्छा लगता है, तो ये भी आप हमें बता सकते हैं, लेकिन फोटोग्राफी में बहुत सारी सावधानियां भी होनी चाहिए। और एक श्रोता ने लिखा है, आज की इमारत में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बर्फीली चादरों में सिमटी बर्फ की चादरें और हसीन वादियों पर फिल्माए गए गीतों को सुनकर इस तपती हुई गर्मी में मन को ठंडक पहुंचेगी। बर्फीले पहाड़ों में छिपी प्राकृतिक सुंदरता निश्चित रूप से मन को गहरा सुकून और शांति देती है। श्वेत बर्फ, साफ नीले आसमान और पहाड़ों के ऊपर से बहते झरनों का दृश्य और ठंडी हवाओं का झोंका शारीरिक और मानसिक थकान को स्वतही दूर कर देता है। और एक और श्रोता लिखते हैं, अब पहाड़ों पर गर्मी के मौसम में बर्फ का अभाव सा है, वहां अब ग्लोबल वार्मिंग से पहाड़ों की बर्फ पिघल रही है और पर्वतीय क्षेत्रों के तापमान जो हैं वो ज्यादा, इन्होंने कुछ लिखे हुए हैं। जी हां, इस बात का भी हम सबको ख्याल रखना चाहिए कि जब भी हम ऐसी जगहों पर घूमने जाएं तो यहां की सुंदरता को बिल्कुल बरकरार रखें, और ये तभी हो सकता है जब हम प्रकृति के साथ साथ चलें। और जिस गांव का जिक्र है, वो गांव जो गीत हमने आपको सुनाया, उस गांव के बारे में आपको लिखना है कि क्या ये गांव सचमुच अस्तित्व में है, ये कौन सा गांव है जिसके बारे में गीत में बातें की जा रही थी। पहाड़ों की रानी किस शहर को कहते हैं श्रोताओं?

गीतकार आप बता दें इस गीत के, प्रोफेसर फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर आशा भोसले की आवाजों में। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत के शब्दों से जो गीत उभर कर आ रहे हैं उन्हें हमारे कई बंधुओं ने अपनी सूची में शामिल किया है। जिक्र जब पहाड़ों का हो तो मैं खुद ब खुद शामिल हो जाता हूँ, मुझे पहाड़ों पर जाना, वहां घूमना, वहां के लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। इस क्रम में मैंने भारत के सभी पहाड़ी पर्यटन स्थल का दौरा किया है और अपनी पसंद के हिसाब से अगर नामांकन करूं तो पहलगाम, शिलांग और खजिया बहुत सारी जगहों का इन्होंने जिक्र किया है। तो ऐसी जगहों पर जब आप जाते हैं तो आपको कौन सी बातें बहुत अच्छी लगती हैं श्रोताओं, या कोई यादगार चीज जो आपके साथ रह गई? कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम जाते हैं तो कुछ एक लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ताउम्र याद रहते हैं, तो ऐसा कोई आपके साथ वाकया हो तो आप जरूर बताएं। एक और श्रोता लिखते हैं कि सफर में पहाड़ों के बीच सुकून भरे वातावरण में मधुर गीतों के साथ चलने की तैयारी है और इन्होंने अपने अनुमान के हिसाब से बहुत सारे गीतों को लिखा है, तो देखते हैं कि और कौन से गीत आज शामिल होते हैं। वैसे ये गीत जो अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उस गीत का जो पिक्चराइजेशन है श्रोताओं, वो एक देश है वहां के बड़े ही पारंपरिक और प्राचीन बाजार का है। क्या आप कभी यहाँ गए हैं? क्या आपने इस बाजार को कभी देखा है, कभी कुछ खरीदा है?

हरे रामा हरे कृष्णा सुनकर ये गीत था लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में। और ये हमने पूछा था कि इसकी शूटिंग कहाँ की है श्रोताओं, तो ये भक्तपुर दरबार स्क्वायर है जो वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है, और ये जो जगह है ये काठमांडू नेपाल में है। तो क्या आप यहाँ गए हैं इसके बारे में हमें जरूर बताइएगा। और यहाँ की जो पारंपरिक चीजें हैं, यहाँ हाथ से बनी हुई चीजों की बात अगर हम करें, या फिर वुड कार्विंग्स यानी कि जो लकड़ी के सामान होते हैं जिनमें नक्काशी की जाती है, जैसे कश्मीर में अखरोट की लकड़ी से अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी की जाती है, पॉटरीज भी यहाँ की जो है वो बहुत बिकती है, और भी खाने पीने की चीजों के लिए भी ये जगह बहुत प्रसिद्ध है। तो क्या आप इस जगह गए हैं तो हमें जरूर लिख भेजें। और ऐसे कुछ एक शहर हमारे देश में भी, कुछ एक नहीं बल्कि बहुत सारे शहर हैं, और अगर हम बात करें शिमले की बात करें, या फिर हम बात करें मसूरी की बात करें, कश्मीर की बात करें, या फिर हम केदारनाथ की घाटियों की बात करें, तो ऐसी जगहों के बारे में भी आप अपनी बातें हमसे बता सकते हैं। टॉय ट्रेन का सफर क्या आपने किया है हमें बताएं।

सुजीत कुमार और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे आराधना फिल्म से। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि 3 साल पहले जब कोंकण से वापस आ रहे थे तब ट्रेवलर फोड़ा घाट से आ रही थी, बीच में रुकी सब बाहर निकले, हाय वो क्या नजारा था, बेमिसाल हरा भरा हुस्न सह्याद्री का वो पहाड़, उस पे वो बड़े बड़े पेड़, नीचे गहरी खाई। और एक और श्रोता ने लिखा है कि पहाड़ों नदी पर जब जाते हैं घर से खाना लेकर जाते हैं ये सब एक साथ मिलकर खाते हैं तो बड़ा मजा आता है और वहां की शीतलता मन को सुकून पहुंचाती है। ऐसी यादगार यात्राएं हमेशा याद रहती हैं। श्रोता, हमने आपसे चंबा नाम के गांव के बारे में पूछा था और उसके बारे में हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा भी है। ये गांव पीर पंजाल की जो पर्वत श्रेणी है उसके बीच बसा हुआ है, बड़ा ही सुंदर सा गाँव है और महबूबा फिल्म की शूटिंग भी यहाँ पर हुई है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मसूरी को कहते हैं पहाड़ों की रानी, दूसरे चंबे का गांव भी है। वैसे चंबा घाटी में बहुत से छोटे छोटे गांव हैं लेकिन गाने में जिस गांव की बात है वो बड़े ही दुर्गम क्षेत्र में है। एक और श्रोता ने लिखा है कि शीतल शीतल पवन झकोरे, हरे भरे ऊंचे जो पेड़ों से सजी पहाड़ों की ऊंची चोटियां, उनसे लिपटा उदक से पानी से यानी कि भरे काले बादल का मंडल, ये सुंदर दृश्य देखा है नीलगिरी पर्वत के उत्कमंड नगरी में। जी हाँ, दुर्दब्बा बेटा शिखर का, जिसने हमेशा के लिए मेरे मन को मोह लिया है।

कलाकार बता दें श्रोताओं, और मेरी सनम फिल्म का जो सवाल हमने आपसे पूछा था, वो गीत में जो किनारे वृक्ष दिखाई देते हैं देवदार के हैं, ऐसा हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है।

ये रात फिर ना आएगी फिल्म का गीत था विश्वजीत और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया। आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया श्रोताओं। कार्यक्रम सुरीला सफर यहीं संपन्न होता है।

0: exchanged military strikes near the strategically important Strait of Hormuz. The U.S. military said it shot down 4 Iranian attack drones and struck a drone control station in Bandar Abbas. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps confirmed the strikes and said it retaliated by targeting an American military base as Kuwait, a U.S. ally, said. Earlier it was responding to hostile missile and drone attacks. In badminton, India enjoyed an impressive day at the Singapore Open today with Lakshya Sen, PV Sindhu, the men's doubles pair of Chirag Shetty and Sattvik Sairaj Ranki Reddy, and the mixed doubles duo of Dhruv Kapila and Tanisha Krasto all advancing to the quarterfinals. Sindhu defeated Japan's Riku Gunji in pre-quarterfinals of the women's singles round of 16. Lakshya sailed into the last 8 after Thailand's world number 2 Kunlavut Vidithsan retired hurt just moments into their round of 16 clash. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu urges police forces to be more citizen-centric and sensitive towards vulnerable sections. Education Minister Dharmendra Pradhan assures resolution of all grievances of students regarding discrepancies in CBSE Class 12 examination evaluation process. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah announces resignation. Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar set to take over. Fragile ceasefire between US and Iran under strain as both sides exchange fresh strikes near the strategically vital Strait of Hormuz. And in badminton, PV Sindhu and Lakshya Sen storm into singles quarterfinals of Singapore Open. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमरीका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश अब समाचार विस्तार से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है श्री प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा
2: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनके आंसर शीट उनके हाथ में आए ये ओएसएम की व्यवस्था पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही उसको मैं दायित्व लेता हूँ उसको इसे ठीक करा जाए हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं

0: निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
2: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धारमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोकभवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं। इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें ज़हरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यांची ने किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिच सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के 2 व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी ISI के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा

0: हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी। कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
1: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहां 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर बग्घी में ईदगाह तक पहुंचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
2: ईद उल अजहा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद में नमाज दो सत्रों में आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से
0: नहार। श्रीलंका से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईद उल अजहा का त्योहार वहां हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
3: आज श्रीलंका में ईद उल अजहा यानी बकरीद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने अमन, भाईचारे और कुर्बानी के संदेश को याद किया। परिवारों और समुदायों ने मिलकर त्योहार मनाया तथा जरूरतमंदों में भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारसनायका ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। अहमद मुईन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बारासात निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी

0: सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान के रिको गुंजी को सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर।

0: रफी, लता मंगेशकर के युगल स्वरों में शागिर्द फिल्म का गीत आपने सुना। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजों में लाड साहब फिल्म का ये गीत था हसरत जयपुरी का, लिखा तर्ज थी शंकर जयकिशन की।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: फिल्म औरत में आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें। शकील बदायूनी के बोलों को सुरों में ढाला रफी ने। श्रोताओं, सदाबहार नगमे कार्यक्रम संपन्न होता है, दीजिए इजाजत। संगीता श्रीवास्तव को नमस्कार।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सखी सहेली सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। आरती आपको भी मेरा नमस्कार।
1: सोनाली आपको और सभी सखियों को सभी सखाओं को श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: और आरती कैसी हैं आप?
1: बस ठीक है, गर्मी में जितना ठीक हो सकते उतना ही ठीक है क्योंकि जो धूप के हाल है गर्मी के हाल है ना, बस पूछिए मत।
0: नहीं पर हम अगर गर्मी की बातें करते हैं तो गर्मी ज्यादा लगती है।
1: हाँ ये बात भी है,
0: इसलिए हमें ना गर्मी की बात ही नहीं करना
1: है, सोचना ही नहीं है कि हाँ। गर्मी है, अरे बिल्कुल गर्मी नहीं है
0: तभी तो हम खुश रह सकते हैं ना, क्योंकि खुश रहने के लिए हमें बस वजह ढूंढना चाहिए, है ना।
1: तो है।
0: क्योंकि खुशियों की वजह अगर हम ढूंढते हैं तो सचमुच जिंदगी हमारी बहुत खुश हो जाती है।
1: बिल्कुल, और मैं तो कहती हूँ वजह भी ढूंढने की क्या जरूरत है, बस हंसिए मुस्कुराइए खुशियां मनाइए।
0: बहुत प्यारे प्यारे गाने सुनिए, विविध हाँ। भारती सुनते रहिए, है ना। और आज के विषय बता दें।
1: आज के विषय है हम बात करेंगे आज अपने बच्चों की जो झूठी झूठी प्रशंसा करते हैं उनके ऊपर। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम बहुत सभी लोग अक्सर करते हैं क्योंकि अपने बच्चे सभी को प्यारे होते हैं तो वो आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। तो इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि आप तो नहीं है या आप हैं तो आप भी कितनी मतलब इस चीज को करते हैं कि झूठी प्रशंसा करते हैं, कितना करते हैं, तो इसी बारे में आप बताइए। या कोई आपको ऐसा कुछ अनुभव हुआ हो, किसी पड़ोसी ने कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा बोल दिया हो। और आज हम बात करेंगे कहानी पद्मश्री के अंदर किसके बारे में,
0: के चल्लमल नारियल अम्मा, उनकी बारे में हम जानकारी देंगे। और साथ ही मुझे कुछ कहना है, इसमें हमें श्रोताओं से हम गुजारिश करेंगे कि भाई आप लिखिए कि गेमिंग का दलदल क्या है, इसमें आपके इर्द गिर्द के आसपास के लोग इस दलदल में क्या फंसे हुए हैं या आप इससे दूर है, इस विषय पर हमें लिखिए कमेंट्स, क्योंकि ये सिर्फ श्रोताओं का सेगमेंट है ना।
1: और एक बात मैं आपको बता दूं सोनाली, इस दलदल में थोड़ी सा पहले मैं खुद भी फंसी थी। बिल्कुल, और मुझे ऐसा हो गया था ना कि मैं बस खेलती चली जा रही हूँ और एक लेवल दो लेवल मैंने कहा कि बस किसी तरह से अगले लेवल पहुंच जाऊं, फिर मैंने कहा ये मुझे हो क्या रहा है, मैं पूरे टाइम सिर्फ इसी को कर रही हूँ। तो ये चीज से आप बाहर निकले, तो इसके बारे में बात करेंगे विस्तार से बाद में। और भी तो विषय है,
0: और आज एक खास दिन है आरती, ईद उल अजहा, बकरीद भी है आज, तो उस बारे में भी हम बहुत सारे सखियों को श्रोताओं को शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। और साथ ही उपयोगी टिप्स, ये बहुत जरूरी टिप्स है आज
1: हाँ,
0: की,
1: ताकि हमारा नेट जो है वो एकदम चलता रहे और हम अपना आराम से विविध भारती बिना उसके रोक टोक के सुन सके आराम से। और साथ ही और भी अगर हम कुछ देखना चाह रहे हैं, कुछ मनोरंजन करना चाह रहे हैं तो कर सकें, तो उसके लिए जरूरी है वाईफाई, क्योंकि डेटा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, तो वाईफाई होता है ना वो बहुत आराम से चलता है, पूरी फैमिली भी उससे कर सकती है, लाभ उठा सकती है। तो उसकी स्पीड अगर धीमी है तो हम कैसे उसको सही कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे।
0: और आप क्या करें,
1: एक गीत सुनते हैं।
0: तो सुनते हैं गीत।

0: तो भाई सच में बहुत महके हुए से आज कभी देखो ना किसी को कि कोई अपनी फ्रेंड है तो बहुत मुस्कुरा सी रही, तो हमें पता चल जाता है कुछ तो राज उसने छुपा के रखा है। जैसे अभी मुझे लग रहा है सोनाली को देख के कि कुछ राज तो है, कि यानी वो पढ़ने वाली है, कोई कमेंट या कुछ बताने वाली है।
1: जी नहीं, आज हम सबसे पहले तो हमारे सभी सखियों को, श्रोताओं को बकरी ईद या ईद उल अजहा की हम
0: बहुत बहुत
1: मुबारक।
0: मुबारकबाद देते हैं
1: जी, और ये जो इस्लाम का दूसरा सबसे प्रमुख और पवित्र त्योहार है, जो पैगंबर हजरत इब्राहिम की अटूट आस्था, त्याग और समर्पण की याद में मनाया जाता है। ये त्योहार इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। ये रमजान के खत्म होने के लगभग 70 दिन बाद आता है। ये चांद के देखने पर निर्भर करता है, इसलिए देश और स्थान के अनुसार इसकी तारीख में थोड़ा अंतर हो सकता है।
0: जी बिल्कुल। और बकरीद के दिन सुबह ईदगाह या मस्जिदों में विशेष ईद की नमाज भी अदा की जाती है, और नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। इस दिन घरों में खास तौर पर बिरयानी और अन्य लजीज पकवान बनाए जाते हैं, और गरीबों और जरूरतमंदों को दान या जकात देना इस त्योहार का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है।
1: तो सारे हम सखियों को, श्रोताओं को ईद की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं
0: जी।
1: देते हैं।

0: सच में इतना बढ़िया लगता है ना गाना ये.
1: जब है ना, जब कोई भी त्योहार हो तो अलग ही एक ना आनंद की अनुभूति होती है ना. फिर घर में सब लोग मिलते हैं और खुशियों की बरसात होती है. वैसे कुछ शख्सियत भी ऐसी होती है ना जिनके व्यवहार के कारण, जिनके कार्यों के कारण हमें ना हर बार एकदम खुश खुश रहते हैं हमें ना उनके काम.
0: हमें एक प्रेरणा मिलती है. कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिनकी वजह से हमें प्रेरणा मिलती है, हम भी कुछ आगे करने का सोचते हैं या हम ये निर्णय लेते हैं कि हमें अपने लिए आगे क्या करना चाहिए. हम ऐसे बैठे हैं तो हमें और कुछ हम क्या कर सकते हैं, हम अपने टैलेंट को किस तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं. तो बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं, उनमें से आज हम एक व्यक्तित्व के बारे में बात करने वाले हैं.
1: जी
0: आज हम बात करेंगे
1: के चेलम्मल जी, जिनका जन्म 6 फरवरी 1957 को उनका हुआ था जन्म. और उनका नाम है श्रीमती चेलम्मल, जिन्होंने कक्षा 6 तक की पढ़ाई की और नारियल अम्मा के नाम से जो मशहूर है. और चेलम्मल दक्षिण अंडमान के रंगाचांग की रहने वाली है. और चेलम्मल 10 एकड़ जमीन पर एकदम अलग तरह से उन्होंने खेती की, जैविक तरह की उन्होंने खेती की.
0: बिल्कुल, और वो जैविक खेती के माध्यम से अनानास, केला, लौंग और अदरक की खेती करती हैं. इसके अलावा वो अपने बगीचे में अनोखे तरीके से नारियल की खेती करती हैं, जिसके कारण वो किसानों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गई और लोग उन्हें नारियल अम्मा कहने लगे.
1: और उन्होंने 150 से अधिक किसानों को जैविक खेती के लिए भी प्रेरित किया. उन्होंने कई सरल तरीके निकाले जिससे नारियल की खेती बहुत आसानी से की जा सके, इसमें लागत भी कम आती है और पेड़ों को भी नुकसान से बचाया भी जा सकता है.
0: बिल्कुल, और उन्होंने नारियल और ताड़ के पेड़ों को नुकसान से बचाने के लिए सस्ते तरीके खोजे हैं. वो हमेशा दूसरे किसानों के साथ अपने विचार साझा करने के लिए तैयार रहती हैं. उन्होंने आसपास के गांवों के 170 से अधिक किसानों को प्रशिक्षण भी दिया है.
1: और कृषि कॉलेज और संस्थान अपने छात्रों को अध्ययन के लिए उनके खेत पर भेजते हैं जहाँ वे नारियल के पेड़ उगाती है. उन्हें दालचीनी, तेज पत्ता, काली मिर्च, पान का पत्ता, रतालू, सुपारी, अदरक, हल्दी, पपीता, केला, चीकू, हेलिकोनिया फूल और गेंदा और बहुत सारी सब्जियों की फसलों को उगाकर उन्होंने अपनी आमदनी में भी बढ़ाई.
0: बिल्कुल, कितनी ज्यादा चीजों को उन्होंने, वो भी देखिए आज के समय में जब फसलों को इतना ज्यादा जब नुकसान पहुंचता है या इस रासायनिक चीजों से, उस समय वो जैविक खेती कर रही, कितनी अच्छी बात है. और श्रीमती चेलम्मल ने नारियल को चूहों से होने वाले नुकसान पर काबू पाने के लिए नए उपाय विकसित किए. वो अपने खेत में जैविक कृषि तकनीकों को अपनाती हैं, साथ ही कीटों से फसलों को होने वाले रोगों और नुकसान से बचाव के लिए भी उन्होंने बहुत से कारगर उपाय विकसित किए जो बहुत काम के साबित हुए.
1: और चेलम्मल ने अपने खेत में हरित खाद और गोबर की खाद का उपयोग किया है. साथ ही वो परागण के लिए मधुमक्खी पालन करती है और लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करती है. अंडमान में खेती करते हुए श्रीमती चेलम्मल ने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है.
0: बिल्कुल, देखिए कितनी बड़ी बात है. वो मधुमक्खी जो जिसके बारे में कहा था कि बहुत जरूरी है ना इस पृथ्वी को जीवन को बचाए रखने के लिए, तो वो परागण के लिए बहुत सारी फसलों का परागण वो करती है मधुमक्खी.
1: देखिए
0: तो उसके लिए भी उन्होंने कितना किया, तो बहुत ज्यादा वो समझ लीजिए पर्यावरण की रक्षक की तरीके से एक तरह. और लेकिन उनका अब जो खेत है वो लोगों के लिए, कृषि और छात्रों के लिए एक आदर्श मॉडल बन चुका है. उनका खेत फसलों और मिट्टी की उत्पादकता को बनाए रखते हुए बहुत अच्छी आय का साधन है. उन्होंने अंडमान में एग्रो टूरिज्म के क्षेत्र में एक अवसर देखा, इसलिए उन्होंने अपने खेत में एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा भी दिया है.
1: अब स्थानीय और पूरे देश के अलावा विदेशों से पर्यटक उनके खेत को देखने समझने आते हैं. और श्रीमती चेलम्मल को अब तक बहुत से पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं. उन्हें केरल के नारियल विकास बोर्ड से सर्वश्रेष्ठ नारियल किसान का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है.
0: बिल्कुल, और मसालों और फूलों की खेती के क्षेत्र में प्रगति के लिए इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च फाउंडेशन अवार्ड, साथ ही इनोवेटिव फार्मर अवार्ड, ICAR और CIARI पोर्ट ब्लेयर द्वारा आयोजित किसान मेले में उन्हें सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार भी मिला है.
1: और द्वीप पर्यटन महोत्सव 2014 के दौरान कृषि विभाग द्वारा राज्य स्तर पर आयोजित फल फूल और सब्जी के लिए प्रथम पुरस्कार और वर्ष 2016 में केंद्रीय द्वीप कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर की ओर से प्रगतिशील सर्वश्रेष्ठ कृषक का पुरस्कार भी आपको मिला है.
0: बिल्कुल, और उनके अनोखे जैविक कृषि तरीकों, नवाचार और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए उन्हें 2024 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया.
1: और सचमुच ऐसी जब महिलाएं हमारे इर्द गिर्द होती हैं तो हमें कितना इन्हें गर्व महसूस होता है कि हमारे भारतवर्ष में इतनी सारी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए और हमारी सरकार उन्हें पद्मश्री से सम्मानित.
0: पढ़ाई ना होने का रोना भी नहीं रोती है.
1: बिल्कुल,
0: पढ़ाई सिर्फ देखिए हमें एक डिग्री देती है और हमें थोड़ा हमारा ज्ञान हमारा विकसित करती है, लेकिन जो हमारे अंदर जो जो एक कला होती है ना, वो हर चीज को, वो जो कला होती है जो मिट्टी को भी छू ले तो सोना बन जाए, वो कला को अपने निखारना चाहिए.
1: और अब एक संदेश सुन ले.
0: बिल्कुल,
2: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
3: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
2: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
4: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
2: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
4: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
2: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
1: तो आरती, हमारे अपना कार्यक्रम सखी सहेली, उसका जन्मदिन है, तो हमारे मन में भी बहुत खुशी है कि हम बहुत धूमधाम से पूरे श्रोताओं के संग, सखियों के संग ये हमारा जन्मदिन मनाएंगे। तो आप आ रही है ना?
0: बिल्कुल आ रहे हैं। आना ही है भाई, जन्मदिन मनाना है तो जश्न में शामिल तो होना ही है।
1: और हमारे बहुत सारे श्रोता है, हमारी सखियां वे भी आएंगे, पर इससे पहले हम एक गाना सुन ले।
0: बिल्कुल
1: सुनते हैं गीत।

0: तो आंखों ही आंखों में हम पता कर लेते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है सच बोल
1: बिल्कुल,
0: रहा
1: वो तो पता चल ही जाता है चेहरे को देख के।
0: है कि देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना, हाल ही में रिजल्ट आए बच्चों के, तो कुछ कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है कि भले उनके 57% हो तो कहेंगे कि हमारे बच्चों को 75% आए
1: हाँ ये तो होता है, ये तो होता है।
0: और वो ये भी नहीं, वो उन्हें मालूम होता है कि कोई थोड़ी मार्क लिस्ट देखने आने वाला है, उन्हें तो नहीं मालूम पड़ेगा। पर देखिए एक झूठ के पीछे हमें 100 झूठ बोलना पड़ता है। और क्या होता है ना, बच्चों को जब ये झूठ सुनने की आदत हो जाती है ना, तो उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि उनकी झूठी तारीफ हो। और फिर आगे चल के जब उन्हें आगे की दुनिया में जाके अगर किसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो वे टूट कर बिखर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जो है ना असफलता का सामना करने की आदत ही नहीं होती है
1: नहीं,
0: उन्हें।
1: उनको लगता है कि नहीं अब हमारे साथ, जब आप उनके सामने उनकी तारीफ कर देते हैं झूठी ना, तो उनको लगता है नहीं कोई बात नहीं, हमारे अगर आवाज अच्छे नहीं आए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मेरी मम्मी या मेरे जो परिवार वाले हैं वो कह ही देंगे, किसी ना किसी से कुछ तो कह ही देंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फिर वो उतनी मेहनत भी नहीं करते, वो अपनी पढ़ाई को लेकर उतना सीरियस भी नहीं होते, और फिर अपने वो खेल में उसी तरह से अपने दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं। जबकि आप उन्हें जब समझाएं चीजें, वो चीजों को कि नहीं तुम्हें आगे अच्छा करना है, और वो जो जो चीज उनकी रिजल्ट है वही आप सबको बताएं, तो उनको लगेगा नहीं हमें अब आगे करना पड़ेगा कुछ।
0: जी, एक हमारे साथी ने लिखा है, बच्चों की झूठी या बढ़ा चढ़ाकर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के बजाय उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। इससे बच्चों में अहंकार आ जाता है, वे वास्तविक चुनौतियों का सामना करने से डरने लगती है, और माता पिता की विश्वसनीयता भी कम हो जाती है। बिना किसी खास वजह के तारीफ करने से बच्चे खुद को हर चीज में परफेक्ट समझने लगते हैं। जब वे असल दुनिया में असफल होते हैं तो गहरे गुस्से या निराशा में चले जाते हैं। जब बच्चों को लगता है कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं और हमेशा सर्वश्रेष्ठ है, तो उनके भीतर नई चीजें सीखने मेहनत करने की ललक कम हो जाती है। उनके प्रयास की तारीफ करें, परिणाम की नहीं, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें तो फर्स्ट आना ही है। कहना तो ये चाहिए कि मुझे अच्छा लगा तुमने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितनी मेहनत की। प्रयास अपना होता है, परिणाम दूसरों के हाथ में होते हैं, इससे बच्चों में लगन बढ़ती है। और बहुत बार बच्चों के टीचर अभिभावकों को शिकायत करते हैं, कुछ भी करने पर कहता है तो मैं कर लूंगा पर बहुत तेज हो करता कुछ नहीं है। तो टीचर की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी है, उन्हें सिखाए। और हर काम परफेक्ट हो कोई जरूरी नहीं है, उस काम में निराशा भी नहीं होना चाहिए।
1: बिल्कुल, और लेकिन उस चीज को लेके इतना ज्यादा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए कि सामने वाले को आप कहें कि इस तरह से, तो बच्चे का जो मनोबल है ना, वो जो उसकी ललक होती है वो कम हो जाती है। इसलिए एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बात अगर झूठी प्रशंसा की हो तब बच्चे तो क्या बड़ों की भी नहीं करनी चाहिए, और अरे विविध भारती की भी झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, हालांकि वो हमें ऐसा मौका कभी देता नहीं कि हमें उसकी झूठी तारीफ करनी पड़े। तो झूठी प्रशंसा खासकर बच्चों की तो नहीं करनी चाहिए, इससे उनकी सीखने की क्षमता कम हो सकती है, आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। इसलिए झूठी तारीफ के बजाय उनके द्वारा किए गए प्रयासों की सच्ची सराहना करनी चाहिए और उन्हें सकारात्मक फीडबैक देना चाहिए।
0: क्या बात है, एक हमारे
1: आगे कर सकें।
0: जी, एक हमारे साथी लिखते हैं, तुम सबसे होशियार हो, तुम कभी गलती नहीं कर सकती, तुमसे अच्छा कोई नहीं। ऐसी बातें सुनकर बच्चा धीरे धीरे वास्तविकता से दूर होने लगता है। जब बच्चे को बिना मेहनत के बार बार प्रशंसा मिलती है तो अपनी कमियों को समझ नहीं पाता। अतः माता पिता को चाहिए कि बच्चों की तुलना कभी दूसरों से ना करें और ना ही झूठी प्रशंसा करके उन्हें भ्रम में रखें। सच्चाई, प्रोत्साहन और सही मार्गदर्शन ही बच्चे के अच्छे भविष्य की नींव बनते हैं। इसलिए बच्चों से प्रेम करें, उनका उत्साह बढ़ाएं, लेकिन प्रशंसा हमेशा सच्ची और उचित होना चाहिए।
1: बिल्कुल, और एक और श्रोता है, इन्होंने बहुत बहुत बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो कुछ चीजें हम पढ़ लेते हैं इसमें से। तो उन्होंने लिखा है कि बच्चों की झूठी ये अत्यधिक प्रशंसा उनके विकास के लिए हानिकारक हो सकती है, ये उन्हें आत्ममुग्ध बना सकती है, असफलता से डरने वाला बना सकती है, और उनमें वास्तविक क्षमताओं के प्रति संदेह पैदा कर सकती है। सच्ची और विशिष्ट तारीफ जैसे की मेहनत, प्रक्रिया या व्यवहार की, इनकी आप तारीफ करिए, उनके आत्मविश्वास और लचीलेपन की तारीफ करिए। झूठी प्रशंसा के जो जो दुष्प्रभाव है वो ये देखने को मिलते हैं कि वो बच्चा अहंकारी भी हो जाता है, आत्ममुग्ध भी हो जाता है, और साथ ही अनावश्यक तारीफ बच्चों को अपने साथियों से ज्यादा श्रेष्ठ महसूस कराती है, जिससे वो उनमें अहंकार पैदा हो जाता है, और वो विफलता से डरने भी लगते हैं, और उनमें लगता है कि मैं बेहतरीन हूँ, तो वो एक झूठ उनके अंदर आ जाता है।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है आरती, कि अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा, वैसे देखा जाए तो मैं कभी अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा नहीं करती, लेकिन हाँ जब भी वे कोई अच्छा काम करते हैं तो मैं उनकी दिल से तारीफ जरूर करती हूँ। मैं उन्हें कहती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। मेरी बात सुनकर बच्चे खुश भी हो जाते हैं और उन्हें आगे और अच्छा करने का मोटिवेशन भी मिलता है। मेरा मानना है कि बच्चों की सही समय पर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और उन्हें बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ बच्चों की हौसला अफजाई जरूर होनी चाहिए, बस झूठी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए।
1: बिल्कुल। एक और श्रोता जो कुछ इस तरह की बात लिखते हैं, लिखते हैं कि तुम सबसे होशियार हो, तुम कभी गलती नहीं कर सकते हो, इस तरीके की चीजें वो उन्होंने लिखी है। और साथ ही बच्चों की, एक और जो श्रोता है जो लिखते हैं कि बच्चों की झूठी प्रशंसा करना उनके विकास के लिए नुकसानदायक हो सकता है और असफलता मिलने पर बच्चे जल्दी टूट जाते हैं, जोखिम लेने से डरने लगते हैं, वो नई चुनौतियां लेने से बचते हैं और उनको तारीफ की लत लग जाती है, वो केवल दूसरों को खुश करने के लिए काम करने लगते हैं और उनके अंदर सीखने की इच्छा खत्म होने लगती है, उन्हें लगता है कि वो पहले से ही सर्वश्रेष्ठ है, उन्हें और मेहनत की जरूरत ही नहीं है। और परिणाम की वजह अगर बच्चे की मेहनत की हम तारीफ करें तो ज्यादा बेहतर होगा कि तुम बहुत अच्छे हो की बजाय कहें कि तुमने ये चित्र बहुत ध्यान से बनाया है, तो और साथ ही गलती होने पर उसे प्यार से सुधारने की प्रेरणा भी दें।
0: बहुत अच्छी बात। और एक हमारे साथी ने लिखा है कि मैंने अपनी जान पहचान परिवार में देखा है कि जिसका बच्चा औसत दर्जे का छात्र है, बहुत मेहनती भी नहीं है, इसमें कोई शिकायत नहीं, हर बच्चा अपना अपना व्यक्तित्व होता है, उसके गार्जियन अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा बेटा जब 12 तक अच्छे नंबर नहीं लाया तो मेहनत भी नहीं करना चाहता, तो क्यों उसे आईएएस आईपीएस का ख्वाब दिखाया जाए। एक दिन कुछ ऐसा ही उसके साथ हुआ और वो डिप्रेशन में चला गया, पर भगवान का शुक्र है लड़का आज सही सलामत है और अपने साधारण सी नौकरी और जिंदगी में खुश है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि भाग्य चमत्कार कभी कभी ही होते हैं, सब चमत्कार एक साथ नहीं होते। ये भी सही बात कही है। और आरती, अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो लेते हैं एक ब्रेक।

0: ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं, कार्यक्रम है सखी सहेली।
1: सच में सोनाली, जो बच्चों की अगर हम जब तारीफ करते हैं ना, तो उनकी अगर हम सकारात्मक तारीफ करें ना, कि कहें कि ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करता है या बहुत मेहनत करता है, तो बजाय नंबर बताने की हम ये इस तरीके की अगर तारीफ करें तो बच्चे के अंदर भी सकारात्मक जो एक एनर्जी आती है वो आएगी, और वो भी सोचेगा कि नहीं अब मुझे और मेहनत करनी है ना, और मेहनत करके आगे बढ़ना है, ना कि मुझे सिर्फ अब झूठी तारीफ पे रहना है। इसलिए बहुत जरूरी है।
0: और अब क्या करें,
1: एक गीत सुनते हैं।
0: सुनते हैं गीत।

0: आरती सचमुच दिल की बात असली नकली चेहरा बता ही देता है। एक हमारे साथी लिखते हैं आरती कि बच्चों की तारीफ तो कीजिए परंतु उन्हें चने के झाड़ पर मत चढ़ाइए। अक्सर झूठी प्रशंसा करने से वे आत्म मूल्यांकन नहीं कर पाते और आभासी दुनिया में जीते हैं। ये बहुत सही बात लिखी है ना।
1: और एक और श्रोता जो लिखते हैं कि बच्चों की हर बात पर झूठी प्रशंसा करना सही नहीं होता क्योंकि इससे वो अपनी असली मेहनत और काबिलियत को समझ नहीं पाते। और मुझे लगता है कि जब हम बिना वजह हर काम की तारीफ करते हैं तो बच्चे धीरे धीरे सच और दिखावे का फर्क भूलने लगते हैं। सच्ची और सही प्रशंसा बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाती है लेकिन झूठी प्रशंसा उन्हें केवल दूसरों की तारीफ पर निर्भर बना सकती है। इससे वो असफलता को स्वीकार करना भी मुश्किल समझने लगते हैं। और मेरे अनुसार बच्चों को उनकी मेहनत ईमानदारी और कोशिशों के लिए सराहना मिलनी चाहिए ना कि सिर्फ खुश करने के लिए। इससे वो जीवन में सच्चाई आत्मविश्वास और मेहनत की असली कीमत को समझ पाते हैं।
0: एक साथ लिखते हैं कि बच्चों की झूठी या बढ़ा चढ़ाकर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास और मानसिक विकास को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे बच्चे वास्तविकता से दूर हो सकते हैं और आलोचना को स्वीकार करने में असमर्थ हो सकते हैं। सच्ची और सही तारीफ करने के लिए उनके प्रयासों पर ध्यान दें ना कि उनके परिणामों पर। इन्हें मिलजुल कर हमारे सभी साथियों ने इसी तरह की बात लिखी है। एक साथ ही लिखते हैं कि बच्चों की परवरिश करना आसान नहीं है। उनके लालन पालन में हमेशा सकारात्मक रवैये की जरूरत होती है जिससे कि वो प्रोत्साहित महसूस हो। बच्चों को जब माता पिता से प्रोत्साहन मिलता है तो उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और वे एक कामयाब जीवन जीते हैं। लेकिन जरूरी ये है कि वो प्रोत्साहन कैसा हो। जरूरी है कि प्रोत्साहन भी सही तरीके से किया जाए जिससे कि वो पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करे और साथ में अपने मनपसंद क्षेत्र में भी सफलता पाए।
1: बिल्कुल,
0: यानी मिलजुल कर हमारे सभी साथियों ने इसी तरह की बात लिखी कि भैया अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा ना करें, जैसे हैं बच्चे, और उन्हें उनके बारे में बताए कि भैया इतने ही नंबर मिले हैं उन्हें
1: जी,
0: उसमें कोई भी बुराई नहीं है। देखिए ना, कभी ऐसा नहीं है कि
1: नंबरों से उनकी काबिलियत को आप नहीं बता सकते।
0: कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को बहुत परीक्षा में कम नंबर मिलते हैं पर अपनी जिंदगी में खूब आगे बढ़ते हैं।
1: बिल्कुल, आप आइंस्टीन वगैरह इतने बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं उनको देखिए। तो आप एक छोटा सा कमेंट उसको ले लेते हैं। एक श्रोता जो लिखते हैं कि आप बच्चों की झूठी तारीफ करेंगे तो घर पर अगर कोई मेहमान आए तो उनके सामने बहुत लंबी लंबी फेंकेंगे कि हमारा बच्चा इतने नंबर लाता है, अरे ये तो क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लाया और इसके बहुत सारे दोस्त हैं, इससे अच्छे नंबर तो उसके स्कूल में कोई लाता ही नहीं है। लेकिन मैं कहूंगी ऐसा मत कीजिए, ऐसा क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनकी आदत भी होती है, उनकी आदत भी ये होती है कि सोचते हैं हमारे माता पिता तो हमारी तारीफ कर ही देंगे, हम कुछ भी करें हम तो बोल तो हमें तो बोलना नहीं है। तो इससे बच्चे की आदत बन जाती है, तो इससे जो बच्चा है ना वो बिल्कुल झूठ में जीने लगता है। तो इसलिए उनको कहने का मतलब है कि आप इसलिए बच्चों की जो झूठी तारीफ है वो मत करिए।
0: और है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना आरती कि वो बच्चा बहुत ज्यादा गेम में उलझा हुआ है तो भी है ना बहुत सारे घर के सदस्य जो होते हैं, मम्मियां होती हैं, पापा होते हैं, घर के लोग है ना छुपाते हैं कि नहीं नहीं नहीं वो तो पढ़ाई करता है, वो तो मोबाइल में लगा रहता है, तो टीचर ने प्रोजेक्ट दिया, आजकल तो मोबाइल में देख के प्रोजेक्ट करना पड़ता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जाने अनजाने में गेमिंग के दलदल में फंस जाते हैं। ये आज का युग जो है ना तकनीक और इंटरनेट का युग है, जैसे मोबाइल कंप्यूटर वीडियो गेम ने बच्चों से लेकर युवाओं तक सभी के जीवन में जगह बना ली है। मनोरंजन के साधनों में गेमिंग सबसे लोकप्रिय माध्यम है आरती, और थोड़ी देर का खेल मन को ताजगी देता है, पर लेकिन जब यही मनोरंजन आदत और फिर लत बन जाए तो ये गेमिंग का दलदल ये बन जाता है और इसमें व्यक्ति धीरे धीरे धीरे धीरे फंसता ही चला जाता है।
1: और इस गेमिंग की वजह से इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, जो बच्चे हैं उन्होंने कितने बड़े बड़े क्राइम कर दिए इन गेमिंग में के चक्कर में फंस के। तो अपने माता पिता या किसी से रिश्ते में भी जो भी उनके अपने हैं उनको भी वो नहीं समझते, सिर्फ गेम के अंदर इतने ज्यादा वो लग जाते हैं कि वो कितने बड़े बड़े क्राइम कर जाते हैं। और साथ ही बहुत बड़े अपने जो जो माँ बाप की जो कमाई होती है उसको भी गेम के चक्कर में, वो गेम को खरीदने के चक्कर में वो भी पूरा गवा देते हैं।
0: यानी कहने का मतलब है कि वो ये जो दलदल है इसमें फंसने से हमने अपने बच्चों को बचाना है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि इस बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि आजकल बच्चे दिन रात मोबाइल गेम्स में लगे रहते, पढ़ाई और बाकी जरूरी चीजों से उनका ध्यान हटता जा रहा है। मेरी बेटी ने अभी अभी 10वीं के एग्जाम दिए और उनकी छुट्टियां चल रही है। आजकल उसकी सबसे बड़ी डिमांड ये है कि मम्मा मुझे गेमिंग वाला फोन चाहिए। सच कहूँ तो मुझे समझ ही नहीं आता कि जो बच्चा अभी 11वीं में जाने वाला है उसे इस उम्र में गेमिंग के फोन की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। फिर मुझे अपना समय याद आता है कि हमारे समय में तो मोबाइल दूर की बात थी, घर में सिर्फ लैंडलाइन फोन होता था। मेरे पिताजी तो इतना डांटते थे कि किसी से एक मिनट से ज्यादा बात नहीं करनी है। लेकिन आज के बच्चों की दुनिया ही बदल गई, उन्हें बस गेम खेलना है। तकनीक अच्छी है लेकिन उसका सही और सीमित उपयोग बहुत जरूरी होता है, वरना धीरे धीरे बच्चे गेमिंग की ऐसी आदत में फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: बिल्कुल। और यशोदा जी लिखते हैं कि गेमिंग का दलदल ऐसा खतरनाक भंवर है जिसमें व्यक्ति चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकता। ये एक ऐसी स्थिति है जहां गेमिंग जो है वो मनोरंजन नहीं, एक मानसिक बीमारी बन जाती है जो मकड़ी की जाल से भी बदतर जाल है। इसमें फंसने वाला अपने करियर, सेहत और पैसों से पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। थोड़ा मुनाफा होने के बाद ज्यादा मुनाफे के लालच में अपनी जिंदगी बर्बाद करने में देर नहीं लगता।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि गेमिंग के दलदल एक टाइप का नशा है, एक ऐसी स्थिति है जहां कोई व्यक्ति वीडियो गेम, मोबाइल गेम या ऑनलाइन गेम खेलने का इस हद तक आदि हो जाता है कि वो अपनी असल जिंदगी, पढ़ाई, नौकरी और सेहत को पूरी तरह से नजरअंदाज करने लगता है। ये दलदल की तरह इसलिए है क्योंकि शुरुआत में सिर्फ मनोरंजन लगता है लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति इसमें ऐसा फंसता जाता है कि चाहकर भी बाहर निकल पाता। सोशल मीडिया, समाचार पत्र में आए दिन ये खबरें पढ़ती हूँ कि ऐसा नहीं, कम पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे डिग्रीधारी सारे लोग इस माया जाल में फंसते जा रहे हैं। और जब आप बुरी तरह से फंस जाते हैं तो उनका एक ही परिणाम होता है कि अपने को दुनिया से खत्म कर लेते हैं। उन्हें भुगतना पड़ता है कि परिवार को निराशा और पूरा परिवार जो है दुखी हो जाता है, ऐसा उन्होंने लिखा है।
1: बिल्कुल। और एक और जोश होता है हमारे, वो लिखते हैं कि जो गेमिंग का दलदल है उसमें जो यानी कि जो खेल कूद है और उसमें भी अरे ये गेम मतलब जो गेम है जो बाहर हम गेम खेलते हैं, जब आउटडोर गेम्स खेलते हैं घर के बाहर, तो वो गेम होते हैं उसको कहते हैं खेल। वो आपके शारीरिक और मानसिक विकास को भी बढ़ाते हैं और उसके लिए हमारे दिमाग के जो विकास होता है उसके लिए बहुत जरूरी होते हैं। बल्कि जबकि गेमिंग जो होता है उसमें स्क्रीन पे पूरे समय देखते रहने से आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है और मानसिक विकास पे भी बुरा असर पड़ता है।
0: और ये जो गेमिंग जो है जो होती है ना, इसमें ना हमेशा हम जीतते हैं, पानी में गिर जाए तो भी उन्हें कुछ पॉइंट्स अगर हमारे पास है तो उससे हम फिर से जिंदा हो जाते हैं। तो ये बच्चे और कुछ कुछ बच्चे तो वो वीडियो गेम देख के वैसे ही रास्ते पर भी उसी तरह से कार वगैरह चलाते हैं, तो उसके साथ उनकी जान के साथ साथ दूसरों की जान को भी बहुत खतरा होता है। एक हमारे साथी ने लिखा है दीपा, सॉरी
1: जी कोई नहीं,
0: समय सीमा निर्धारित करें, गेम खेलने के लिए अलार्म लगाएं या माता पिता दोस्तों की मदद से एक निश्चित समय तय करें, नई आदतें अपनाएं, ऊब से बचने के लिए कोई नया शौक पालें, व्यायाम करें या किताबें पढ़ें।
1: बिल्कुल। और एक कुछ होता है जो लिखते हैं कि आज के जो जो बच्चे जो गेम में लगे रहते हैं, इसमें कंप्यूटर गेम में या मोबाइल में लगे रहते हैं, वो वास्तविक दुनिया से उनका जुड़ाव कम होने लगता है और शुरुआत में ये गेम मनोरंजन और तनाव दूर करने का साधन लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही आदत गेमिंग का दलदल बन जाता है जिससे निकलना कठिन हो जाता है। जब व्यक्ति गेम खेलने की लत में इतना डूब जाता है कि वो अपनी पढ़ाई, काम, परिवार और सामाजिक जीवन को नजरअंदाज करने लगता है, तो ये आदत धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालने लगती है। और याद रखिए, गेम्स खेलना बुरा नहीं है लेकिन संतुलन बहुत जरूरी है। पढ़ाई, खेलकूद और परिवार के समय के साथ गेमिंग को सीमित रखिए ताकि हम इस दलदल में ना फंसे और अपने भविष्य को सुरक्षित रख सके।
0: और अब क्या करें,
1: एक गीत सुने,
0: सुनते हैं गीत।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अरे अच्छे हम अकेले
1: जब खत्म भी चलना सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: तो आरती एक साथी लिखते हैं कि आजकल गेम खेलने की लोगों में लत सी लगी है। लोग देर रात तक जागकर मोबाइल या लैपटॉप पर गेम खेलते हैं। कई बार तो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, ना तो खाने की चिंता होती है ना उन्हें कुछ काम की चिंता होती है। कुछ ऐसे गेम तो उन्हें ऐसे टास्क देते हैं जिसके कारण लोग अपने जीवन को भी समाप्त कर लेते हैं।
1: बहुत से ऐसे गेम आ गए खतरनाक
0: जी।
1: और साथ ही एक श्रोता जी लिखते हैं कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति ऑडियो या ऑनलाइन गेमिंग में इतना उलझ जाता है कि उसका अपनी दैनिक दिनचर्या, नींद और मानसिक स्वास्थ्य पर से नियंत्रण हट जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसे आधिकारिक तौर पर गेमिंग डिसऑर्डर के रूप में वर्गीकृत किया है।
0: और वैसे आरती ऐसी बात है कि ये जो मोबाइल गेम है या फिर मोबाइल कह लीजिए, लैपटॉप कह लीजिए या फिर जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं, इनमें अगर वाईफाई ना हो, इनमें अगर नेट ना हो तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है।
1: सही बात है। फिर हम एकदम फोन लेके बैठे रहते हैं कि क्या करें इस डिब्बे काम।
0: नहीं नहीं नहीं, पर अगर हमें बहुत इन ऑफिशियल काम करना है, हमें अगर कुछ काम करना है तो बात समझ सकते हैं। पर अगर हमें सिर्फ टाइम पास नहीं हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है कि हम पढ़ना भूल रहे हैं, खेलना भूल रहे हैं, परिवार के साथ बैठना भूल रहे हैं, तो हमें इन सब बातों का भी ध्यान रखना है कि कोई भी मनोरंजन का साधन होना वो सिर्फ सीमित मात्रा
1: तक, वो मनोरंजन तक ही रहना चाहिए, बाकी रिश्तों के बीच में या हमारे स्वास्थ्य के बीच में उसको नहीं आना चाहिए
0: जी। और अब वाईफाई की रफ्तार अगर धीमी हो जाए तो क्या करना चाहिए?
1: की रफ्तार ऐसा लगता है कि हमारे जीवन की रफ्तार जब धीमी हो गई,
0: धीमी हो गई।
1: बहुत कभी कभी बहुत जरूरी काम होते हैं क्योंकि हमें उसको करना होता है, लिखना होता है, कुछ हमें पढ़ना है, बहुत जरूरी चीजें देखनी है, तो आजकल तो न्यूज भी आप मोबाइल पे देख सकते हैं। कहीं बाहर है तो हमें किसी कुछ जरूरी देखना है तो वो अगर नेट नहीं सही से चल रहा है या हम अपने जैसे कि हम लोग जब देखते हैं सब पूरी फैमिली जो होती है, अगर पूरी फैमिली ले रखी है उसने वाईफाई से चला रहे हैं तो उसकी रफ्तार अच्छी होनी जरूरी है
0: जी।
1: तो कभी कभी होता है ना कुछ चीजों को हम सावधानियां करें तो उससे हम उसकी रफ्तार को बढ़ा भी सकते हैं। तो जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि राउटर को अगर हम सिर्फ बंद करके 2 मिनट बाद उसको स्टार्ट करें तो उससे भी स्पीड बेहतर हो जाती है।
0: तो यानी जो मोबाइल, टीवी या लैपटॉप उपयोग में नहीं है उन्हें नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर दीजिए। कमजोर पासवर्ड होने पर भी लोग जो है नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं जिससे स्पीड,
1: कोई आपके घर के सामने से जा रहा है, निकल रहा है थोड़ी दूर तक है तो वो आपके नेट का आसानी से उपयोग कर सकते हैं, तो वहीं खड़े होकर अपना उपयोग करता रहेगा, लेकिन आपके वाईफाई की जो स्पीड है वो धीमी हो जाएगी।
0: साथ ही पुराने राउटर नई तकनीक के अनुसार सही गति नहीं दे पाते, जरूरत पड़ने पर नया राउटर ले। ऑनलाइन पढ़ाई के समय वीडियो डाउनलोड या भारी गेमिंग से बचे ताकि इंटरनेट की गति स्थिर बनी रहे। फोन में चल रहे उन एप्स को बंद करें जो बैकग्राउंड में डेटा जैसे ऑटो अपडेट या सिंक का उपयोग कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, ये जो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं ना जितने पेजेस, उनको आप बंद करेंगे ना तो फिर उसकी आपके फोन की स्पीड पे बहुत असर पड़ेगा।
0: यानी हमने अभी खोला फेसबुक, फिर थोड़ी देर में खोला व्हाट्सएप, फिर उसके बाद

0: में हम चले गए यूट्यूब पे, तो अगर सारे ऐप्स खुले हुए हैं,
1: हाँ,
0: अगर हम इस्तेमाल तो सिर्फ एक ही का करेंगे एक ही टाइम, तो सारे अगर ऐप्स खुले रहेंगे तो भी हमारे इंटरनेट की स्पीड कम हो सकती है,
1: तो आप उसका भी ध्यान रखें। और साथ ही थोड़ी सावधानी और है, जैसे कि अपना जैसे कि अगर जो जो आपका राउटर है वो घर के बीचों बीच में और ऊंची जगह पर होना चाहिए, और साथ ही जो मोटी दीवार और माइक्रोवेव जैसे बहुत ज्यादा चीजें ऐसी मत रखिए, जैसे टीवी है, टीवी के पास एकदम से आपने रख दिया उसे पीछे, तो उसका जो सिग्नल है वो सिग्नल तोड़ता है, तो उस वजह से भी आपका स्पीड धीमी हो जाती है, तो उसे थोड़ा सा अलग करके रखें और थोड़ा ऊंचा ही रखें उसे, उसी जगह पर ही लगाएं, जैसे कि और बाकी उपकरण उसके आसपास नहीं होंगे तो बहुत बढ़िया स्पीड मिलेगी आपको।
0: और राउटर का जो एंटीना होता है उसे भी अच्छे से सेट करें, यदि दो एंटीना है तो एक को वर्टिकल इन्हें खड़ा रखें और दूसरा एंटीना को हॉरिजॉन्टल इन्हें आड़ा रखें, ये सिग्नल का दायरा बढ़ा देता है।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही एक है ना, फ्रीक्वेंसी के बैंड बदलते रहना चाहिए हमें, कि जो तेज फ्रीक्वेंसी का राउटर हमें लेना चाहिए।
1: बिल्कुल, उससे क्योंकि अगर ज्यादा फोन चलाने हैं उसको, उससे आपको कंप्यूटर वगैरह ज्यादा चीजें चलानी है तो आप उसी हिसाब से आप लीजिए अपना राउटर, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपकी चल सके, वाईफाई और उसकी स्पीड भी अच्छी रहे। और
0: अब एक गाना सुन ले।
1: बिल्कुल, एक गीत सुन लेते हैं।

0: तो अब हम बात करते हैं वही जो हम बात कर रहे थे, यानी कि राउटर की। तो जैसे कि बताया कि हमने कि आप राउटर को बंद करें और फिर दोबारा चालू करें, तो इससे ये इसकी जो मेमोरी होती है उसको साफ करता है, और साथ ही राउटर की जगह को भी बदलें। या जैसे कि हमने बताया था कि आप उसको EMI श्रोता लिख के भेज रहे हैं, उसको घर के बीच में रखें और इसे ऊंचाई पर स्थापित करें, और कई सारी बाधाओं से, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उसको दूर रखें, और अनचाहे डिवाइस जो भी रखें उसके आसपास उनको हटा दीजिए, और वाईफाई का पासवर्ड बदलें और ताकि और कोई उसका इस्तेमाल ना कर सके। साथ ही बैकग्राउंड लोड जो डाउनलोडिंग बंद करें। ये वही चीजें जो है जो हमने अभी बताई वही हमारे श्रोता ने भी लिख कर भेजा है। तो एक और हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि धीमी वाईफाई की स्पीड को बढ़ाने के लिए सबसे आसान और असरदार तरीका है अपने राउटर को रीस्टार्ट करना, और इसके अलावा वही उनका कि ऊंची जगह पर लगाने से भी इसकी स्पीड बेहतर होती है।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं आरती कि ज्यादा गेम खेलने से मेरा भी स्कूल का रिजल्ट बिगड़ा था, मुझे भी कंप्यूटर गेम की लत लगी थी लेकिन अब छूट गई है। क्या बात है तो बधाई हो
0: बिल्कुल बधाई हो आपको अपने, क्योंकि गेम की लत लग जाती है, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है।
1: जी
0: आपने उस चीज को छोड़ा, बहुत अच्छी चीज करी है आपने। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि देर रात तक गेम खेलने से नींद का चक्र बिगड़ जाता है, जिससे डिप्रेशन और एंजाइटी का खतरा बढ़ जाता है, और साथ ही एकाग्रता में कमी भी आती है। लंबे समय तक स्क्रीन पर वर्चुअल गेम खेलने से वास्तविक दुनिया से या पढ़ाई पर या काम पर ध्यान लगाने में परेशानी हो सकती है।
1: ये तो है ना, टेक्नोलॉजी के फायदे भी है और नुकसान भी है।
0: बिल्कुल,
1: तो हमें उसके फायदे लेना चाहिए और नुकसान को हमें बाय बाय कहना चाहिए ना।
0: बिल्कुल, उसको ध्यान रखिए, इतना मत किसी चीज में लग जाइए कि

0: वो आपको नुकसान पहुंचाने लगे,
1: जी। और
0: अति हर चीज के लिए
1: बिल्कुल अति सर्वर्थ वर्जे, तो भाई अति से दूर रहे कि बस वो इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, हम इतने इसके माध्यम से हम लोगों से जुड़ रहे हैं, हमें कितना ज्यादा फायदा हो रहा है इन टेक्नोलॉजी की बदौलत, तो उसका हमें फायदा उठाना चाहिए, उसके जो नुकसान है उससे हमें बचना चाहिए। और अब क्या करना चाहिए हमें?
0: एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।
1: तो सुनते हैं गीत।

0: तो रहती है आज की मुलाकात,
1: आज की मुलाकात बस
0: बस इतनी। और अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है, तो आप सभी को सोनाली पाठक
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: नंदन वंदन अभिनंदन। संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस विशिष्ट अंक में मैं गीतिका ओनियाल आप सभी का स्वागत करती हूं। आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूर्ण करने की इस यात्रा में फौजी भाइयों के लिए सदैव समर्पित रही है, इसलिए नित्य प्रति विभिन्न प्रसारणों के माध्यम से सिपाहियों, चाहे फिर बॉर्डर्स पर तैनात हों या देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए कर्तव्यनिष्ठ, आकाशवाणी ने हमेशा ही सिपाहियों और उनके परिवारों के बीच एक भावनात्मक सेतु का कार्य किया है। और आज इसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं कमांडेंट अभिराम पंकज, सेकेंड इन कमांड सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। कैप्टन अभिराम पंकज सेकेंड इन कमांड 139 बटालियन CRPF डिप्लॉयड है मंडोली जेल कॉम्प्लेक्स में। सर्वप्रथम हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान कमांडेंट अभिराम पंकज का। कमांडेंट अभिराम पंकज, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद गीतिका जी। सबसे पहले मैं आकाशवाणी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं और आपको 90 वर्ष पूर्ण करने की हार्दिक बधाई देता हूं। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मैं सीआरपीएफ की तरफ से जय हिंद बोलता हूं। और ये मैं एक प्योर नॉस्टैल्जिया है मेरे लिए, बचपन से आकाशवाणी को सुनते हुए आज आकाशवाणी के एफएम रेनबो के स्टूडियो में बैठकर बातचीत करने का अवसर मिला है। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद अदा करता हूं।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने समय निकाला, आप स्टूडियो पहुंचे हैं और आज ना जाने कितनी ही बातें ऐसी होंगी जो आकाशवाणी से जुड़ी होंगी और जो आपके सफर से जुड़ी होंगी। और जैसा कि मैंने कहा कि फौजी भाइयों के लिए तो नित्य प्रति हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं अपने प्रसारणों के माध्यम से, कहीं ना कहीं हम कनेक्ट भी करते हैं, संदेश भी हम तक आते हैं, लेकिन जब आप जैसे वीर हमारे स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो यकीन मानिए कि फिजाओं का रंग बदल जाता है, क्योंकि ध्वनि तरंगों के माध्यम से जब हम जन जन तक पहुंचते हैं, भारतीय जनता तक पहुंचते हैं, चाहे फिर वो रेडियो सेट्स के माध्यम से हो या मोबाइल ऐप के माध्यम से हो, तो हर सुनने वाला यही सोचता है कि काश मैं भी आप जैसे वीरों के पद चिन्हों पर चल सकूं। सबसे पहले आपके से ये जानना चाहती हूँ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यहाँ आप कार्यरत हैं, तैनात हैं, अलग अलग जगहों पर आपकी आज तक पोस्टिंग हुई है, अगर हम सीआरपीएफ की बात करें तो आप किन शब्दों में सीआरपीएफ को परिभाषित करना चाहते हैं?
1: सीआरपीएफ 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में नीमच में स्थापित हुई और विगत कई दशकों में आज सीआरपीएफ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स सेंट्रल

0: पुलिस फोर्स के रूप में रहे, और इंटरनल सिक्योरिटी की रीढ़ है सीआरपीएफ। जब भी सारे जितने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके रूल्स डिफाइंड हैं, जैसे बीएसएफ इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर है, आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पर है, सीआईएसएफ वाइटल इंस्टॉलेशंस में है और एसएसबी इंडो नेपाल बॉर्डर में है, वैसे ही सीआरपीएफ इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है। तो सीआरपीएफ ने आप देख कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सौराष्ट्र से लेकर सिलचर तक सीआरपीएफ ने के फुटप्रिंट्स आपको मिलेंगे। और आज सीआरपीएफ ने जो काम छत्तीसगढ़ में किया नक्सलवाद से पूरे भारत को मुक्त कर, जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर का एक उनका एक प्रण था, तो वो एक अपने आप में एक एपिक ऑफ सागा एंड सेक्रीफाइस, एपिक सागा ऑफ सेक्रीफाइस है वो, जिस तरीके का सीआरपीएफ ने काम किया है। और ऐसा वही नहीं जम्मू एंड कश्मीर में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, तो सीआरपीएफ को परिभाषित करने की बात मैं कहता हूं कि सीआरपीएफ सबसे वर्सेटाइल सिक्योरिटी फोर्स है, सबसे फ्लेक्सिबल सिक्योरिटी फोर्स है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैं इस बल का पार्ट हूं, मैं इस बल का हिस्सा हूं और मुझे यहां कुछ करने का मौका मिला है।
1: जी होंगी आपसे और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि जितने हम आतुर हैं आपसे बात करने के लिए उतने हमारे श्रोता भी बेताब हैं, क्योंकि हम हमेशा यही मानते हैं आकाशवाणी के माध्यम से कि हम किसी के लिए रास्ता बने, किसी को रास्ता दिखाएं। और आप जैसे योद्धा जब यहाँ स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो निश्चित रूप से आप किसी का कोर्स ऑफ एक्शन, जिसे कहा जाता है, बदल देते हैं। तो ये मंजर जो है एकदम नया है हर बार की तरह। और आप श्रोतागण भी अपने संदेश भेज सकते हैं, हमारा नंबर है 9868107070, जादुई नंबर के माध्यम से तुरंत आप तक पहुंचते हैं। तो इस कार्यक्रम संबंधी आपके मन में जो भी विचार है भेजिए जरूर।

0: संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में आप सभी का पुनः स्वागत है और हम यही कहेंगे कि कोई जानता है कि वो दुनिया में क्या चाहता है। हर व्यक्ति एक उद्देश्य के साथ तो दुनिया में आता है। कुछ उद्देश्य हमें पहले से पता होते हैं, लेकिन कहते हैं कि कभी कभी हमें ना रास्ते ढूंढ रहे होते हैं, हम खुद भी नहीं जानते कि वो रास्ते चाहते हैं कि हम उन रास्तों पर चले। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज। कमांडेंट अभिराम पंकज, आप यू आर ऑनर्स इन केमिस्ट्री एमबीए इन फाइनेंस। कभी सोचा था कि आप सीआरपीएफ ज्वाइन करेंगे?
1: नॉट एग्जैक्टली सीआरपीएफ, पढ़ाई लिखाई ऐसा था, मैं बिहार में पैदा पला बड़ा बड़ा हुआ, तो पढ़ाई लिखाई को हमेशा मैंने एक जर्नी के तौर पे देखा कि आप पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं करते कि आप वो माध्यम हो कहीं किसी जगह पहुंचने का। ये सीआरपीएफ ऑर्गेनिकली हुआ, मैं पढ़ता रहा और एक रुझान था, वर्दी की तरफ एक अट्रैक्शन था। बैक ऑफ द माइंड एज अ चाइल्ड आपको कई बार लगता है यूनिफॉर्म सर्विसेज आपको अट्रैक्ट करती हैं, तो शायद वो बैक ऑफ द माइंड में था, बट पढ़ाई अपनी तरफ हो रही थी और ये साइड बाय साइड एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हुआ और ये हो गया। सो इसके लिए कुछ बहुत अलग कोशिश या फिर मेरे एम में था ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, एक यूनिफॉर्म के लिए रुझान था, बट एक बार ज्वाइन करने के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक।
0: क्या बात है। आपको किस माध्यम से पता लगा कि आप सीआरपीएफ ज्वाइन कर सकते हैं? दोस्तों ने बताया, किसी नाते रिश्तेदार ने बताया, कहीं न्यूज़पेपर में देखा नोटिफिकेशन? क्योंकि जब वो मोड़ आता है ना, तो आपके जीवन में जो टर्निंग पॉइंट आता है, सीआरपीएफ भी आपके जीवन में ज्वाइन करने के लिए टर्निंग पॉइंट है, तो क्या माध्यम था जिससे आपको पता लगा कि आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जीवन में?
1: मैं बहुत भाग्यशाली था, मेरे फादर बड़े अवेयर फादर थे, तो वो खुद एक सरकारी कर्मचारी थे, बिहार सरकार की सेवा में लेबर डिपार्टमेंट में कार्यरत थे, तो बहुत ही अवेयर फादर थे एंड उनको अपने समय से आगे उनकी सोच थी। तो उस जमाने में, अब तो इंफॉर्मेशन की क्रांति है, चारों तरफ आपको मोबाइल पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उस जमाने में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और हिंदी में रोजगार समाचार आता था, तो वो सब्सक्राइब किया हुआ था और उस पर वो देखते रहते थे कि हाँ बच्चा है वो कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगहों पे जा सकता है, और कहीं ना कहीं तो थोड़ी उनकी हेल्प, थोड़ी अपनी, और तुम एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से मालूम पड़ा और फादर ने ही बताया कि ऐसा है और आप इसमें अपना करियर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं।
0: जी, तो फिर आपने एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि आपने एक बकायदा एक फॉर्म भरा होगा जिसके अंतर्गत आपको फिर एग्जामिनेशन के लिए बुलाया होगा, वो एग्जामिनेशन प्रोसेस कैसी थी, क्या थी, ये बताएं।
1: 2004 तक ये एग्जामिनेशन सीपीओस कंडक्ट करती थी, जो 2005 के बाद से यूपीएससी ने लिया, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है हर एक साल, और सीएपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट्स के लिए एग्जाम निकालती हैं, तो उसमें जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये तीन चार पेपर्स होते हैं एंड फॉलोड बाई फिजिकल, जहाँ पे यू आर सपोज टू, आपका जो रनिंग है और बाकी जो आपकी फिजिकल चीजें उनकी टेस्टिंग करते हैं वो। तो एक अच्छा सा एग्जामिनेशन होता है, अच्छा कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है, लेकिन आपका आपकी जो पढ़ाई लिखाई के अलावा, आपकी जानकारी के अलावा, आपका फिजिकल फिटनेस भी दुरुस्त होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। और यूपीएससी की साइट से आपको जानकारी मिलती रहती है कि कब एग्जामिनेशन का पूरा कैलेंडर है, साल में कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जामिनेशन होगा, तो ये सारी जानकारी हमारे जितने युवा हैं उस पर नजर बना के रख सकते हैं, आज की डेट में बहुत आसान है।
0: जी, अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत सीआईएसएफ, बीएसएफ और सीआरपीएफ?
1: नहीं, इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जैसा मैंने पहले भी बताया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक रोल डिफाइंड है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, एसएसबी इंडो नेपाल बॉर्डर, आईटीबीपी इंडो चाइना बॉर्डर, सीआरपीएफ ओनली इंटरनल सिक्योरिटी। सो ये सारे कंपोनेंट्स हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ऑल्सो, बट वो सारे केवल वीआईपी सिक्योरिटी और अपना जो एंटी टेररिस्ट रोल में, और असम राइफल्स ऑल्सो, दैट इज पार्ट ऑफ दिस।
0: जी, तो क्या सबके लिए एक ही प्रोसेस होता है एग्जामिनेशन का, या फिर आपको अलग अलग रूप से चयनित करना पड़ता है?
1: इसमें एनएसजी और असम राइफल्स का प्रोसेस अलग है, वो वहां पे डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होती है, बाकी ये जितने सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ और इन सब की सिलेक्शन उस यूपीएससी के एक नोटिफिकेशन और एक एग्जामिनेशन के माध्यम से होती है, और इनमें जो सीट्स होती हैं वो डिसाइड करता है जो उनका जो कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन है वहां कितनी वैकेंसीज है उसके बेसिस पे वो सीट निकालते हैं। तो एंट्री लेवल है जो क्लास वन गजेटेड ऑफिसर की रैंक में जाते हैं आप असिस्टेंट कमांडेंट, वो आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर करके आप जाते हैं।
0: जी, तो एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद सबसे पहली खबर, खुशी की खबर आपने किसको सुनाई?
1: ये मैं एमबीए करने के बाद में मैं एक बैंक में काम करने लगा था एंड तो ये बहुत ही एक प्लेजेंट सरप्राइज था मेरे लिए जब ये मुझे खबर मालूम पड़ी। तो ऑफ कोर्स दोस्तों से बातचीत हुई और उस जमाने फोन नया नया आया था तो तभी इनकमिंग आउटगोइंग के पैसे लगते थे, तो उस पर बातचीत हुई, दूरभाष फोन के माध्यम से लोगों ने बताया तो बधाइयां आनी शुरू हो गई। और बिहार में आप सरकारी सेवा में जाना आज भी और गौरव की बात मानी जाती है, और तब उस जमाने आज से 22 साल पहले ये बहुत बड़ी बात, तो काफी बधाई संदेश आने लगे। और फिर यहां मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर किया जिनके साथ मैं काम कर रहा था, मेरे बैंक में सारे बहुत खुश हुए क्योंकि मैं तो कॉरपोरेट में काम कर रहा था और ये एक सरकारी सेवा में मेरा चयन हुआ था, तो सारे बहुत खुश हुए। तो ऑफ कोर्स अपने दोस्तों के साथ शेयर किया यहाँ पर और उनके साथ सेलिब्रेट किया।
0: क्या बात है, घर पे किस प्रकार की प्रतिक्रिया, क्योंकि आपने खुद कहा कि पिताजी क्योंकि सरकारी नौकरी में रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको अवगत कराया कि सरकारी का एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। जो प्रथम बार आप अपने माता पिता को इस बात की अनुभूति कराते हैं कि आप अब एक मुकाम पर पहुंचने वाले हैं, बहुत सुखद पल होता है किसी भी माता पिता के लिए। जब आप ये खबर लेके गए वो क्षण जो था उस वक्त उनके चेहरे पर क्या भाव थे?
1: निसंदेह है बहुत खुशी के बहुत है। मेरे पिता, उन्होंने हमेशा मुझे लिबरेट किया कि जो आपके मन में है वो करो, आपकी मंजिल आप खुद चुनो। और जब उन्होंने देखा कि मेरा रुझान इस तरफ है, मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बावजूद मैं इधर ज्वाइन करना चाहता हूं, तो बहुत खुश हुए कि हाँ देश की सीमा में जाए और अपना अच्छा करे। तो निसंदेह माता पिता दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, दोनों बहुत खुश थे और ऑफ कोर्स मैं भी काफी खुश था।
0: जी, निश्चित रूप से जब आपको रास्तों ने चुन लिया हो कि आपको कहाँ पहुंचना है, ऐसे सुखद बात और कोई छू नहीं सकती, क्योंकि कहते हैं कि वैसे तो नियति जिसको हम सभी मानते हैं, कुछ लोग जानते हैं कि उन्हें किस रास्ते पर चलना है, लेकिन वो लोग जिनको रास्ते चुनते हैं वो तो अपने आप को ज्यादा तैयार कर लेते हैं कि अच्छा ये रास्ता चाहे पथरीला हो या सहल हो, मुझे चलना है और मंजिल पर पहुंचना है। अगर अतीत के और पीछे जाएं, यानी कि आपके एमबीए या फिर आप मान लीजिए आपके जो आपने केमिस्ट्री ऑनर्स किया उससे भी पीछे की अगर बात करें, आपके स्कूल के दिन किस प्रकार के आप बालक हुआ करते थे? शैतान थे या बहुत डिसिप्लिन थे? और वो जीवन की, यानी कि आपके बचपन की कौन सी ऐसी बात है जो आपको लगती है कि अगर वो ना हुई होती तो शायद रास्ता सीआरपीएफ तक पहुंचने का इतना सहल ना होता?
1: बहुत ही उम्दा सवाल किया है आपने। ये आप जब ही बचपन में तो ऐसा आपने कुछ सोचा नहीं था, लेकिन माहौल ऐसा था, आप जब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो मैं बचपन से ही हैप्पी गो लकी था, मैं बहुत सीरियस स्टूडेंट नहीं था बट लेकिन स्मार्ट पढ़ाई करके और मैं अपनी क्लास में एक अच्छा रिजल्ट लेकर आता था, खेल कूद में मैं बहुत आगे रहता था। तो जितने टीम स्पोर्ट्स हो, आप किसी भी परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में रहें या फिर शहर में रहें, तो मैं जहां भी मौका मिलता था मुझे, कबड्डी से लेकर फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, क्रिकेट उन दिनों आज भी काफी पॉपुलर है और उन दिनों भी बहुत लोकप्रिय स्पोर्ट होता था, तो मैं खेलता था। तो मुझे लगता है कि जो ये स्पोर्ट्स का जो एक नींव रखी जाती है बचपन में, वो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के सर्वांगीण विकास में। वो आपको आपकी टीम स्पिरिट और वो जो भावना आपके अंदर जो स्पोर्ट्स पैदा करती है, उसके बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं। आप उसके बाद वो आप किसी भी करियर में जाएं, अगर स्पोर्ट्स आपके साथ में है तो आपका व्यक्तित्व एक

0: डिफरेंट एक अलग तरीके का निखर कर आता है। तो ऑफकोर्स मुझे लगता है कि जो आउटडोर के प्रति जो मेरा समर्पण था या फिर जो मेरा लगाव था वो मुझे बहुत हैंडी रहा सीआरपीएफ में भी। यहाँ ज्वाइन करने के टाइम में भी मुझे बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ी, मुझे
1: हाँ
0: बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ी। उसके बाद में भी ये चैलेंजिंग था ट्रेनिंग में, तो वहां पे भी मुझे और फिर जो टीम के साथ काम करने में मुझे कभी दिक्कत नहीं रही, आज जवानों के साथ हो मेरे साथी अधिकारियों के साथ हो। तो एक जो इंटरपर्सनल स्किल और जो टीम स्पिरिट की जो भावना आप गेम्स आप में जो इनकलकेट करती है वो अद्वितीय है, वो अनुपम है।
1: जी। तो सीआरपीएफ तक का रास्ता सहल किया और उसके बाद सीआरपीएफ में रहते हुए यानी कि अपने सर्विस काल में भी कहीं ना कहीं चाहे वो डिसीजन लेना हो, लीडरशिप क्वालिटी हो, अपने साथियों को मोटिवेट करना हो, तो उसमें कहीं ना कहीं खेलों का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसीलिए हम बच्चों को कहते हैं कि अपने जीवन काल से यानी कि अपने बाल काल से ही जो है आप खुद पर तैयारी करना शुरू कर दीजिए।
0: जी।
1: तो होंगी आपके साथ और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आतुर हूँ आपसे ज्यादा से ज्यादा बातें सुनने के लिए। और तमाम बच्चे यूथ या देश के वो सैनिक जिस वक्त आपको सुन रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक सिपाही एक वीर यहां पर आकर बैठता है इस कुर्सी पर, तो कहीं ना कहीं वो गाथा सुना रहा होता है, कहानी सुना रहा होता है सभी अपने फेलोज की, क्योंकि कहीं ना कहीं यात्रा भले ही उसके कहते हैं ना कि ऊंची नीची पगडंडियों से आपने यात्रा पूरी करी हो, लेकिन यात्रा कहीं ना कहीं उस मंजिल तक पहुंचने की सबकी एक जैसी, संघर्ष एक जैसे, मेहनत एक जैसी, बस फर्क इतना कि आपकी बुद्धि ने आपको उस वक्त कौन सा निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाया, आप कितने एबल बॉडीड हैं, आप कितने सक्षम हैं डिसीजंस लेने में या अपने कार्य को पूर्ण करने में, शायद ये अलग होता होगा हर व्यक्ति का, हर सोल्जर का, हर सिपाही का, हर सैनिक का। लेकिन हम ये कहेंगे कि आप ना जाने आज यहाँ एफएम रेनबो के स्टूडियो में बैठे कितनों की गाथाएं, कितनों की कहानियां उसका स्मरण कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपके मन में अगर कोई भी बात है शेयर कीजिए हमारे साथ। हम यही कहेंगे कि देश के प्रति जो सच्ची भावना, सच्ची लगन है, किसी भी कार्य क्षेत्र में क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये वीर हमें हमारे प्रगति मार्ग, विजय मार्ग पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर हमें। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियार और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज।

0: वेलकम बैक, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका अनियाल। और प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स। और संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में हम बताना चाहेंगे कि हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जी मौजूद हैं, कमांडेंट अभिराम पंकज, जिनकी यात्रा को हम उनकी जुबानी सुन रहे हैं। और कहते हैं कि किसी की यात्रा कभी कभी ना आपकी यात्रा बन जाती है, क्योंकि आपको जीने का सबब सिखाती है, आपकी राह को और भी आसान कर देती है। और जब राह आसान हो जाती है तो मंजिल तक पहुंचना और भी ज्यादा आसान। कमांडेंट अभिराम, CRPF, जब आप CRPF का नाम लेते होंगे तो कहीं ना कहीं गर्व से आपका जो सीना है वैसे ही फूल जाता होगा, चौड़ा हो जाता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप नेतृत्व करते हैं अपनी फोर्सेस को। तो अगर आप से मैं CRPF के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहूं, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स यूथ इस वक्त हमें सुन रहे होंगे और बहुत से अनभिज्ञ भी होंगे, और अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं CRPF, तो सबसे पहले हम CRPF को थोड़ा सा और जान लें। तो हम चाहेंगे कि हमें आप और जानकारी दें CRPF के बारे में।
1: CRPF हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है सारी फोर्सेस में। और इस CRPF की जो जर्नी रही है पीछे 1939 से लेकर अभी तक, तो ये जर्नी ऑफ सेक्रीफाइस एंड वैलर रही है। चाहे वो 21 अक्टूबर 1959 में जब ही चाइनीज ट्रूप्स के साथ में हॉट स्प्रिंग्स में CRPF ने लड़ाई लड़ी थी, और उसमें हमारे CRPF के 10 जवानों ने अपनी शहादत दी थी। आज भी 21 अक्टूबर को पुलिस कॉमेमोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है हर एक साल। फिर 1965 की पाकिस्तान के साथ लड़ाई में सरदार पोस्ट पर CRPF की एक छोटी सी टुकड़ी ने पाकिस्तान की पूरे ब्रिगेड के अटैक को रिपेल किया था, और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज और वैलर का परिचय दिया था। तो 9 अप्रैल को सरदार पोस्ट की याद में वैलर डे मनाया जाता है CRPF में। CRPF ने इन तीनों थिएटर्स, जम्मू कश्मीर, LWE थिएटर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत एग्जेम्पलरी काम किया पीछे कई दशकों में। तो आज हिंदुस्तान हमारा नक्सल मुक्त हुआ अभी, तो वो CRPF का इसमें जो योगदान रहा है वो अभूतपूर्व योगदान रहा है। इस मैं एक बात कहना चाहूँगा, CRPF अपने आप में एक मिनी इंडिया है। हम इंडिया को सेलिब्रेट करते हैं, इंडिया की डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो CRPF एक मिनी इंडिया। आप कोई भी एक छोटे से छोटा क्रॉस सेक्शन ले लें, किसी भी बटालियन को या किसी भी बटालियन के अंदर जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनीज हैं उनको आप ले लें, तो CRPF उस छोटी सी कंपनी में आपको पूरे देश, पूरी प्रांत के रीजन रिलीजन के लोग मिल जाएंगे। और सब एक बार जब यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वो CRPF के सोल्जर्स होते हैं, वो जवान होते हैं। CRPF एक बहुत ही गैलेंट फोर्स रही है, और इसका रिकॉग्निशन टाइम टू टाइम होता रहा है। CRPF को मुझे बताते हुए बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है। CRPF को 1 अशोक चक्रा, 10 कीर्ति चक्रा, 39 शौर्य चक्रा, 200 से ज्यादा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री और तकरीबन 2027 पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री मिले हुए हैं आज तक। तो ये इनके जो बलिदान का, CRPF के बलिदान और योगदान का जो रिकग्निशन रहा है वो गैलेंट्री मेडल्स, गैलेंट्री अवार्ड्स के रूप में है। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि CRPF को एक काफी वर्सेटाइल और एक सॉलिड इंटरनल सिक्योरिटी का जो इंटरनल सिक्योरिटी में एक सॉलिड भूमिका निभाने वाली फोर्स के रूप में रखती है।
0: जी निश्चित ही, आपकी बातें सुनने के बाद हमारे जितने भी श्रोता हैं जो चाहते हैं, जो अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे जाएं CRPF ज्वाइन करें, उनके लिए आपने रास्ता बहुत ज्यादा आसान कर दिया। और हम हमेशा कहते हैं कोई तो ऐसा हो

0: जो मेरा मार्ग प्रशस्त करे, जो मुझे सच्ची राह दिखाए। तो आज आपने वो सच्ची राह उन तमाम बच्चों को दिखाई है जो ज्वाइन करना चाहते हैं सीआरपीएफ। सो रास्ता आपके लिए खुला हुआ है, अब आपको निर्धारित करना है कि आपको कितनी तैयारी करनी है। जैसे कमांडेंट अभिराम ने कहा कि वो बचपन से ही खेला करते थे और ये खेलना आज तक जारी है। और आपको लगता है कि जो खेल रहे हैं आप आज तक, कौन कौन से गेम्स वैसे आज तक जब खेला करते थे और आज भी खेल रहे हो, कौन कौन से गेम्स हैं?
1: देखिए सीआरपीएफ में हमारा चूंकि मूवमेंट काफी फ्रीक्वेंट और अनसर्टेन रहता है, तो मूवमेंट है और कहीं छोटी सी छोटी जगह पे आप सेटअप कर लें, तो सबसे अच्छा गेम जो सेटअप करना है वॉलीबॉल होता है। तो आपने नेट लगाया, अपना एक कोर्ट तैयार किया और आप वॉलीबॉल खेलने शुरू हो जाते हैं। तो शुरू से लेकर अभी तक अभी भी जवानों के साथ में, तो जब भी मौका लगता है तो वॉलीबॉल आप खेलते हैं। उसके अलावा जब मौका लगा फुटबॉल खेला आपने, क्रिकेट खेला, टग ऑफ वॉर हमारे यहाँ एक काफी पॉपुलर गेम है, जो आपस में टग ऑफ वॉर रस्सा कसी का जो गेम होता है वो, उससे काफी टीम स्पिरिट बनती है और लोगों में बड़ा उत्साह होता है, बड़े उत्साह के साथ खेला जाता है। तो ये सारे गेम है और ये सारे गेम में आज भी, मतलब ये अनवरत मेरा चल रहा है। तो चाहे मैं छात्र के रूप में जब मैं था तब, या फिर आज मैं एक अधिकारी के रूप में हूं, तो मैं पूरी भावना के साथ इन सारे स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा रहता हूं और मैं खेलता हूं जवानों के साथ में।
0: बिल्कुल, जब सहकर्मियों के साथ खेलते होंगे तो आत्मीयता तो वैसे ही वहां बन जाती होगी, क्योंकि वहां अलग अलग स्टेचों के हमारे जो सिपाही हैं या फिर ऑफिसर्स जो भी खेलते हैं, जिन्हें भी शौक है, तो कहीं ना कहीं बस एक ही भावना होती होगी, वो है खेल की भावना। क्या बात है। तो निसंदेह आपसे होंगी और भी बातें, क्योंकि कमांडेंट अभिराम हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और पूरा आधा घंटा है हमारे पास उनसे और भी बहुत सारी बातें करने के लिए। सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स। आप सभी का पुनः स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कमांडेंट अभिराम पंकज, सेकंड इन कमांड और 139 बटालियन सीआरपीएफ में आप कार्यरत हैं। कमांडेंट अभिराम पंकज, आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे ही आपके एग्जामिनेशन क्लियर हुआ, आपको पता लग गया कि अब आपको सीआरपीएफ ज्वाइन करना है, तो निश्चित रूप से आपको एक ट्रेनिंग के लिए भेजा गया होगा। ट्रेनिंग की प्रक्रिया कैसी रही, कहाँ थी और क्या कुछ अर्जित किया आपने उस ट्रेनिंग के माध्यम से?
1: ये जो सीआरपीएफ का जो बुनियादी प्रशिक्षण अधिकारियों का है, हमारे समय में वो बुनियादी प्रशिक्षण माउंट आबू में होता था। माउंट आबू में हमारा एक इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी है, तो माउंट आबू एक काफ़ी पिक्चरेस्क और काफ़ी खूबसूरत हिल स्टेशन है राजस्थान में, जो दिलवाड़ा के मंदिरों के लिए भी जाना जाता है, काफ़ी हिस्टोरिकल और बहुत अच्छे मौसम वाला जगह है। तो वहाँ 52 वीक्स ऑलमोस्ट अ ईयर, एक साल की हमारी ट्रेनिंग होती है, और वो जो बुनियादी प्रशिक्षण है एक सिविलियन को ट्रांसफॉर्म करती है, रूपांतरित करती है एक सोल्जर के रूप में। तो हमारी उस ट्रेनिंग में हमें अच्छा खासा फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना, हमारे वेपन हैंडलिंग पर ध्यान देना, हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो मुद्दे थे, मिलिटेंसी है, टेररिज्म है, इंसर्जेंसी के मुद्दे हैं, इंडियन पीनल कोड्स है, कानून की पढ़ाई है, तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रक्चर तरीके से एक साल वहाँ इंटेंसिव ट्रेनिंग देते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग का टाइम था
0: जी। तो जब आपने अपनी ट्रेनिंग समाप्त कर ली, उसके बाद प्रथम बार आपको कहाँ डिप्लॉय किया गया, कौन से सन में, क्या सन था वो?
1: 2005 में ट्रेनिंग करने के बाद सबसे पहले जो मैं बड़ा, अगेन मैं बहुत लकी था, मेरी पहली पोस्टिंग बिहार में हुई। तो बिहार से होने के बाद बिहार में ही मेरी पहली पोस्टिंग होना एक बड़े कमाल की बात थी, और मैं एक साल के करीब में मैं बिहार में तैनात रहा। उसमें बिहार में तो बिहार थोड़ा थोड़ा नक्सल प्रभावी था, और तो उन सारी जगहों पे उन संवेदनशील जगहों पे तैनात रहा, और काफ़ी लोगों का प्यार मिला मुझे बिहार में, लोगों का, एक तो उस मिट्टी का होने के नाते, और दूसरा सीआरपीएफ की बहुत इज्जत थी वहाँ पर, और सीआरपीएफ ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। उन दिनों मैं याद करता हूँ एक नक्सल अभियान में, ये मधुबन एक छोटा सा प्रदेश है, छोटा सा शहर है पूर्वी चंपारण में, मधुबन पे नक्सलियों का एक अटैक हो गया था, और उसमें सीआरपीएफ की

0: 45वीं वाहिनी ने नक्सलियों को खदेड़कर उनको मारा था। तो उस पूरे अभियान में 9 गैलेंट्री मेडल्स और 25 लोगों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला था। तो वो एक बहुत ही इंस्पायरिंग इंसिडेंट था और सीआरपीएफ ने सिविल पुलिस के साथ मिलकर एक बहुत ही कमाल का काम किया था जो आज भी वहाँ के लोग याद करते हैं। तो बड़ा ही कमाल का मेरे लिए बिहार का जो छोटा सा टेन्योर था ये, लिहाजा मैं बिहार थोड़ा सा टाइम निकाल कर मैं जम्मू एंड कश्मीर आ गया था 2007 में, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहा, लेकिन जो भी टाइम था वो बहुत इंटरेस्टिंग था और पहली पोस्टिंग थी तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था।
1: क्या बात है। फिर बिहार के बाद जम्मू कश्मीर पहुंचे, जम्मू कश्मीर के बाद फिर
0: जम्मू कश्मीर मैं दो मौकों पे रहा। उस समय जब मैं जम्मू कश्मीर 2007 में गया तो जम्मू कश्मीर उस समय अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड का लैंड ट्रांसफर डिस्प्यूट की वजह से थोड़ी सी परेशानियां शुरू हुई थी। मैं बांडीपुरा में तैनात था, लेकिन मैं लोगों का बहुत प्यार मिला और सीआरपीएफ ने अपने आप को जो एक सिक्योरिटी ग्रिड में जो वहां का सिक्योरिटी आर्किटेक्ट है उसमें बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश किया हुआ था सिविल पुलिस के साथ में। तो सीआरपीएफ का डिसिप्लिन, जो इनकी सिंसियरिटी और एक जो अनबायस रवैया है, तो वो लोगों को बहुत पसंद आता था। तो सीआरपीएफ आज भी उसी तरीके से वहाँ काम करती है। मैं दूसरी बार भी सीआरपीएफ के साथ में 2020 से 2024 में कश्मीर में तैनात रहा, जब भी रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद में मैं गया वहाँ पर। तो सीआरपीएफ एक काफ़ी पॉपुलर फोर्स के रूप में है, एक जो मानवीय दृष्टिकोण वाले बल के रूप में उसको लोग देखते हैं, जानते हैं। तो और एक, जैसा मैं बार बार कहता हूं कि एक फ्लेक्सिबल वर्सेटाइल फोर्स होने के नाते होने के अलावा सीआरपीएफ का एक मानवीय पहलू भी है। तो वहां मददगार करके एक हेल्पलाइन चलाती थी सीआरपीएफ, जो आज भी काफ़ी लोकप्रिय है और लोकल जो भी जम्मू कश्मीर के लोकल वासिंदे हैं उनकी किसी भी तरह की मदद के लिए सीआरपीएफ हमेशा तैयार रहती थी।
1: क्या
0: तो एक काफ़ी अच्छा टेन्योर मेरा कश्मीर में रहा और दो मौकों पे मैं गया, 8 साल मैं कश्मीर में मैं बिता कर आया। तो ये गोल्डन पीरियड रहा मेरे लिए।
1: क्या बात है। उसके अलावा आपके क्या आपको जिम्मेदारियां दी गई, चाहे वो बिहार के बाद फिर जम्मू कश्मीर हो, कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको लगता है कि उसने आपको और भी ज्यादा मजबूत बनाया और आपको कर्तव्यनिष्ठ बनाया?
0: निसंदेह सीआरपीएफ, आप सीआरपीएफ में हम लोगों को 15 दिन कैजुअल लीव और 60 दिन का अर्जित अवकाश हमें मिलता है, तो टोटल 75 दिन। तो आप उसके अलावा जो टाइम आप पूरे वर्ष का है वो आप अपने परिवार से दूर बल के जवानों के साथ बिताते हैं, तो ये अपने आप में एक अनुभव है और आप उसको जीते हैं और आप एक परिवार से दूर एक अलग परिवार बनाते हैं। तो वहाँ आप अगर ऑनेस्ट नहीं रहेंगे तो आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते हैं, एक अच्छे कमांडर नहीं बन सकते हैं। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत खासा अनुभव रहा है जब मैं जवानों के साथ इतने साल, मुझे 22 सालों की सेवा में अच्छा खासा टाइम सीआरपीएफ के साथ बताया, अच्छे खासे रिलेशंस बनाए, तो काफी अच्छा अनुभव रहा है।
1: एक बात बताइए कि पढ़ाई से बहुत प्रेम है, मुझे ऐसा महसूस होता है। सर्टिफिकेशन पब्लिक रिलेशंस में किया आपने IIMC से, तो ये निश्चित रूप से आपने अपनी सर्विसेज दौरान किया है
0: जी,
1: तो ये क्या चाहत थी दिल में कि जो आपको हमेशा बांधे रखती है एकेडमिक से, या यूं कह लीजिए कि आपकी सोच कहीं ना कहीं वो आयाम ढूंढती रहती है जो आपके काम को और भी ज्यादा स्थापित कर सके? तो क्या आपकी किसी, ये कहूंगी कि जो आपने सोचा हुआ था आपकी कर्तव्य निष्ठा है या आपकी इच्छा शक्ति है जिसने आपको बाध्य किया या मोटिवेट किया कि आप पब्लिक रिलेशंस में सर्टिफिकेशन करें?
0: जैसे अपने शरीर के विकास के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, मुझे लगता है कि इंटेलेक्चुअल विकास अपने उसके लिए आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता होती है। तो सीआरपीएफ में हमें गाहे बगाहे ट्रेनिंग के रूप में हमें लर्निंग कर्व पर रखने की कोशिश की जाती है। इसी दौरान मुझे मौका लगा इंडियन IIMC से एक सर्टिफिकेशन कोर्स करने का, वो काफ़ी हैंडी भी रहा मुझे क्योंकि सब्सिक्वेंटली मैं 2020 से 24 के दौरान मैं सीआरपीएफ का PRO भी रहा कश्मीर में, श्रीनगर में। उस दौरान सारे मीडिया के साथ जो उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन करने का मुझे मौका मिला। मैं यहाँ यह बात भी बताना चाहूँगा कि मीडिया में जब मैं वहाँ PRO की भूमिका में मैं कश्मीर में तैनात था ऑल इंडिया रेडियो के साथ काम करने का मौका मिला।
1: नब्बे वर्षों के जो ये कार्यकाल है, यानी कि जो समर्पण की भावना लिया आकाशवाणी नित्य प्रति अपनी श्रोताओं तक पहुंच रहा है, तो उस कड़ी में आप भी सब रहते थे।
0: तो श्रीनगर में जो ऑल इंडिया रेडियो की सिक्योरिटी थी वो सीआरपीएफ करती थी, वहाँ ऑल इंडिया रेडियो के जो क्वार्टर्स थे वहाँ उसकी सिक्योरिटी सीआरपीएफ करती थी। तो कई बार तो स्टूडियो को के पास जाने का, उनको उनसे बातचीत करने का मौका मिला था उनके अधिकारियों से स्टूडियोज, लेकिन आज स्टूडियो में हूँ तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहा हूँ, मैं अपने श्रोताओं से मुखातिब हूँ।
1: क्या बात है, चाहे परोक्ष रूप से हो अपरोक्ष रूप से, हम सदैव यही चाहते हैं कि हमें आकाशवाणी के सानिध्य में, इस परिसर में या इस परिसर के बाहर, जैसा कि आपने कहा कि आप नित्य प्रति ऑफिसर्स के साथ हों या फिर हमारे आकाशवाणी के कार्यकर्ता हैं, इनके साथ आप लगातार वार्तालाप में रहते थे और कहीं ना कहीं हम अपने योगदान से ना अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं और हम ये कहते हैं कि हम देश के लिए कर्तव्यनिष्ठ हैं। हम भले ही हम अलग अलग क्षेत्रों में काम क्यों ना कर रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी एक ही मंजिल है और वो है देश प्रेम। अच्छा, अब जब आप सीआरपीएफ में एक ऑफिसर बन गए, एक ऐसे ऑफिसर जो नेतृत्व कर रहा है ना केवल सीआरपीएफ का लेकिन देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी कार्य कर रहा है, आप बहुत लोगों के रियल लाइफ हीरो जैसे कहते हैं वो जरूर बन गए होंगे, तो लोग आते होंगे आपके पास और पूछते होंगे मैं कैसे आप जैसा बन सकता हूँ, कैसा होता था आपके साथ?
0: निसंदेह ये होता था, एक ये जब यूनिफॉर्म सर्विसेज में आप पब्लिक इंटरफेस पे काम करते हैं तो निसंदेह आपका इंटरेक्शन लोगों के साथ, हर एक तबके के लोगों के साथ, बच्चों के साथ, युवाओं के साथ होता था। तो सभी जगहों पे युवा आकर्षित होते थे, पूछते थे कि हम कैसे पहुंच सकते थे। तो मैं हमेशा उनको एक बात बोलूंगा कि भाई आप अपनी फिजिकल फिटनेस को अच्छा रखें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने जो फालतू की किसी चीज ऐसी एक्टिविटीज में ना हो जिससे आपका कोई पुलिस रिकॉर्ड खराब हो सकता हो वो ना करें। तो आप देश निर्माण का जो की भावना अपने मन में रखें और अवेयर रहें, तो बस बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मैं तो हमेशा ये कहता हूं। और एक अच्छा मिक्स, एक सर्वांगीण विकास अगर आपका है, आपका शारीरिक सौष्ठव अच्छा है, आपकी पढ़ाई ठीक ठाक है, आप ये बन सकते हैं। तो युवाओं को मैं उत्साहित करता था, प्रोत्साहित करता था, और सीआरपीएफ भी जहां कश्मीर में काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट होती थी तो हमारा जो सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हम युवाओं को अपने कैंप्स तक लाके उनको ट्रेन करने की कोशिश करते थे, उनको बताते थे, उनका मार्गदर्शन करते थे और कई उनमें से सक्सेसफुल भी हुए। तो जो बाद में आज भी टच में हैं, बातें करते हैं कि आप लोगों का सीआरपीएफ के मार्गदर्शन ने हमारी इतनी मदद की। तो बड़े सारे किस्से हैं इस तरीके के, सीआरपीएफ ने लोगों के जीवन को छुआ है, जहां भी आज छूती रही है, आज भी मैंने देखा है कि जो नेचर ऑफ जॉब जिस तरीके से करती है, जो सीआरपीएफ का है, और सीआरपीएफ लोगों की जिंदगियों को छूती रही है जहां भी रही है, तो वो एक बड़ी यूनिक है। और मैं इसलिए सीआरपीएफ मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे इस बल में काम करने का मौका मिला।
1: क्या बात है, जो आप यूनिफॉर्म पहनते हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, उस दौर में जब प्रथम बार यूनिफॉर्म पहनी थी और इस दौर तक, इतना लंबा समय आप अपनी सर्विसेज दी हैं आपने, तो आज भी वो सेम फीलिंग है जैसे ही पोशाक पहनते हैं, जैसे ही अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो जैसे स्मृति के पन्ने आप पलटने लगते हैं और ऐसा लगने लगता है सब कुछ नया है, जैसे पहली बार सा है, कैसा होता है?
0: बिल्कुल रोंगटे खड़े होते हैं। आप एक जो आपका जो बिहेवियर है जो वो चेंज हो जाता है यूनिफॉर्म पहनने के साथ में, एकदम बैक ऑफ द माइंड आता है कि अब नाउ यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सोल्जर, आप एक सोल्जर हैं, आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बैक ऑफ द माइंड तो वो हमेशा रहता है, लेकिन वो उस समय वो आ जाता है। तो ये हमारी खाकी हो या फिर डिसरप्टिव पैटर्न की जो हमारी कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म हो, आप कुछ भी आप जब पहनते हैं तो आप सडनली आप एक मिशन रोल में आ जाते हैं
1: जी।
0: कि बस आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको एक सर्टेन वे से कॉन्डक्ट करना है जो एग्जेम्पलरी हो, तो सब कुछ आपका अच्छा होना चाहिए। तो एक बड़ी मिश्रित सी फीलिंग होती है, आप प्राइड वाली फीलिंग भी है और एक रिस्पॉन्सिबल फीलिंग भी है। तो वो गर्व जो 22 साल पहले यूनिफॉर्म पहनकर था, आज भी हर एक बार यूनिफॉर्म पहनने के बाद वही फीलिंग होती है। तो मैं तो और मैं कह सकता हूं कि ये एक बड़ी यूनिक है। आप अगर आपने यूनिफॉर्म नहीं पहना है तो शायद समझना मुश्किल होगा,
1: शायद समझना मुश्किल है। और आपकी बातों से जो आपके भाव पढ़ रही हूं, सो ऐसा प्रतीत हो रहा है फर्स्ट लव होता है ना, पहली मोहब्बत, बिल्कुल वो पहली मोहब्बत सी जो चाहत होती है कि पहली मोहब्बत में पहली बार मिले और पहली बार जो यूनिफॉर्म पहनी वो कारवां आज तक कायम है, क्योंकि रोज जब अपने

कर्तव्य निर्वाह के लिए आप निकलते हैं और अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो वही पहली मोहब्बत से आभास आपको होता है। ऐसे ही पहली मोहब्बत से आभास हमारे तिरंगे के लिए भी हमें होता है, क्योंकि उस तिरंगे के

वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। और संदेश टू सोल्जर्स ये कार्यक्रम निजी रूप में मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। कहते हैं कि जीवन में जब आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, जब कुछ अधूरा रह जाता है, तो अधूरा, यकीन मानिए, अधूरा रहता नहीं। जब आप किसी और को उसी स्थिति में ग्रो करते हुए, एक नए आयाम रचते हुए देखते हैं, तो आपको ये महसूस होता है कि आपने अपना कार्य पूर्ण किया, क्योंकि तब आप उसके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए, चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि हम हरदम हर पल अपने इन शोज के माध्यम से ऐसे योद्धाओं को अपने स्टूडियो में आमंत्रित कर उनकी जुबानी, उनकी कहानी सुन ये कहते हैं कि हमने वो प्राप्त कर लिया जो आपके माध्यम से हमें मिल रहा है। कमांडेंट अभिराम पंकज, एक बहुत ही निजी सवाल आप तक पहुंचता हुआ। कहते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपकी पर्सनल

0: लाइफ जुड़ी होती है। आपकी निजी जिंदगी की बात की जाए अगर, तो आपके स्पाउस का एक बहुत बड़ा योगदान है आपकी मेकिंग में, क्योंकि आज आप बहुत सारे मिशंस पर रहते हैं, कार्यरत रहते हैं, बहुत बिजी भी रहते हैं, ऐसे में उनका योगदान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है घर परिवार को देखने का। उनके साथ पहली मुलाकात और उस पहली मुलाकात में ये बताना कि मैं सीआरपीएफ ज्वाइन कर रहा हूँ, क्या था वो सिलसिला, कैसे बताया, क्या हुआ, ये आप हमें बताया।
1: माँ बाप मुझे टाइम ट्रेवल में लेकर जा रही हैं। तो मैं, हम लोग 2002 में पहली बार मिले जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उस दौरान फिर इस संबंध में कोई बातचीत नहीं थी कि ऐसे हम कोई लाइफ प्लान करेंगे और मैं सीआरपीएफ ज्वाइन करूंगा या फिर गवर्नमेंट सेवा ज्वाइन करूंगा। कॉरपोरेट में कार्यरत हैं मेरी वाइफ पिछले 22 सालों से, शी इज अ प्राइवेट बैंकर प्राइवेट, और तो तब ये सब सोचा नहीं था। लेकिन सरकारी सेवा में होने की वजह से वर्क लाइफ बैलेंस में जो मुझे उनकी मदद मिली है, पीछे मेरी शादी को 19 साल हो गए, जो मदद मिली है वो बहुत ही कमाल का रहा है। तो उन्होंने जिस तरीके से ये सारा कुछ किया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एज आई सेड कि हमारा जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, हम बाहर बाहर काम कर रहे हैं, तो बहुत कम मौका मिलता है। तो एक फलक्रम के तरीके से, एक बहुत मजबूत वॉल के तरीके से उनका सपोर्ट मेरे साथ में रहा है। तो परिवार को संभालना हो, अपने जॉब का एक बैलेंस बनाना हो, तो जैसे जब मुझे मौका मिला तो 75 दिन की छुट्टियां मेरी हैं, उनकी फ्लेक्सिबल अगर जॉब है तो वो मेरे पास आ जाती थी। अब कोविड के टाइम में कश्मीर में तैनात था, तो उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो वो मेरे पास आकर रही। तो वर्क लाइफ बैलेंस अगर आपकी आपसी अंडरस्टैंडिंग है, तो एक मैं इस मामले में अगेन मैं काफ़ी काफ़ी लकी रहा हूँ, मैं काफ़ी भाग्यशाली रहा हूँ कि कभी ऐसी कोई समस्या रही नहीं है। और आज तक 19 साल मेरी शादी के बाद भी हम लोग अच्छे से अपना चला पा रहे हैं और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ कर पा रहे हैं।
0: क्या बात है कि इसे कहते हैं कि आपसी सामंजस्य से आपने बैठा लिया, और कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ प्रणय सूत्र बनते हैं, एक दूसरे के प्रोफेशंस के साथ भी प्रणय सूत्र में बनते हैं। तो जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। और जिस भी व्यक्ति की सक्सेस स्टोरी सुनी जाती है वो यही कहता है कि उसकी पर्सनल लाइफ बहुत सहल है, बहुत आसान है, उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस बाहर बहुत अच्छी है।
1: जी जी, निस्संदेह। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आई एम गेटिंग बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूं, मैं अपना, और वो कॉरपोरेट सेक्टर में है, तो एक मैं दोनों वर्ल्ड्स का जो बेस्ट मैं वो एक्सपीरियंस कर पा रहा हूं, और मैं थैंकफुल हूं।
0: जी, निश्चित रूप से कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड इज द वे ऑफ लाइफ, जिनकी वजह से हम आगे बढ़े, चाहे वो माता पिता हो या फिर हमारे स्पाउस, हमें नित्य प्रति उन्हें बस जता देना चाहिए कि आप हमारी जिंदगी में क्या वैल्यू रखते हैं। और ये निश्चित रूप से आपकी बातों से साबित हो रहा है कि आपकी जिंदगी में वो क्या वैल्यू रखती है। अब आकाशवाणी 8 जून को अपने पूरे 90 वर्ष पूरे कर रहा है। अगर स्मृति के पन्नों को पलटा जाए, आकाशवाणी से आपका संबंध, जैसे आपने बताया कि आप कश्मीर में वहां आकाशवाणी केंद्र के संपर्क में थे, वहां पर आप नित्य प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, लेकिन अगर हम बात करें आकाशवाणी के कार्यक्रमों की, किस तरह से आप जुड़े हुए हैं?
1: देखिए, मैं 70 या 80 के दशक में जिनका जन्म हुआ हो, उनमें से शायद ही कोई इंडिविजुअल हो जिनकी जिंदगी को आकाशवाणी ने ना छुआ हो। तो आकाशवाणी से जुड़े, मैं जैसे बताया कि मैं जैसे मैं स्टूडियो में आया, मेरे लिए एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी। मैं अपनी मिट्टी में वापिस आए हैं, नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी।
0: तो
1: उस तरीके की बिल्कुल नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी। और मेरी जो मेमोरीज हैं वो एफएम रेनबो प्रोग्राम को लेकर, विविध भारती, आपको याद होगा अमीन सयानी एक एंकर होते थे जो बिना का गीत माला लेकर आते थे। और तो वो हमारी बचपन की यादें थी, हम देखते थे और उसको हम बहुत इंतजार करते थे, और हर एक सप्ताह के उस दिन का इंतजार करते थे जब वो बिना का गीतमाला लेकर अमीन सयानी जी आते थे। क्या हाँ। गोल्डन वॉयस थी उनकी। तो ये सारी यादें थी, और आज वो सारी यादें ताजा हो गई। और फिर मैं धन्यवाद करता हूँ मैं एफएम रेनबो का, आपका, आकाशवाणी का, इस मौके के लिए।
0: बिल्कुल। और ये जो सफर है ये बहुत ही सुखद सफर है। हमारे जो युवा हैं जिस वक्त हमें सुन रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, खासतौर पर वो जो सीआरपीएफ ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर किसी भी फोर्सेस का हिस्सा

0: बनना चाहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
1: मैं दिनकर की एक रचना है रश्मि रथी, उसके दो शब्द मैं बोलना, दो पंक्तियां मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जो जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो अब अपना बेस्ट करें, एक अच्छे सिटीजन बने,
0: बिल्कुल
1: अपनी अच्छी तैयारी करें, अपने देश अपने माता पिता से प्यार करें, अपनी सोसाइटी को अपना सोसाइटी को अच्छा करें, अपने आसपास का माहौल अच्छा करें, महिलाओं का सम्मान करें, अच्छे संस्कार करें, अच्छे संस्कार अर्जित करें और बाकी सफलता आपके कदम चूमेगी।
0: जी बिल्कुल, सफलता आपके कदम चूमेगी। और एक बात जो निश्चित रूप से मैंने आत्मसात की है कमांडेंट अभिराम से कि आप अपने बच्चों को ना खेल में जरूर, यानी कि उनको एक स्पोर्ट्स तो एटलीस्ट खिलवाइए, कहीं ना कहीं उनका सर्वांगीण विकास होगा, बुद्धि तीक्ष्ण होगी और साथ ही साथ जो शारीरिक रूप से हमारा गठन होता है उसमें भी अहम भूमिका रचते हैं ये खेल। तो अपने बच्चों को जरूर खेलों से आप जोड़कर रखिए, इस मोबाइल की दुनिया से दूर रखिए, जो चार दीवारी में आपने अपने बच्चों को बंद कर दिया उससे बाहर निकालिए, क्योंकि असली जीवन तो दीवारों के बाहर है,
1: निसंदेह।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया कमांडेंट अभिराम पंकज आपका, आप स्टूडियो आए और बहुत सारी बातें हमारे साथ साझा की। एक ऐसा गीत जो आपके दिल के बहुत प्रिय हो उसको मैं यहाँ प्ले करना चाहूंगी, अगर आप कहें तो, आपके लिए जैसा कि आपने फरमाइश की थी शोर फिल्म के उस गाने के लिए, एक प्यार का नगमा है। निश्चित रूप से ये प्रेम है, चाहे वो देश के प्रति हो, अपनों के प्रति हो या मानवता के प्रति हो, जो हमें हमेशा आगे चलने के लिए प्रेरित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर।
1: धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद,
0: जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। यह प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 102.3 MHz पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम थारी मारी पसंद।

थारी मारी पसंद कार्यक्रम सुनने सारे बन भैया ने आजाद भाई की राम राम। इस बार गर्मी का बहुत कड़ा रूप देखने माया, जाने अनजाने में जो हमने गलती करी, पेड़ पौधों की कटाई की, अंधाधुंध संसाधनों का दोहन किया, जिसका परिणाम आज हम भुगतन लाग रहे हैं। इस आगे बरसात का मौसम आओगा, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जा, धरती को हरा भरा बना जा। गर्मी के मौसम में सेहत स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दोपहर के टाइम गामा में देखने में आओ कि बर्फ कुल्फी वाले पूपू बजा जा है, और वो बालक चाहे दाने लेके चाहे बाबू थे माँ थे और नानके में जाके बालक घने लाडले हो जाए हैं, नानी उनकी कुल्फी दुआ दे। और गर्मी में जब ज़्यादा ठंडा खाओगे तो छाती जाम हो जाए, तो बालकों को भी कहेंगे भाई सेहत स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। खेत क्यार में थे जब काम धंधा करके आऊँ तो सीधे फ्रिज का पानी ना पीवे, कोरे मटके का पेंडे का पानी पिया जा, प्याज लासी शीत राबड़ी का प्रयोग करा जा, सेहत स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो जब हम अच्छा काम कर पाऊंगे। भाई बात देखने लाग रहे हैं, आजाद भाई रागनिया का इंतजाम करके आओगा, किसे कहानी गीत रागनी हम आपके लिए लेके आ करें, किसे की बात बता करें ताकि रागनी का मजमून ठीक समझ में आ जा। तो फिर आज के थारी मारी पसंद कार्यक्रम में किसे की बात हर रागनी के साथ प्रस्तुति आजाद सिंह, प्रस्तुतकर्ता श्री पवन कुमार। ये कार्यक्रम आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सके हैं। इसके अलावा बड़े फोन में यानी एंड्रॉयड फोन में गूगल पे लिखें 102.3 FM लाइव, लाइव स्ट्रीम में भी आप आकाशवाणी के कार्यक्रम सुन सके हैं। कार्यक्रम की पहली रागनी किस्सा अजीत राजबाला में थे। बात उस टाइम की जब राजबाला की इच्छा थी कि उसकी शादी अजीत सिंह के साथ हो जा। राजबाला का पिता इनकार करते हैं और अजीत सिंह को एक चिट्ठी लिख दी कि मोड़ बांध के आवे थे 20,000 रुपये लेके आइए। लेकिन वह राजबाला अजीत सिंह से शादी करने को तैयार थी। अजीत सिंह के पिताजी का जैसलमेर में एक साहूकार दोस्त था। अजीत सिंह उसके पास जावे है और सेठ जी को कहे कि ताऊ पछाण्या। सेठ बोला भाई थोड़ा थोड़ा पछाण्या। इतनी बात सुन के अजीत सिंह कहने लग्या, ताऊ जी मैं अनार सिंह का लड़का हूँ, आ रहा मेरे बेटे की ऊपर आया। अजीत सिंह कहने लग्या, बिगड़ी नीत मेरे सुसरे की, खोटे मन में करे विचार, इसी कसूती चिट्ठी लिख दी मेरी ली आबरू तार। चिट्ठी के मां राम रमीना, ना पूछा दुख सुख काल, घाटे बाधे की ना पूछी, ना पूछी बिगड़ी की चाल, उस मानस ने जुलम करे उसने कर दिए कोड कमाल, और चिट्ठी के मां न्यू लिख दिया मेरी ओढ़ते ब्याह की टाल, जे मोड़ बांध के आना चावे संग में लाइए 20,000, इसी कसूती चिट्ठी लिख के मेरी ली आबरू तार। ताऊ गोली का गा बरजा से नहीं बोल का भरता, खोटा बोल नसूर बने नर तिल तिल करके मरता, खोटे बोला के कारण में हंडू दर दर फिरता, और क्या का फिक्र नहीं मैं एक बात ते डरता, जे रहेगी मेरी मांग कवारी मने के फूकेगा संसार, इसी कसूती चिट्ठी लिख के मेरी ली आबरू तार। सेठ जी कहने लग्या, बेटा कोई बात नहीं, चाहे 60,000 रुपये ले जा, पर अपनी बात पे अड़िया रहिए। लेकिन सेठ ने एक शर्त दर दी, जब तक ये रुपये ना उतरे तेरी और तेरी घराली धर्म की बाण रहेगी। बीच में धर्म की कटारी मानिए अजीत सिंह कसम उठावे है, लाला जी जब तक आपका कर्जा नहीं उतर पाओगा मेरे और राजबाला के बीच में धर्म की कटारी रहेगी। अजीत सिंह और राजबाला की शादी हो जाए। जब वो झोपड़ी में पहुंचे तो अजीत सिंह अपने और राजबाला के बीच धर्म की कटारी दर्दे है।

राजबाला न्यू कहन लगी, न्यू बूझू मन साच बता दे मारी किस्मत माड़ी क्यों है, एक बात का भेद पटियाना मारे बीच कटारी क्यों से। अजीत सिंह ने सारी बात बताई, यू लाला जी का कर्जा तालना है। राजबाला कहन लगी, तेरे कल्ले तत कर्जा को ना पाटे, मैं तेरी गेल चालूंगी। और मर्दाने वेश में साथ चल पड़ती है। राजबाला कहन लगी, देखे या इज्जत मोती कैसी आप, पिया मेरा दर्दे नाम गुलाब। राजबाला क्या कहती है उस मौके की बात, मास्टर सतवीर बैंसवालिया और साथियों की आवाज़ में।

कार्यक्रम की अगली रागनी भी किस्सा अजीत राजबाला में थे। मर्दाने वेश में जब वो राजबाला अजीत सिंह के साथ चाल पड़े है तो राह में एक राजा अपनी अटारी पे देखन लाग रहा। बड़े बढ़िया घुड़सवार हैं। कहने लगा, तुम कौन भाई? जी हम अक्षत्री हैं। के काम कराया करो हो? नौकरी की तलाश में है। तो फिर क्यों घूमो सड़का पे? कर लो मेरी सेना में नौकरी। अजीत सिंह और राजबाला राजा के नौकरी करने लाग जाए। राजा का इतना विश्वास हो गया कि वो अपनी रानी के पास अजीत सिंह और राजबाला को पहरेदार के रूप में रख ले है। कुछ टाइम बीता, रात का टाइम, अजीत सिंह और राजबाला पहरे पे बैठे हैं। मौसम बदल जाए है। मौसम बदले है तो राजबाला अजीत सिंह को क्या कहती है, उस मौके की बात रणबीर सिंह बड़वासनी और साथियों की आवाज में।

कार्यक्रम की अगली रागनी की सात चंद किरण माते। मदनपुर शहर के राजा मदन सिंह चंद किरण के फोटो की खटक में साधु के बेस में चंद किरण के महल के तले दूना लाले है। दूने का दूमा जब चंद किरण की अटारी में पहुंचा तो वह चंद किरण बांदी को पूछे है के सौदा है। चंद किरण बांदी को महल के तले भेजे है। बांदी उस साधु यानी मदन सेन को दूना उठाने के लिए कहती है, लेकिन वो बाबा जी तो चंद किरण के फोटो की खटक में था, खूब समझाने पर नहीं मान्या। बांदी और मदन सेन के बीच क्या सवाल जवाब होते हैं, उस मौके की बात प्रेम दयाती और सरिता चौधरी की आवाज में।

0: ये रोले रऊत रांड मेरा दूड़ा रहे जरूरी।
1: पुलिस बुला के बाबा जी कड़े वादियों तेरी गरूरी
0: वा कमरे आ।

तक ओ कितने दिन तक बैठा रह तेरी मिटनी भूख नहीं से।

कार्यक्रम की अगली पेशकश किस्सा साई लकड़ारा, गायक कलाकार पासी नैयर और साथी। बात उस टाइम की जब वो लकड़ारा रोज जंगल में ते लाकड़ी लिया करता। एक दिन बिना कहन लगी, तू जंगल में ते लाकड़ी ले क्या, मैं तेरे खातिर इतने रोटियां का प्रबंध करूं। लकड़ारा बोला, लाकड़ी ते मैं ईब ले आऊं, यूं तो मेरा रोज का काम है। बढ़िया बढ़िया लाकड़ी छांट के लाया। जब बिना ने वे लाकड़ी देखी और पूछा कि लाला जी इन लाकड़िया ने के बा लिया करे, लकड़ारा बोलिया, बा नहीं आकर दिन बाता की, मैं लाकड़ी गे रहा हूं और दो टेम की रोटी मिल जा। बिना कहन लगी, तड़के लाला जी ते अपना हिसाब करवा ले। लकड़ारा बोलिया, इन बातों के हिसाब को नहीं होया करते, बोली बातों में के दे रहा है। बिना के कहने पे लकड़ारा लाला जी ते कहन लग्या, लाला जी मेरा हिसाब कर दे। लाला जी बोला, रे बोले किस बात का हिसाब, तो लाकड़ी लिया करता रोटी खा लिया करता। इतने में कौन कि वो बिना मर्दाने भेष में लाला जी के पास पहुंच जाए। लाला जी और लकड़ारे के हिसाब करण खातर पंचायत बुला ली। 6 साल का हिसाब कराया तो लाखों रुपए लाला जी ने लकड़ारे को देने पड़े। जब वो लकड़ारा और बिना पैसे लेके चाले तो बिना मन मन में सोचे है, देख काल तक कंगाल थे, एक दिन में किस्मत बदल गई। वो बिना लकड़ारे को क्या कहती है उस मौके की बात पासी नैयर और साथियों की आवाज़ में।

0: कार्यक्रम की अगली रागनी की सा माँ भारत में थे। गायक कलाकार बाली शर्मा और साथी बात उस टाइम की, द्रौपदी जब सुदेशना के पास दासी के रूप में रहने लाग गई। उधर कौन के कीचक अपनी भाण सुदेशना ते पूछे, बेबे या कौन? सुदेशना के है भाई या मेरी दासी है। कीचक कहन लग्या, तू इसने मेरे महल में भेज, मैं इसने रानी बना के रखूंगा। सुदेशना कहन लगी, भाई जो तू सोच रहा है या इसी औरत को ना, और जे तू मेरा और खुद का भला चाव है तो बोल बाला लेकर जा। वह सुदेशना कीचक को क्या समझाती है उस मौके की रागनी बाली शर्मा और साथियों की आवाज में।
1: Thank you.

समझे या पूरी नेम परने की अपने कहे हुए बचनाते या हर गिज नहीं करने की।

न्यारा इसका दासी मतना समझे इसने राजपाट अनसारा इसका कजे न कजे देख जनता या दुनिया बीच सतारा इसका बेरा ने आज किसका

इसके पतियाओं का।

सतपुरुषों की टहल करें।

कार्यक्रम की अगली रागनी किस्सा सेठ ताराचंद में थे गायक कलाकार मास्टर सतवीर और साथी। बात उस टाइम की जब वो सेठ ताराचंद उस साधु यानी धर्म मालकी से मिल्या और घरा चालन की बात करे कि हम आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। उस मौके की कवि कल्पना मास्टर सतवीर भैंसवालिया और साथियों की आवाज

परिक्रमा करके मिली शठानी मेरे आधे अंग की साथी। दुनिया में बहुत फिर से पाप करनिया पाजी लक्ष्मी चंद्र

कार्यक्रम की साख लग गया, इस बारे में ठोस ठीक प्रतिक्रिया इस पते पर जरूर लिख दिया करें। कार्यक्रम थारी मारी पसंद द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी SR PIN 125001।

आपसी प्यार प्रेम और भाईचारा बढ़ावे, एक दूसरे के काम आवे। और वही घर चलने का टाइम हो रहा है, काम धंधा करके लोग बाग थक के आए हैं। इसी के साथ ही आज का थारी मारी पसंद कार्यक्रम समाप्त करने की अपने भाई आजाद दुआ न दे अनुमति सारे बन भैया ने। राम राम।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना

0: निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हिंदुस्तान जमीन है सितारों की।
4: अगर तुम्हारी आरजू एक कमीज है तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा।
5: एक से बढ़कर एक उम्दा फनकारों की।
3: कोई साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है?
6: न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता।
5: तो कोई विज्ञान में अद्वितीय है?
7: Will he be remembered as a great scientist, said Thomas Alva Edison.
3: कोई कला में उत्कृष्ट है?
5: तो कोई संगीत का शिरोमणि।
3: किंतु कोई है जो इन सब को ले आया है आपके लिए, आपके घर में, आपके बेहद करीब।
5: कार्यक्रम एक शख्सियत,
3: हर सोमवार शाम 5 बजे
5: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
8: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
9: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
8: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
9: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
8: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम थारी मारी पसंद। यह प्रसारण आकाशवाणी के हिसार केंद्र से किया गया।

हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.3 MHz पर। शाम के 6 बजने को है, कुछ ही पलों में समाचार होंगे, अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। विधानसभा में कांग्रेस के पास 106

0: 30 से अधिक विधायकों का समर्थन है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने पार्टी की राज्यसभा सीट की पेशकश विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दी है। उन्होंने कहा कि वे राज्य की जनता के लिए काम करते रहेंगे। कांग्रेस की विधानसभा चुनावों में जीत के बाद सिद्धरमैया मई 2023 में दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे। उनके इस्तीफे के साथ ही राज्य में चल रहा लंबा सत्ता संघर्ष समाप्त हो गया है। श्री डीके शिवकुमार को 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से हर घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमीशन कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की भी चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आशीष शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान विधायक अभिषेक देवरॉय को पार्टी की त्रिपुरा प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि देवरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर कल रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधाकृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थागंडी के SIRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने येनेज यांशा को स्लोवानिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया और प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिड़ला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज दिल्ली नगर निगम के भलसवा अपशिष्ट निपटान स्थल संबंधी सुधार कार्यों की समीक्षा की। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया कि अपशिष्ट की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आई है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर के रक्षा सचिव जोसेफ लियोंग के साथ 16वीं रक्षा नीति वार्ता की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस वार्ता ने भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की पुष्टि की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु ने अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की पुरुष डबल्स जोड़ी तथा ध्रुव कपिला तनिषा क्रास्टो की मिक्स डबल्स जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 102.3 MHz पर प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज और कल में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। अभी 6:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम भक्ति संगीत, और 6:30 पर होगा कार्यक्रम युवा उमंग, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

कार्यक्रम किसान वाणी में आज होगा फोन इन कार्यक्रम। विषय है गर्मी के मौसम में हरा चारा प्रबंधन। हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर सतपाल। समय रहेगा आज शाम 7 बजे।

युवाओं के लिए सोशल मीडिया के फायदे, नुकसान और चुनौतियां, इस विषय पर बातचीत करेंगे आज शाम 7:30 पर। कार्यक्रम रहेगा म्हारे गांव।

आपके व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने हम लेकर आएंगे आपके लिए आज रात्रि 8 बजे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप अभी से नोट कर सकते हैं, 9729253272।

राष्ट्रीय हिंदी समाचार रात्रि 8:45 पर और रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार।

विविध भारती के प्रसारण आप सुन पाएंगे आज रात्रि 9:15 से। आपकी ईमेल्स पर आधारित कार्यक्रम ई फरमाइश आपके लिए हम लेकर आएंगे आज रात्रि 10 बजे। हमारा ईमेल आईडी है radiohisar यानी radiohisar@gmail.com।

आकाशवाणी हिसार से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रूपरेखा। शाम के 6:10 होने को हैं। प्रादेशिक समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र।

0: छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया।

0: के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पानीपत में इलेक्ट्रिक बस डिपो का उद्घाटन किया और विभिन्न जिलों के लिए 80 इलेक्ट्रिक सिटी बसें रवाना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 नए इलेक्ट्रिक बस अड्डे बनाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हरियाणा और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब का अध्यक्ष नियुक्त किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बागवानी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कटाई के बाद प्रबंधन, पौध कीट नियंत्रण और रोगों के नए विषयों पर मास्टर डिग्री और पीएचडी शुरू करने की घोषणा की। और आज हरियाणा और चंडीगढ़ में ईद का त्योहार पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में OSM प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनके आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पानीपत में इलेक्ट्रिक बस डिपो का उद्घाटन किया तथा विभिन्न जिलों के लिए 80 इलेक्ट्रिक सिटी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पानीपत की ऐतिहासिक और पावन धरती से आज हरियाणा में स्वच्छ, आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था के नए युग की शुरुआत हुई है।
2: साथियों, आज हम हरियाणा में ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का विस्तार कर रहे हैं। पानीपत के इस ऐतिहासिक धरा से आज 5 जिलों के लिए 80 इलेक्ट्रिक बसें को रवाना करते हुए मुझे भी बड़ा गर्व महसूस हुआ। पानीपत के लिए यहां पर 40 बसें, यमुनानगर के लिए 15 बसें, कुरुक्षेत्र सोनीपत के लिए 10-10 बसें और पंचकुला के लिए 5 इलेक्ट्रिक बसें को रवाना किया गया है। यह हरियाणा के स्वच्छ, सुगम और आधुनिक परिवहन भविष्य की शुरुआत है। पानीपत में 7 करोड़ रुपए की लागत से बने इलेक्ट्रिक बस डिपो का उद्घाटन किया है। आज पूरी दुनिया पर्यावरण और ग्रीन एनर्जी की दिशा में क्यों आगे बढ़ रही।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक बस सेवा से पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम होगी, प्रदूषण में कमी आएगी तथा लोगों को सुरक्षित, आरामदायक और आधुनिक यात्रा सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानीपत में लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बस डिपो तैयार किया गया है। इसके अलावा प्रदेश के 8 अन्य जिलों में भी इलेक्ट्रिक बस डिपो निर्माणाधीन है, जहां बसों की चार्जिंग की आधुनिक व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही एक वर्ष के भीतर 10 नए इलेक्ट्रिक बस अड्डे बनाए जाएंगे तथा भविष्य में अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार बसों को रेलवे की तर्ज पर ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ने पर भी कार्य कर रही है, जिससे यात्री मोबाइल ऐप के माध्यम से बसों की लोकेशन और आगमन समय की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा और पंजाब के नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने हरियाणा में डॉक्टर अर्चना गुप्ता और पंजाब में केवल सिंह ढिल्लों को ये जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा,
3: सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, पूरे के पूरे संगठन का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूं और आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने एक महिला कार्यकर्ता में इतना विश्वास जताया कि वो एक प्रदेश अध्यक्ष जैसी बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां पर हमारा संगठन पहले ही काफी मजबूत है, संगठन उसी मजबूती के साथ काम करता रहे। सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर और ज्यादा मजबूत और महिलाओं की राजनीतिक में भागीदारी और बढ़े, मेरी प्राथमिकताओं में है।
0: डॉक्टर अर्चना गुप्ता PGI रोहतक से MD की डिग्री हासिल कर चुकी हैं। वो पेशे से रेडियोलॉजिस्ट हैं और भाजपा में लंबे समय से सामाजिक और संगठनात्मक गतिविधियों से जुड़ी रही।

0: वर्ष 2010 से 2016 तक उन्होंने विश्व हिंदू परिषद में जिला सह संयोजिका, संयोजिका और हरियाणा के उपाध्यक्ष जैसी जिम्मेदारियां निभाई हैं। उन्होंने महिला मोर्चा में संगठनात्मक काम किया और पानीपत क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने में भूमिका निभाई। वर्ष 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में सक्रिय प्रचार किया, खास तौर पर महिला मतदाताओं के बीच उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर डॉक्टर अर्चना गुप्ता को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार मिलने पर बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के मार्गदर्शन व आपके नेतृत्व में संगठन और अधिक सशक्त होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा की जनसेवा, सुशासन और राष्ट्रहित के विचारधारा प्रदेश के प्रत्येक कार्यकर्ता तक नई ऊर्जा के साथ पहुंचेगी।
1: डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी का हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर पूरे हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा, नया उत्साह और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है महिला सशक्तिकरण, मैं उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर से आज आभार भी व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हरियाणा की बेटियों, हरियाणा की माताओं और संघर्ष करने वाली हर महिला का आज सम्मान डॉक्टर अर्चना गुप्ता के रूप में किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी महिला सशक्तिकरण में निरंतर काम कर रहे हैं।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज करनाल की केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान में उद्यानिकी फसलों हेतु गुणवत्तापूर्ण बीज एवं रोपण सामग्री का रणनीतिक प्रतिमान विषय पर चार दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का आयोजन लेफ्टिनेंट अमित सिंह स्मृति न्यास के सहयोग से किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केवल सम्मेलन नहीं बल्कि विकसित भारत के कृषि विजन का संगम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप बागवानी कम समय में किसानों के लिए उम्मीद का केंद्र बन गया है। उन्होंने बागवानी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कटाई के बाद के प्रबंधन, पौध कीट नियंत्रण और रोगों के नए विषयों पर भी मास्टर डिग्री और पीएचडी शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने विश्वविद्यालय को 14 विज्ञान केंद्र प्रदान करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केंद्र किसानों तक गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री और वैज्ञानिक सलाह पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना विकसित कृषि के बिना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण बीज और रोग मुक्त पौध सामग्री से कृषि उत्पादन में 15-25% तक और बागवानी फसलों में उत्पादन बीज गुणवत्ता से 30-40% तक बढ़ाया जा सकता है।
1: यदि भारत आने वाले दशकों में एक वैश्विक कृषि महाशक्ति के रूप में स्थापित होना है तो उसकी नींव कहां रखी जाएगी? कृषि का भविष्य छिपा है उसके बीज में और उस पौध में। पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है कि गुणवत्ता युक्त बीज और पौधे से कृषि उत्पादकता में 15-25% तक वृद्धि संभव है, जबकि रोग मुक्त प्रमाणित पौध सामग्री बागवानी फसलों में और गुणवत्ता दोनों को 30-40% तक ये बढ़ा रही। यही कारण है कि विकसित देश अपनी कृषि नीति में सीड सिक्योरिटी एंड प्लांटिंग मटेरियल क्वालिटी को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का काम कर रहे हैं।
0: आज हरियाणा और चंडीगढ़ में ईद उल अजहा का त्योहार श्रद्धा सौहार्द और उल्लास के साथ मनाया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया की।
2: हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 102.3 MHz पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम भक्ति संगीत।

ये वो अवस्था है, वो आयु है कि चलना सीख रहे हैं, ठुमक ठुमक कर चलते हैं, लड़खड़ा कर गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, चलने का प्रयास करते हैं। देखिए ये भाव गाकर किस प्रकार दिखाया जा सकता है।

गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम के मुख की तुलना किसी वस्तु से करना चाहते हैं। अन्य कोई कवि होता तो कह देता, भगवान राम के मुख जैसा कमल है या चंद्रमा है या सूर्य है, किसी भी तेज वस्तु या सुंदर वस्तु से तुलना कर देता। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी को कोई ऐसी वस्तु नजर ही नहीं आ रही जिससे वो भगवान राम के मुख की तुलना करें। बहुत सोचा, अंत में हार कर यही कह दिया कि भगवान राम के मुख जैसा केवल भगवान राम का ही मुख है और कुछ नहीं।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लीजिए, और जो स्वीकार ना किया जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन हर हाल में खुद को खुश रखिए, क्योंकि खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है।
1: बहुत ही सुंदर विचार, आपको धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू जी का।
2: ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
1: और पगबंधी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
2: भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी।
1: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, आज एक बार फिर से हम रोचक जानकारी लेकर आए हैं दुनिया के एक और बेहद प्रसिद्ध फूल की। तो विमलेश जी, कल हमने बात की थी चेरी के फूलों की।
2: जी, तो अब ये बताइए हमारे श्रोताओं को, आज हम किस फूल की बात करेंगे?
1: विमलेश जी, आज हम बात करेंगे ट्यूलिप फूल की। ये भी दुनिया के प्रसिद्ध फूलों में से एक है।
2: वाह जी जी, भला ट्यूलिप फूलों की सुंदरता को कौन नहीं जानता।
1: बिल्कुल।
2: तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से मेरा ये है, ट्यूलिप फूल मूल रूप से किस देश का है, यानी इसकी उत्पत्ति का स्थान कहाँ माना जाता है?
1: विमलेश जी, वैसे दुनिया भर में ये माना जाता है कि ट्यूलिप फूल मूल रूप से नेदरलैंड्स या हॉलैंड का है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है
2: जी।
1: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि सच्चाई क्या है।
2: जी, श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि दरअसल ट्यूलिप फूल मूल रूप से मध्य एशिया के कजाकिस्तान देश का माना जाता है। यहाँ से ट्यूलिप तुर्की पहुँचा और फिर सारी यूरोप में फैल गया। तो अजीत जी, अब बात करते हैं ट्यूलिप नाम कैसे पड़ा, अब आपकी बारी।
1: जी, अब मेरी बारी। तो बता दूं कि ट्यूलिप शब्द आया है तुर्की और फारसी शब्द दुलबंद से, जिसका अर्थ होता है लंबी पगड़ी। यदि इस फूल की खुली पंखुड़ियों के मोड़ को देखें तो ये सच में मोड़दार लंबी पतली तुर्की पगड़ी जैसा ही दिखता है। 16वीं शताब्दी में जब ये फूल तुर्किस्तान के ओटोमन साम्राज्य में पहुंचा तो राजनयिक और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित लोगों ने इसके समान दिखने वाली टोपियां बनवाई, जिसे तुलिपा कहा जाता था। बाद में ये शब्द फ्रेंच, डच और अंग्रेजी भाषा में मिलकर ट्यूलिप बन गया।
2: जी, रंग, आकार और पंखुड़ियों के आधार पर इस फूल की 3000 से भी अधिक प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि ट्यूलिप फूल कई रंगों के होते हैं, जैसे लाल, सफेद, गुलाबी, बैंगनी और नारंगी, लेकिन सबसे प्रसिद्ध और महंगा है काले रंग का ट्यूलिप।
1: जी,
2: ये रात में ही खिलता है, इसलिए इसे क्वीन ऑफ द नाइट कहा जाता है। हर रंग का अर्थ है।
1: जैसे
2: जैसे लाल रंग ट्यूलिप प्रेम का, पीला ट्यूलिप मित्रता का,
1: जी,
2: सफेद ट्यूलिप क्षमा और शांति का, और बैंगनी ट्यूलिप राजसी गरिमा का।
1: जी, इसलिए अक्सर अवसर और भावना के अनुसार ये ट्यूलिप फूल किसी को दिए या भेजे जाते हैं।
2: जी,
1: अविमलेश जी, एक और प्रश्न है मेरे पास जिसका उत्तर हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे, विशेषकर वे जो बागवानी में रुचि रखते हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि ट्यूलिप फूल कैसे उगाया जाता है?
2: अजीत जी, सबसे रोचक बात तो ये है कि ट्यूलिप फूल बीज से नहीं उगता था, लेकिन कंद या बल्ब से उगाया जाता है। एक स्वस्थ कंद कई वर्षों तक फूल उगा सकता है। जहाँ तक इन फूलों के खिलने का प्रश्न है, ये फूल मार्च से मई तक खिलते हैं।
1: जी श्रोताओ, इन फूलों की दुनिया भर में भारी मांग है। ये व्यावसायिक या कमर्शियल फूल माने जाते हैं और इनका व्यापार करोड़ों डॉलर का है।
2: अजीत जी, जब आपने कमर्शियल फूल की बात की तो मुझे एक बहुत ही रोचक घटना याद आ गई।
1: हाँ, वो क्या?
2: 17वीं सदी में नेदरलैंड्स में एक अनोखी आर्थिक घटना हुई जिसे ट्यूलिप मेनिया कहा जाता है।
1: ये घटना क्या थी?
2: उन दिनों यूरोप में ट्यूलिप फूलों की भारी मांग थी। मांग इतनी अधिक थी कि कहते हैं कि ट्यूलिप फूल के मात्र एक कंद की कीमत लगभग एक घर की कीमत

0: कीमत के बराबर हो गई थी।
1: ये तो बड़ी रोचक जानकारी विमलेश जी। श्रोताओ, नेदरलैंड्स के रंग बिरंगे फूलों के खेत दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। मीलों तक लहराते हुए ट्यूलिप फूलों के खेतों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। जहाँ तक भारत की बात है, भारत का सबसे प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन।
0: तो अजीत जी, समाप्त करने से पहले एक और बड़ी रोचक बात श्रोताओं से साझा कर लेते हैं। ट्यूलिप के फूल आमतौर पर गंधहीन होते हैं। कुछ प्रजातियां ही हैं जिनमें बहुत हल्की सुगंध आती है। तापमान और रोशनी के अनुसार अपनी पंखुड़ियां खोल या बंद कर सकते हैं। ये अक्सर रात को लगभग बंद हो जाते हैं
1: और सुबह होते ही अपनी पंखुड़ियां खोलकर सूर्य का स्वागत करते हैं, मानो कह रहे हो गुड मॉर्निंग सन।
0: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी ट्यूलिप के सुंदर फूलों की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा प्रश्न है श्रोताओं कि मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा।
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है समझदारी।
0: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि आपस में प्रेम और सहयोग की भावना के साथ रहने में ही समझदारी और सबकी भलाई है।
1: जी।
2: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
3: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
4: अब्बा, मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
3: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
4: अब्बा, मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है। मुझे स्कूल का काम करना है।
3: लेकिन बेटा, क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
4: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
3: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
4: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
3: बेटा, अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
4: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
3: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
4: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
3: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
1: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?

0: مشق،
1: होशियार,
0: समझदार,
1: पेंसिल तराश,
0: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
1: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
0: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
1: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम समझदारी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्देशन विमलेश चौधरी, निर्माण जगबंधु जाना तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है कैप्टन विक्रम बत्रा।
3: इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के दौरान अपार वीरता का प्रदर्शन करने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार रणनीतिक और भौगोलिक रूप से कमजोर स्थिति में भी उन्होंने सियाचिन के टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया और अपने प्राणों की आहुति दे दी।
4: साथियों, सन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे। इन रणबांकुरों के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने। सन 1999 में मीडिया ने पूरे देश को सेना के साथ एक आत्मीय बंधन में बांध दिया। लोगों ने घर बैठे सैनिकों को मोर्चे पर लड़ते देखा।
5: साथियों, मैं हूँ मेघना उपाध्याय और इस समय कारगिल की युद्ध भूमि से मैं आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, चारों ओर हमारी सेना का भारी जमावड़ा है। तो आइए बात करते हैं हमारे एक सैनिक से। तो आपने बताया कि आप छुट्टी पर जा रहे थे।
6: जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद में।
5: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं, क्या घर की याद नहीं आती?
6: हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के हम बेटे हैं उससे भी बड़ी माँ है हमारी भारत माँ। उसकी सुरक्षा को छोड़कर घर चले जाए हो नहीं सकता।
5: तो देखा साथियों, ऐसे हैं हमारे सैनिक, हमें इन पर नाज है।
7: वाह, अरे वाह, क्या बात कही है।
6: क्या बात है,
7: सुनकर ही जोश आ गया।
6: हाँ
7: भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो और अब ये लड़ाई, शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े। संभल कर रहना भाई।
8: युद्ध में तो जाना ही है दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
4: ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के, जो कारगिल युद्ध के दौरान शेरशाह के नाम से भी मशहूर हुए। युद्ध के समय उनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर लोग दंग रह गए। वे एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जाते रहे और देश एकजुट होकर उनकी सलामती की दुआ करता रहा। ऐसे थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा।

विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के छोटे से नगर पालनपुर में हुआ। हिमाचल एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता

0: ने शहादत देकर कुर्बानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है और इसी पावन भूमि पर जन्म लिया हमारे इस परमवीर विक्रम बत्रा ने। विक्रम बचपन से ही निडर और साहसी थे। सन 1994 में विक्रम ने एनसीसी के सदस्य के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया और जब वहां से लौट कर आए तो वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे और वो था भारतीय सेना में भर्ती। जुलाई 1996 में विक्रम ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी चीजों ने उन्हें प्रभावित किया, जैसे वहां का अनुशासन, सैनिक प्रशिक्षण और उन पंक्तियों ने जो अकादमी की बरसों से चली आ रही परंपरा है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। ये पंक्तियां विक्रम की भावनाओं, विचारों और कार्यों में रच बस गई थीं। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। युद्ध आरंभ हो गया था। एक जून 1999 को उनकी टुकड़ी कारगिल चली गई। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कई सैनिक अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया। कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन पर कब्जा किया। मिशन 1, दिन 12 जून 1999। कारगिल में तोलोलिंग नामक स्थान पर भीषण युद्ध चल रहा था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोटी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इस चोटी से दुश्मन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार निशाना बना रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वहां लड़ रहे सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। 2 रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हंप पर कब्जा कर लिया। यहीं से विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे, एक पत्र लिखा।
1: प्यारे कुशु, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमासान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन हमारी बटालियन के लिए दुख से भरा है, क्योंकि आज हमने एक अफसर को लड़ाई में खो दिया है। प्यारे कुशु, मां पिताजी को संभालना, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भाई

कैसा था इस युवा सैनिक अधिकारी का हृदय? विजय के उल्लास में भी अपने साथियों को खोने की कसक

0: 2. दिन 19 जून 1999, स्थान 0.5140, 15,000 फीट ऊंची ये वो चोटी थी जहां से दुश्मन हमारे 2 हेलीकॉप्टर गिरा चुका था। इसे जीतना बेहद जरूरी था क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण इस पॉइंट से दुश्मन हमारी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। हमारी सेना के लिए केवल 1 रात का समय था। विक्रम ने अपने सैनिकों को उस पर्वत की खड़ी ढलान पर चढ़ने का आदेश दिया। सैनिक चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ते रहे। सुबह के 3:15 का समय था। हमारे सैनिक शत्रुओं के बंकरों के समीप थे। तभी दुश्मन की ओर से रेडियो सिग्नल आया।
1: शेरशाह, तुम क्यों आ गए बीच में? अरे तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा।
2: 1 घंटे में ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ऊपर कौन रहेगा।
1: अरे देख लेंगे।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मनों के बीच भी इतना नाम था कि वे इन्हें उनके कूट नाम से भी जानते थे। दुश्मन को ये तो खबर थी कि भारतीय सैनिक उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, पर शायद इस बात से वो बेखबर था कि हमारे सैनिक उनके इतने करीब हैं। विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा। 3:24 हो गए थे। 4:30 सूर्योदय हो जाएगा। उनके पास केवल 1 घंटे का समय था। बस फिर क्या था? उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया।
3: हमला करो! दुर्गा माता की!
0: और कुछ ही देर में विक्रम और उनके साथियों ने दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। 0.5140 पर अब हमारा कब्जा था। इस विजय के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा,
4: कैप्टन विक्रम, 0.5140 की विजय के बाद कैसा एहसास हो रहा है?
5: मैं और अधिक चोटियों पर कब्जा करना चाहता हूँ। ये दिल मांगे मोर।
6: क्या बात कही है?
4: ये दिल मांगे मोर। हाउ नाइस। विक्रम जी, आप पर सारे देश को नाज है और हमारी कामना है कि इसी तरह आपका विजय अभियान चलता रहे और चलता रहे।
5: धन्यवाद।
0: इस प्रसारण को पूरा देश देख रहा था। लाखों दर्शकों ने उनका उत्साह भरा उत्तर सुना। ऐसे समय में जब लोगों की आंखें आंसू से नम थी और दिल डर से सहमे हुए थे, विक्रम बत्रा के इस एक जवाब ने सबके चेहरों पर एक मुस्कान छोड़ दी। देश का बच्चा बच्चा अब उन्हें जानने लगा था।

0: आई बारी उस मिशन की जिसने विक्रम बत्रा को अमर बना दिया। मिशन 3 टाइगर हिल्स पिंपल पोस्ट 6 जुलाई 1999 की शाम। 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी।
1: हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा।
2: जी
3: चलो
1: अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
3: जी सर।
1: देखो तुम यही पोजीशन संभालो।
3: जी सर।
1: और तुम दाहिनी तरफ जाओ।
3: जी सर।
4: हमला करो दुर्गा माता की।
0: दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबराकर पीछे हटने लगा था। तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े, उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा।
5: सामजी आप मत जाइए, मैं जाता हूं।
1: नारायण तू भी बचवाला है, पीछे हट।
5: नहीं
1: साहब जी, मैंने कहा ना पीछे हट जाओ।
5: मैं जा रहा हूं।
1: साहब जी
0: अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे, दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी।
1: क्या हुआ तुम्हें?

उन्होंने वीर गति पाई। उस दिन भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया, तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी।

0: आज उस शिखर का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शिखर है। उनके असाधारण शौर्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। याद आती है एक बार फिर वही बात जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र को कही थी।
1: मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोनों वचन निभाए। उन्होंने दुश्मन को पराजित कर भारत के झंडे को 0.5140 पर फहराया और 0.4875 नंबर शिखर पर युद्ध में प्राण देकर बड़ी शान से तिरंगे में लिपट कर घर आए।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैप्टन विक्रम बत्रा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा उमंग। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 102.3 MHz पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: राम राम।
1: नरेंद्र भाई आपने भी राम राम और कार्यक्रम
0: फोन इन कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भैया ने भी राम राम।
1: जी आज वीरवार है और किसान वाणी कार्यक्रम के अंतर्गत सारे बाण भाई सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम। और फोन इन कार्यक्रम का जो विषय रहेगा वो बता दें हम भैया ने, गर्मी के मौसम में हरा चारा प्रबंधन विषय एक बार फिर से नोट करें, गर्मी के मौसम में हरा चारा प्रबंधन। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सतपाल। आप सहायक वैज्ञानिक हैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में। और नरेंद्र भाई बता दिया है कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
0: और भैया अपना जो फ़ोन नंबर रहेगा वो है 0162-97-827, एक बार फिर बता दें 0162-97-827 पर आप फोन कर सके हैं। प्रस्तुत करता है पवन कुमार जी और तकनीकी सहयोग कर रहे हैं सतवीर सिंह।
1: और एक बार फिर सारे बाण भैया ने रिक्वेस्ट करांगे, प्रार्थना है आपसे निवेदन कि आप विषय से संबंधित सवाल पूछें ताकि जो दूसरे भाई अपना फोन नंबर मिला के डॉक्टर साहब से बात करना चाहे हैं उनका भी नंबर आ सके। विषय एक बार फिर बता दें हाँ, गर्मी के मौसम में हरा चारा प्रबंधन। तो डॉक्टर सतपाल जी आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार जी, सभी किसान भाइयों को राम राम।
1: डॉक्टर सतपाल जैसे कि आज का हमारा विषय है गर्मी के मौसम में हरा चारा प्रबंधन, तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि चारा प्रबंधन का पशुपालक भाई को भाइयों के लिए क्या महत्व है।
2: किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं कि हरियाणा जो है उसमें खेती के साथ साथ पशुपालन एक मुख्य व्यवसाय है
1: जी।
2: और हरियाणा में करीब 88 लाख के करीब पशु हैं और पशुओं के लिए फिर जो चारा है उसका सारा वर्ष एक उपलब्धता बहुत ही जरूरी है, हरा चारा, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा पोषक तत्व होते हैं
1: जी।
2: और उससे ही जो है पशुओं को पोषण मिलता है, तो इसलिए गर्मियों के मौसम में लेकिन हरे चारे की कमी आ जाती है, उसके लिए एक विशेष योजना इस तरह की बना सकते हैं किसान भाई। तो गर्मियों की चारा फसलें जैसे ज्वार है, बाजरा है, मक्की है, नेपियर हाइब्रिड घास है, लोबिया है, तो इनमें ऐसे इस तरह का वो अपना फसल चक्र अपना सकते हैं जिससे कि गर्मियों के मौसम में पशुओं को लगातार हरा चारा मिलता रहे
1: जी।
2: तो किसान भाई जैसे 20 मार्च के आसपास 15 मार्च से ही अपनी फसलें लगाना शुरू कर देते हैं गर्मी की, उसमें ज्वार है, बाजरा है, मक्की है, तो गर्मियों की सीजन की फसल वो लगा देते हैं। तो उसके बाद जैसे किसी किसान भाई ने 15-20 मार्च के आसपास जो फसल लगाई वो 15 मई के आसपास जो है उनको एक कट दे देती है, क्योंकि ज्यादातर किसान भाई जो पशु रखते हैं, डेयरी चलाते हैं, वो ऐसी फसलें लगाते हैं जो कई कई काट दें, मतलब 3-4 कटाई दे दें और 2 महीने के अंतर पे उनको चारा मिलता रहे, तो वो इस तरह की फसलों को ज्यादा उनके उसमें रहता है। तो उसके लिए वो फिर जैसे ज्वार लगा देते हैं मल्टी कट, तो उसके हिसाब से पहला कट लेने के बाद जैसे मान लो 15-20 मार्च के आसपास उन्होंने लगाई और फिर अब 15-20 अप्रैल और फिर मई 2 महीने के बाद उन्होंने 20 मई तक कट ले लिया पहला
1: जी।
2: उसके बाद सबसे जरूरी बात यह है कि जी उसमें वो पानी लगा के और यूरिया खाद डाल दें।
1: डॉक्टर साहब एक फोन आ गया है कार्यक्रम ले लेते हैं। हेलो।
3: हेलो।
1: हाँ जी
3: आज अरविंद
1: जी, अरविंद जी स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए।
3: ज्वार का बढ़िया बीज कौन सा जी?
1: जी डॉक्टर साहब
2: ज्वार का जी इसमें एक कटाई, दो कटाई और कई कटाई वाली किस्में भी उपलब्ध हैं। अब जो जैसे कई किसान भाई वो लगाते हैं कि जो कई कई कटाई दे देती हैं, एक CSV 33MF किस्म है ज्वार की जो अनंत नाम से भी आती है, उसकी खासियत ये है कि जैसे आप अभी लगा दोगे तो वो आपको कटाई देती रहेगी 2 महीने पे पहला कट और फिर 1.5 महीने के अंतर पर कटाई देती रहेगी उसमें, पर ये है कि वो बहुवर्षीय एक किस्म है, मतलब एक बार लगा दिया आपने तो 3-4 साल तक चलेगी, तो डेयरी जो पशु रखने वाले किसान है वो इस किस्म को ज्यादा उनको अच्छा मानते हैं। या उसके अलावा जो दूसरी किस्में हैं जैसे HJ 541 है, एक कटाई वाली है, CSV 53F है, CSV 64F है, इनमें से भी कोई सी मिल जाए आपको, CSV 41 है, और अगर आप मल्टी कट दूसरी देखना चाहें जो 3-4 कटाई देती है उसमें CSV 20MF है, CSV 24MF है, तो इनका बीज किसी का भी मिल जाए, क्योंकि सरकारी स्तर की जो एजेंसी है जैसे NSC है, विश्वविद्यालय है, तो उनमें से आपको जहां से बीज मिल जाता है आप उसी हिसाब से उसका प्रबंधन कर सकते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है जो एक कटाई वाली किस्म है उसको हम 75-80 दिन में काटते हैं, और जो कई कई कटाई देने वाली किस्म है उसको खास तौर से हम पहला कट उसका 60 दिन पे लेते हैं।

0: और उसके बाद के कट 45-45 दिन के अंतर पे लेते रहते हैं। और ये जो अनंत नाम की मैंने किस्म बताई, ये बहुत ही खास है, क्योंकि ये 3-4 साल तक आपको हरा चारा दे देगी। मतलब आपको बार बार बोने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने बोया और उसके बाद कटाई लेते रहे। पर ये जरूर है, जब भी आप कटाई लें उसके बाद आप इसमें यूरिया का छींटा जरूर दे दें, क्योंकि यूरिया अगर आप डाल दोगे तो उसके हिसाब से फिर आपको इसमें बढ़वार अच्छी मिल जाएगी। जैसे 20 किलो के करीब जो है नाइट्रोजन हम इसमें रिकमेंड करते हैं, और उसमें फिर जो नाइट्रोजन है ये एक बार छींटा आप कटाई के बाद पानी लगा के जब छींटा दे देते हैं तो उसके बाद बढ़वार इसकी अच्छी हो जाती है। और एक जरूरी बात जो किसान भाई ध्यान रख सकते हैं कि ज्वार जब हम लगाते हैं तो उसके 1 महीने तक तो उसमें थोड़ा जहरीले तत्व बनते हैं, वो प्रकृति की एक बचाव की एक उसका तरीका है, तो उसमें किसान भाई उसको 1 महीने के टाइम पे या काट के ना खिलाएं पशुओं को, तो कम से कम 1.5 महीने बाद ही काट के खिलाएं, नहीं तो उससे पशुओं को नुकसान हो सकता है। और सोके में ना आने दें फसल को, वो पानी दे दें, और या फिर अगर आपकी मजबूरी है काट के खिलाना तो उसको काट के डाल दें और 4-5 घंटे डली रहने दें धूप में, फिर उसका जो जहरीले तत्व है उड़ जाते हैं। इसलिए किसान भाइयों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो चारा वो पशुओं को खिला रहे हैं वो अच्छा हो और पशु के स्वास्थ्य पे उसका अच्छा प्रभाव पड़े।
1: जी, तो डॉक्टर साहब बहुत ही आपने ज्वार के बीज की बात हो रही थी और अच्छी विस्तृत जानकारी आपने किसान भाइयों तक पहुंचाई है। और अब डॉक्टर साहब ये जानना चाह रहे थे कि हरा चारा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यानी कि हरा चारा किस प्रकार से एक पशु में लाभ पहुंचा सकता है।
0: देखो, किसान की अगर हम उनके नजरिए से देखें तो वो पशु से ज्यादा से ज्यादा
1: फोन ले लेते हैं। हेलो। हाँ जी,
2: राम सिंह, राम भूषण कला सिंह
1: जी।
2: ऐसे जी, ऐसे बताओ कोई बढ़िया सा चारा जो कई दिन चले।
0: इसमें हाँ जी बिल्कुल, अभी हम इसका जिक्र कर रहे थे कि जैसे अनंत नाम की किस्म है CSV 33 MF, वो आप एक बार लगा देते हो तो 3-4 साल तक चलती है। ज्वार की किस्म है ये, और उसका बीज बहुत छोटा होता है, 2 ही किलो बीज लगता है 1 एकड़ में, और वैसे 2 किलो बीज 1 एकड़ में जी।
2: अच्छा, 2 किलो?
0: हाँ, 2 किलो दाना बहुत छोटा होता है जी इसका, CSV 33 MF। अनंत नाम से भी इस किस्म को जानते हैं क्योंकि वो खूब कटाई देती है। शुरुआत में इसकी बढ़वार बहुत धीरे होती है, कई बार किसान भाई भी समझते बोला ये तो चल ही नहीं रही, इसमें तो क्या निकलेगा, तो शुरू में बढ़वार धीरे होगी, उसके बाद फिर खूब कटाई देती है लगातार। उसके अलावा जो मल्टी कट किस्म है, जिनको हम कई कटाई देने वाली किस्म कहते हैं, उसमें CSV 20 MF है, CSV 24 MF है, अपनी SSG ये 59-3 है, तो इनका दाना भी बीच का सा होता है, तो SSG 59-3 है, इसका 12 किलो बीज डलता है 1 एकड़ में, और वो 20 MF और 24 MF थोड़ी मोटे दाने की किस्म है, उनका 20 किलो तक डल जाता है 1 एकड़ में, तो बीज की मात्रा बहुत ध्यान रखना जरूरी
1: जी। तो डॉक्टर साहब चारे की आवश्यकता की बात कर रहे थे, हरे चारे की क्या विशेष फायदा पशुओं को पहुंच सकता है, खासकर दुधारू पशुओं की जब बात करें तो।
0: हाँ जी बिल्कुल, जब चारा अच्छा होगा तो। हेलो
3: मलापर गांव से बोल रही बलवीर।
1: हाँ जी, कौन से गांव से?
3: मलापर गांव से
1: जी। मलापर से बलवीर जी, स्वागत है आपका। सवाल पूछिए।
3: मैं ये पूछना चाहूँ की डॉक्टर साहब, जैसे अपने रेतीली जमीन है, रेतीली जो बालूमती का जापा, तो उसमें ज्वार के राग भी सही?
1: रेतीली मिट्टी में ज्वार का उत्पादन हो सकता है डॉक्टर साहब?
0: हाँ हो सकता है जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बस उसमें ये है कि हम खाद वगैरह उसमें कम ही डालते हैं, कि जैसे जो अपनी वैसे जमीन में हम खाद डालते हैं उसमें, इसके मुकाबले हम बार बार करके डाल देते हैं, जैसे क्योंकि रेतीली जमीन में क्या है कि हमने अगर 20 किलो यूरिया 40 किलो एक बार डाल दिया तो वो एकदम से जितना पौधा उसको यूज करेगा बाकी सारा जमीन में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो उसमें क्या है हम उसी खाद को 2 बार में डाल देंगे जिससे कि पौधे को ज्यादा ज्यादा मिले, तो इन बातों का एक खास ध्यान रखना जरूरी है। बाकी आप जो चारे की फसल है उसमें एक समय पे पानी लगाते रहें, सोके में ना आए फसल, तो बहुत ही बढ़िया आपका चारे की फसल चलेगी। ज्वार लगाओ आप, हाँ बिल्कुल चलेगी जी। जो रेतीली जमीन है, जहाँ जो कमजोर जमीन है वहाँ बाजरा भी लगा देते हैं चारे के रूप में, ज्वार भी खूब चलती है। ज्वार में ये खास बात है कि अगर आपको मान लो पानी की कमी भी आ गई तो भी ज्वार की बढ़वार रुक जाएगी, पर वो मरेगी नहीं, पर मक्की का जो चारा है उसमें ऐसा नहीं होता।
3: ट्यूबवेल का पानी अगर मान लिया तो बस कोई दिक्कत।
0: हाँ बिल्कुल, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप पानी चेक भी करवा सकते हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की जो मृदा विज्ञान विभाग है वहाँ लैब है, वहाँ मिट्टी पानी की जाँच भी होती है। तो अगर वैसे तो ऐसी दिक्कत आती नहीं, पर अगर आपको लगता है कि पानी खारा है या उसमें कोई समस्या है तो आप बीच बीच में कभी एक आधी बार अगर उसकी जांच करवा लें तो उससे आपको और भी अच्छा रहेगा।
3: ठीक है जी, धन्यवाद जी, डॉक्टर
1: जी, धन्यवाद भाई,
3: धन्यवाद
1: जी। डॉक्टर साहब, चारे की आवश्यकता की बात कर रहे थे कि किस प्रकार से जो पशु हैं उनको इसका लाभ पहुंचता है।
0: हाँ जी बिल्कुल, हम इस बात पर जिक्र कर रहे थे कि जो चारा है पशुओं के लिए वो, क्योंकि सारा पोषण हरे चारे से मिलता है और हरा चारा बहुत ही लाभदायक है।
4: हेलो
1: हेलो,
4: नमस्कार जी।
1: नमस्ते जी, कौन बोल रहे भाई
4: जी? रामधारी बोल रहा हूँ, दानी के टुकुर से।
1: जी रामधारी जी, स्वागत है कार्यक्रम में
4: जी। धन्यवाद मैडम, मैंने डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि मैंने 25 दिन हो गए ज्वार बीज रखी है खेत में। अच्छा, 5 कनाल में
1: जी,
4: और उसमें डीएपी नहीं बोया शुरुआत में बुवाई करते टाइम, तो क्या अब डाला जा सकता है?
0: हाँ आपने वैसे जरूर डालना चाहिए था जी, क्योंकि जो ज्वार की फसल है ना उसमें 12 किलो जो फास्फोरस है उसकी मात्रा जरूरी होती है, क्योंकि ज्वार की फसल बहुत ज्यादा पोषक तत्व खींचती है जमीन से। अगर आप ज्वार लगा के बाद में अगले सीजन में गेहूं भी लगाओगे तो आप देखोगे कि आपकी गेहूं की फसल बहुत कमजोर सी होगी, क्योंकि ये पोषक तत्व ज्यादा खींचती है। तो आपको इसमें फास्फोरस वैसे तो डालना चाहिए, पर अगर नहीं डाला है तो, क्योंकि फास्फोरस ऐसा तत्व है वो बिजाई के टाइम पे ही फायदा उसका होता है, बाद में कोई फायदा नहीं होता। तो अब आप तो उसमें कोई ना डालें ऐसे 1 महीने बाद। और तो अगर आपकी फसल में ज्यादा कमजोरी हो या ऐसा लगे तो आप उसमें एनपीके का स्प्रे कर सकते हो, जो पानी में घुलनशील खाद होते हैं हमारे, वो बहुत सस्ते आते हैं और उनमें 1% की दर से, या हम यूरिया घोल के 1-2% की दर से डालते हैं। उससे क्या है कि हमारी फसल है वो ठीक ठाक काम कर जाती है, क्योंकि उसकी तो पूर्ति अब हो नहीं सकती थी। जो बिजाई के टाइम पे फास्फोरस डालना था डीएपी के थ्रू जो जाता है वो बहुत ही ज्यादा असर करता है।
4: अभी 25 दिन की ज्वार होगी जी, पहला पानी दे दिया मैंने, तो अब क्या मैं उसमें जैसे कीटनाशक है, जैसे कीड़े की थोड़ी बहुत शिकायत है, तो वो कब मैं इसमें कीटनाशक स्प्रे कर सकता हूँ, कौन से दवाई रिकमेंड आप करेंगे?
0: हाँ वो ज्यादातर देखो कीड़े की थोड़ी, अगर जैसे अब बारिश हो गई तो कीड़ा अपने आप ही चला जाएगा, वो ज्यादा नहीं आएगा। और वो बहुत ज्यादा, क्योंकि क्या है कि जो चारे की फसल है उसमें हम जहरीली दवाइयां कम से कम छिड़कते हैं, क्योंकि वो सीधी पशु के अंदर चली जाती है, जिसका दूध के थ्रू फिर आगे हम ही को नुकसान होता है। तो इसलिए उसमें कम से कम जहरीली दवाइयां छिड़कनी चाहिए। अगर मजबूरी हो तो जैसे मेलाथियान है वो 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसको छिड़कते हैं, क्योंकि वो एक हल्का जहर है ना। कभी
4: और हो जाए तो आप यूरिया खाद दे सकते हैं।
0: हाँ यूरिया खाद जरूर, बिल्कुल बिल्कुल 1 महीने। अब जैसे आपने पानी लगा दिया तो उसके बाद आप यूरिया का छींटा जरूर दें, आपकी फसल एकदम से बढ़वार ले जाएगी फिर। फिर उसमें हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल
1: जी, धन्यवाद रामधारी जी। तो डॉक्टर साहब, चारे के महत्व के बारे में बात कर रहे थे पशुओं के लिए। एक चीज और भी है कि जो पशुपालक भाई हैं वो किस प्रकार से सुनिश्चित करें कि उनके पशु के लिए ये जो चारा है जो उन्होंने, या मिनरल मिक्सचर जो भी उन्होंने बनाया है, कि ये बेस्ट है।
0: बिल्कुल जी, देखो किसान भाई इसको पहले से अगर योजना बना के चले कि सारा साल उनको हरा चारा कैसे उपलब्ध करवाना है, तो वो एक फसल चक्र के थ्रू, जैसे ज्वार बरसीम एक जो फसल चक्र है ना, या उसके बाद।
1: हेलो
5: नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, कौन बोल रहा भाई?
5: कृष्ण स्वामी बोलो जी, गांव बैठिया मेरीपुर में
1: जी। पूछिए सवाल।
5: आज क्या गावी किया था जी
1: आपने? रेडियो देर तक खोलिया है ना?
5: देर तक मैं बाहर
1: न्यू ना करा करो, आप प्रोग्राम, आप श्रोता हो हमारे तो टाइम तो रेडियो खोलिया करो, लेकिन फिर भी आपने बतावा आज का जो विषय है हमारा, गर्मी के मौसम में हरा चारा प्रबंधन। हाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं, कोई सवाल पूछना हो तो पूछिए भाई।
5: सवाल तो जी, ज्वार बो रखी है जी, बेरानी का एक दिन हो गए।
1: बेरानी का एक दिन हो गए आपने?
5: अच्छा बताओगे भावने के जरा जी।
1: नहीं नहीं, कितने दिन हो गए बिजाई करें?
5: बिजाई तो करें जी उतना ही दिन हो गए।
0: बिल्कुल, देखो किसान भाई आपसे हमारा ये भी निवेदन है, आप बीच बीच में अपने खेतों

0: हुकूमत जाते रहे
1: और
0: फसल की संभाल आप करते रहोगे तो बड़ा फायदा होगा। जैसे आप बता रहे हो 15-20 दिन की ज्वार हो गई, तो इसमें एक चीज ध्यान रखनी है आपको, एक महीने की ज्वार जब हो जाती है तो उसमें पानी लगा के एक यूरिया का छींटा जरूर देते हैं हम, उससे फसल की बढ़वार अच्छी हो जाती है। और दूसरी बात एक और ध्यान रखनी है, कई बार जो इतनी जो छोटी ज्वार है उसको पशुओं को नहीं खिलाना, ज्यादा छोटी ज्वार अगर खिलाएंगे तो उससे उनमें थोड़ा जहरीला तत्व होता है, तो आप इसको कम से कम 2 महीने बाद ही काट के पशुओं को खिलाएं।
2: जी डॉक्टर साहब, देखो हम ये कोशिश करते हैं कि कार्यक्रम के माध्यम से इस तरह की जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचाई जाए कि ताकि उनकी जो लागत है फसल की कम से कम आए, और उसके लिए सतर्कता बहुत ज़रूरी है। किसान भाई को भी निगरानी रखनी पड़ेगी अपनी फसल पे, चाहे वो पशु हो चाहे वो किसी भी प्रकार की फसल हो, यानी कि आप कोई भी खेती से संबंधित कार्य कर रहे हैं, कोई कृषि क्रिया कर रहे हैं, कोई व्यवसाय कर रहे हैं कृषि पर आधारित, तो आपको थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और जब भी आपने बेरा पटेगा कि आपकी फसल में इतने दिन बाद आपने कौन सी कृषि क्रिया करनी है, लगातार निगरानी रखें। किसान भाइयों से अनुरोध है अपनी फसलों पर, ताकि अच्छा खासा लाभ आप अपनी खेती से कमा सकें, क्योंकि बहुत मेहनत करे किसान भाई सारा दिन खेती में, चाहे वो डांगर पशु है सर, अपने परिवार की तरह उनने पाला है, फसला ने भी पशुओं ने भी, तो थोड़ी सी भी असावधानी उसमें बड़ा नुकसान कर सकते हैं। तो हरे चारे की बातचीत आप कर रहे थे डॉक्टर साहब, पोषक जो तत्व होते हैं हरे चारे में ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन एक और बात है डॉक्टर साहब, जैसे कि आगे गर्मी में टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, कभी कभार एक फोन और ले लेते हैं। हेलो
3: जी, मैं करण सिंह चौरान गांव शिकारपुर से बोल रहा हूँ जी।
2: जी करण सिंह जी, स्वागत है, नमस्कार आपको भी कार्यक्रम में स्वागत है।
3: आपने ये जो बीज बताए हैं कटाई वाले 3-4 किस्म, ये अपना चाहिए उसे मिल जाएंगे कि जी?
2: ज्वार के?
3: हाँ जी
2: जी जी डॉक्टर
0: जी, किसान भाई आपको मैं बताना चाहूँगा, देखो हमारे जो विश्वविद्यालय में भी जो बीज है वो मेले में काफी बिकता है, उपलब्ध करवाया जाता है, पर अब इस समय तो बीज की मात्रा लगभग नहीं मिलेगी, क्योंकि वो बीज एक तरह से पहले ही बिक जाता है, खत्म हो जाता है जी। तो मार्च तक अप्रैल तक किसान भाई अपना पहले ही अरेंज कर लें। अब जो है कुछ सरकारी संस्थाएं और हैं, वहां से भी बीज आपको उपलब्ध हो सकता है, जैसे NSC है या और जो है ऐसी विशेष कंपनियां जो चारा फसलों का ही बीज बनाती हैं। हाँ, उसमें ये जरूर देख लें कि जैसे हम एक कटाई वाली किस्म लेते हैं तो वो 400 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, या कहो अगर एकड़ में बात करें तो हम 200 क्विंटल प्रति एकड़ उससे चारा मिलता है, और जो मल्टीकट वैरायटी है वो हमारे को 800 क्विंटल तक भी चारा दे देती है एक हेक्टेयर से।
3: एक कटाई का जी?
0: नहीं, एक कटाई का नहीं जी, एक कटाई से तो 100-150 क्विंटल मिलेगा।
3: तीन कटाई देता जी?
0: हाँ, तीन कटाई से उसमें 400-500 क्विंटल तक चारा मिल जाता है आपको एक एकड़ से। और दूसरा जो है वो पेरेनियल किस्म मैंने बताई आपको, जो बहुवर्षीय है ज्वार की, वो तो क्या है एक बार आप लगा दो उसके बाद 3-4 साल तक चलती रहेगी वो, बस दिसंबर जनवरी में उसकी बढ़वार कम होती है, अदरवाइज तो उसका बढ़वार चलती ही रहती है। आप उसमें कटाई करते रहो, पानी दे के यूरिया का छींटा लगाते रहो, बस ये कि बिजाई के टाइम पे आपको उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों तत्व डालने जरूरी है, उसमें 20 किलो नाइट्रोजन, 12 किलो फास्फोरस और 12 किलो पोटास, ये जो है बिजाई के टाइम पे ही जमीन में बो दें या उसी तरीके से डाल दें, तो उससे फिर फसल हमारी पहले से ही अच्छी चलेगी।
3: तो जी DAP के बजाय हम फास्फोरस के 2 थैली गेट दें, एक पोटास का गेट दें, तो ठीक है जी?
0: नहीं, कौन सी थैली डालोगे जी ऐसी?
3: हाँ जी सर,
0: DAP की?
3: DAP के बजाय 2 फास्फोरस के थैली और 1 पोटास का डाल दें।
0: फास्फोरस की कौन सी थैली, वो पानी में घुलने वाली?
3: ना जी, जो 40 किलो की आती है जी।
0: 40 किलो की कौन सी थैली आती है जी? 45 किलो की पैकिंग में आता है खाद, यूरिया।
3: 45 किलो
0: की पैकिंग में तो यूरिया आ रहा है, और वो 50 किलो की पैकिंग में आता है DAP और पोटास जो है। हाँ जी, देखो जो बिजाई के टाइम पे डल सकता है वो खाद तो है, अब खाद अलग अलग तरह के और भी हैं, जैसे NPK 12-32-16 है, यू भी ग्रेड उपलब्ध है, NPK 10-26-26 है, उसमें 10% नाइट्रोजन है, 26% फॉस्फोरस, 26% पोटास भी है, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो इस तरह के खादों को ज्यादा प्रमोट करती है जिसमें संतुलित तत्व हो भाई, जिससे एक दाना भी अगर डलेगा पौधे पे तो उस एक दाने में भी तीनों तत्व होंगे, क्योंकि अगर पौधे को हम बैलेंस, जैसे इसी तरीके से हम ज्वार के साथ लोबिया की लाइनें लगाते हैं, 2 लाइन ज्वार की, 1 लाइन लोबिया की, 2:1 के रेशियो में, तो उसका मतलब यही है कि जी ज्वार से तो हमारे को ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और जो दलहनी

0: चारा है, लोबिया है जैसे, उससे
1: हाँ जी
0: प्रोटीन
1: सर,
0: ज्यादा मिलता है, क्योंकि ज्वार का जो चारा है उसमें 10-1% प्रोटीन होता है और लोबिया में 25% तक प्रोटीन है। तो जिस तरह अपन दाल रोटी खाते हैं, तो रोटी से अपने को कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मिलेगा, दाल से प्रोटीन ज्यादा। तो उसी
1: हाँ जी
0: तरीके
1: सर,
0: से हमको पशुओं के भी पोषक तत्वों का उसी तरह ध्यान रखना पड़ता है जी, जिससे उनको पूरा पोषण मिले और उनकी दूध अच्छा, ज्यादा दूध उनसे मिलेगा हमारे को, और पशु का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। क्योंकि फास्फोरस की कमी अगर हो गई पशु में, तो फिर उनमें लहू मूत्र और दूसरी दूसरी समस्याएं ऐसी आ जाती हैं, वो पशु कमजोर हो जाता है। तो अगर हम अपनी फसल को अच्छे से उगाएंगे, ज्वार है, बाजरा है, मक्की है, चाहे नेपियर हाइब्रिड घास है, या लोबिया है, जो गर्मियों के चारे हैं, उनमें अगर हम पोषक तत्वों का प्रबंधन अच्छे से करेंगे, तो वो जो हमारा चारा है उसमें ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व होंगे और पशुओं को ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व मिलेंगे, पशु का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उनको अलग से जो बाहर से हम सप्लीमेंट, दूसरी दवाइयां और दूसरे जो भाखर या सांद्रण जो खरीद के लाते हैं, उसकी उस पर निर्भरता हमारी कम होगी। तो इसलिए किसान भाइयों से हम बार बार निवेदन करते हैं कि आप अच्छे से जो चारा फसल है उसमें अच्छे बीज का चुनाव करके और अच्छी तरीके से शुरुआत में ही अगर खाद पानी सही डालेंगे, तो हमारा जो चारा है उसमें पोषक तत्व तो बहुत ज्यादा होंगे। अब गर्मियों में जैसे मक्की का चारा भी बहुत अच्छा चलता है, उसकी किस्म है अफ्रीकन टाल या और दूसरी किस्में हैं, तो उसमें जो बीज है हमारा वो करीब 32 किलो बीज हमारा प्रति एकड़ पड़ता है मक्की का जी।
1: जी
0: और अगर हम नेपियर हाइब्रिड घास भी आजकल कई किसान लगाते हैं, उसमें करीब 11,000 जड़ें या स्टेम कटिंग, जैसे गन्ने की कटिंग लगाते हैं, तो
1: हाँ
0: उस
1: जी सर,
0: तरह की हम कटिंग लगा देते हैं, तो उससे भी वो भी एक बहुवर्षीय चारा है। मतलब आपने एक बार लगा दिया जी, उसको बार बार काटते रहो, खिलाते रहो। पहला कट तो 2-2.5 महीने में आता है, उसके बाद तो 1.5-1.5 महीने में आप कटाई लेते रहो। और ये जो चारा है, जैसे नेपियर हाइब्रिड घास है, चाहे हमारी बहुवर्षीय ज्वार है, इनकी बढ़वार दिसंबर जनवरी में एकदम कम हो जाती है, नहीं तो पूरा साल इसमें, और जैसे ही बारिश होती है या पानी समय पर लगाते रहते हैं, तो फिर तो बढ़वार बहुत अच्छी से चलती है। तो इसीलिए
1: जी
0: जी
1: डॉक्टर
0: जी
1: साहब एक बात पूछो जी, मैला थे ना डालें, इससे कोई ज्वार का कीड़ा तो नहीं मरता जी? मैंने 2 बार करके देख लिया।
0: वो इसलिए जी, जैसे कभी कभी हम क्या करते हैं कि किसी जो दवाई की ना डोज कई कई गुना बढ़ा के पहले ही डाल देते हैं, और वो कीड़ा फिर क्या है, रेजिस्टेंट हो जाता है जी,
1: उसने आदत
0: है
1: पड़ जी है
0: आदत पड़
1: फिर।
0: जाती है, वो
1: हाँ
0: मरता
1: तो
0: नहीं है। तो ज्वार
1: ज्यादातर
0: जो
1: तो किसान जी साइपर का करते हैं, इसको
0: हाँ,
1: 30-40 ग्राम ग्रामीण
0: वो
1: गन्ने की।
0: मजबूरी में करना पड़ जाता है ना जी। देखो
1: हाँ जी
0: हमारी जो
1: सर,
0: चारा फसलें हैं उनमें हम यही निवेदन करते हैं कि जहरीली दवाइयां कम से कम डाली जाएं, तो उसमें वो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। तो जैसे हम बीज जब बोते हैं तो उसमें 10-20% बीज ही मात्रा ज्यादा डाल देते हैं, भाई कुछ पौधे मरेंगे तो भी हमारे पौधे उतने रह जाएं जितने हमारे को चाहिए थे। तो दस
1: हाँ जी सर,
0: प्रतिशत के करीब बीज पहले ही फालतू डालते हैं चारा फसलों में, भाई
1: हाँ जी
0: पौधों
1: सर,
0: की संख्या ठीक रह जाए, कोई 10-20% पौधे मरते हैं तो भी हमारे को ज्यादा दिक्कत नहीं आती। और फिर उसमें जब ज्यादा समस्या आती है, तो देखो मेलाथियान की सिफारिश है, पर वो कहीं मजबूरी हो जाए तो साइपर भी दवाई इसमें कहीं कहीं यूज करते हैं किसान भाई। और
1: हाँ
0: चारा
1: जी सर,
0: फसलों में दूसरा आपसे यही निवेदन है कि चारा फसलों में कम से कम जहरीली दवाइयां डालें। और एक चीज का और विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपने दवाई डाल भी दी, तो उसके 7 से 10 दिन 15 दिन बाद ही चारा पशुओं को खिलाना है।
1: जी
0: मतलब कभी कभी ऐसी गलती कर देते हैं किसान भाई, आज स्प्रे करा है और कल परसों काट के चारा खिला दिया। तो इस तरह की चीजें ना हो, क्योंकि वो जहर सीधा पशु के अंदर जाएगा और फिर वो दूध के माध्यम से वो ऐसी इस तरह चेन में चलता रहेगा, हम जो इंसान है उनको भी प्रभावित करेगा,
1: पशु को भी समस्या हो सकती है आपको
0: पशु को
1: किसी
0: भी
1: प्रकार
0: समस्या
1: की।
0: हो सकती है जी। बिल्कुल
1: जी, तो
0: धन्यवाद जी डॉक्टर साहब
1: जी,
0: आपका बहुत।
1: धन्यवाद धन्यवाद आपका। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि अब गर्मियों का मौसम है तो हरे चारे की उपलब्धता कम हो जाती है, आपने स्टार्टिंग में ही बताया था, तो सारा साल हरा चारा उपलब्ध रहे किसान भाइयों के लिए, ऐसी कोई टेक्निक यानी कि फोडर जो कंजर्व है, संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं हरे चारे का?
0: बिल्कुल जी, देखो इसके लिए किसान भाई पहले से योजना बना सकते हैं। एक तो वो ऐसा फसल चक्र अपनाए,
1: जी
0: जैसे भाई ज्वार बरसीम फसल चक्र है, ज्वार उन्होंने लगा दी, उससे कटाई ली, एक कटाई वाली ज्वार है, दो कटाई वाली, उससे कटाई ले ली, उसके बाद फिर वो बरसीम लगा देते हैं, तो बरसीम से 5-6 कटाई मिल जाती है, तो पूरा साल उनका चारा चक्कर चलता रहता है।
1: जी
0: उसके बाद ज्वार के बाद वो जई लगा सकते हैं, ज्वार के साथ लाइने लोबिया की भी लगा सकते हैं, उसके बाद फिर बरसीम लगा सकते हैं। उस

0: के अलावा मक्की लगा सकते हैं गर्मियों में और खरीफ में, उसके बाद बरसीम लगा सकते हैं
1: जी।
0: या फिर नेपियर हाइब्रिड घास है जो, उसमें हम बीच लाइनों में ही जैसे नेपियर हाइब्रिड घास लगाते हैं तो उसमें अंत फसलीकरण करते हैं, भाई एक लाइन है नेपियर हाइब्रिड की, दूसरी लाइन 1.5 मीटर का फासले पर।
2: हेलो
1: हेलो,
2: हाँ नमस्कार जी, बंसीलाल भट्टू का नाम बोलू, आपके विषय अभी।
1: नमस्कार बंसीलाल जी, आज का विषय हरा चारा।
2: हेलो
1: हरा चारा,
2: अरे सर आप बताओ भी, कुछ बताओ अरे सर बारम दी।
1: कितने पशु ले रहे हो?
2: हेलो,
1: पशु कितने हैं आपके पास?
2: पशु तो एक 3 ही अभी।
1: तो हरा चारा आप डालते हो क्या अपने पशु को?
2: हाँ डालना जी।
1: तो कौन सा लगा रखा है, पूछो डॉक्टर साहब से क्या पूछना है।
0: कौन सा चारा लगा रखा है जी अभी आपने? ज्वार।
2: नमस्कार नमस्कार डॉक्टर साहब जी, तो बाजरा बीज रखे जी।
0: अच्छा बाजरा बीज रखा है,
1: तो हरा चारा के कुर ले आओगे फिर पशुओं खातर है, कड़त ले आओगे, प्रबंधन कैसे करोगे? वही डॉक्टर साहब बता रहे हैं,
2: प्रबंध कुकर करा दीजिए फिर आगे
1: बीगो। यही तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हरा चारे का प्रबंधन किस प्रकार तक किसान भाई कर सके। तो बाजरा ला दिया तो मैं और भी कोई फसल ले रहे हो क्या साथ में?
2: नहीं साथ में कौन जी,
0: बाजरा लगा रखा जी। अच्छा है क्योंकि बाजरा भी देखो कम पानी में और फटाफट चारा दे देता है हमारे को, 50 से 60 दिन में ही तैयार हो जाता है, और उसमें भी अगर हम खाद पानी का प्रबंधन ठीक करते हैं तो उसमें अच्छा चारा मिल जाता है हमारे को। तो 2 कटाई वाले बाजरे भी हैं, 1 कटाई वाले भी आप उसके बाद फिर, अब जैसे आपने बाजरा लगा रखा है मान लो एक महीने का आपका बाजरा हो गया, अगले महीने आपका बाजरा खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद आप मक्की लगा सकते हो या ज्वार लगा सकते हो, उसके ज्वार के साथ लोबिया भी लाइन डाल सकते हो थोड़ा सा, तो या नेपियर हाइब्रिड लगा सकते हो। मतलब आपको आगे से आगे एक ऐसा फसल चक्र रखना पड़ेगा जिससे आपके पशुओं को लगातार हरा चारा मिलता रहे, चलो चारे की कमी ना आए। तो ये थोड़ी सी
2: तो,
0: जो प्रबंधन है हमारा
2: सिस्टम करा दीजिए, लगातार रहे रोक रहे।
0: अब जैसे आपने बाजरा लगा रखा है तो बाजरे के बाद आप लोबिया लगा दो, या बाजरा के बाद
2: बड़ बड़ा बाजरा है भारत जल्दी तैयार है, जल्दी हो गया जी, कटन लग रहे डांगरन तरह करा।
0: हां तो बढ़िया है, इसके बाद आप ज्वार लगा सकते हो, मक्की लगा सकते हो, लोबिया लगा सकते हो, या नेपियर हाइब्रिड कोई से भी आप फसल लगा सकते हो। पर एक चीज का जरूर ध्यान रखो, आप ज्वार लगा रहे हो चाहे मक्की, उसमें बिजाई के टाइम पे बीज की मात्रा सही डले। जैसे मक्की लगा रहे हो तो 32 किलो बीज प्रति एकड़ है, अफ्रीकन टाल किस्म है। ज्वार लगा रहे हो तो उसमें भी 20 किलो मोटे दाने वाली ज्वार है तो 20 किलो बीज। अच्छा उसमें फिर
2: नाइट्रोजन,
0: हाँ DAP जरूर उसमें ऐसा है जी, 20 किलो नाइट्रोजन, 12 किलो फॉस्फोरस और 12 किलो पोटास, तो ये आप उसमें जरूर डालो जी बिजाई के टाइम पे। अगर बिजाई के टाइम पे आपने खाद का प्रबंधन कर दिया तो आपकी फसल बहुत तगड़ी रहेगी, उसमें कमजोरी नहीं आएगी, और फिर उसमें एक महीने बाद पानी देके फिर यूरिया का छिट्टा और दे दो
1: जी। डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया जानकारी आपने हरे चारा प्रबंधन के बारे में दी है, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया मिश्रित खेती का विकल्प जरूर अपनाओ किसान भाई, और साथ साथ जो है कि फसल चक्र, एक पर्टिकुलर फसल चक्र लें जिसमें कि सारा साल जो है आपके लिए पशुओं के लिए हरे चारे की उपलब्धता हो। नरेंद्र भाई और एक निवेदन और करांगे छोटा सा भाई, आते हैं आज 2-3 फोन ही से आए कि भाई ने कहा जी विषय बताओ जी, हम आपसे अनुरोध करते हैं बार बार कि जब भी आप रेडियो खोलो खोलते ही फोन ना मिलाओ, 2 मिनट सुनो, आपका बेरा पटेगा किस प्रकार का विषय है, किस तरह की बातचीत चल रही है, ताकि एक ही सवाल का डॉक्टर साहब को बार बार जवाब ना देना पड़े। निवेदन है हम कार्यक्रम के शुरुआत में भी आपसे बार बार कहा हाँ कि विषय नोट कर लें, विषय नोट कर लें, और कार्यक्रम सुन के फिर आप फोन मिलावें, ताकि जो दूसरे भाई हैं वो भी अपना समय जो है उनको भी डॉक्टर साहब अपना कीमती समय दे सके और जानकारी हर किसान भाई तक पहुंचा सके, क्योंकि यही हमारे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। तो डॉक्टर सतपाल जी आप हमारे स्टूडियो में आए और किसान भाइयों को इतनी ज्ञान लाभ की जानकारी आपने उपलब्ध करवाई, इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अंजुबानी देखो घड़ी सारा करने लग रही है
1: जी,
3: और थोड़े चंतराल के बाद फिर मिलेंगे हमारे गांव में।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमारे गांव।
1: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: ये आवाज है भारत के स्वतंत्रता संग्राम की। ये आवाज है भारत की आजादी की।
5: At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
4: ये आवाज है भारतीय संस्कृति की।
6: पधारो
4: ये आवाज है अनेकता में एकता की।
7: मिले सुर मेरा तुम्हारा।
4: ये आवाज है भारत के अदम्य साहस की।
8: At 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range.
4: ये आवाज है नए भारत की। 90 वर्षों से भारत की आत्मा की आवाज, आकाशवाणी।
9: अंजुबाण राम राम।
10: राम राम भाई, फिर तो स्वागत करा सारे बाण भाइयों का हमारे गांव में, और स्वागत फीका को नहीं करा भाई, जानकारी का एक जोटा हलाग लिया है और इब मनोरंजन करवाओगे। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे रणबीर सिंह बड़वासनिया की गाई इस रागनी के साथ।

0: ये तो सुनी रागनी रणबीर बडवासनी और पासी नेगेर की आवाज़ में। और आज देखो है ना, बड़ा ज्वलंत मुद्दा है सोशल मीडिया का
1: जी,
0: किस तरह उसका दुरुपयोग हो रहा है, किस तरह का बच्चों के ऊपर कुप्रभाव पड़ रहा है। और समाज में है ना बहुत सी भ्रांतियाँ कई बार आप देखा सोशल मीडिया के द्वारा फैलाई जाती हैं, और जिसका आम आदमी ने बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण की बात होती है, कई बार तो जान तक भी गुवानी पड़ जाए।
1: सोशल मीडिया यानी कि कोई फेसबुक के माध्यम तक, कोई इंस्टाग्राम, ट्विटर है, यूट्यूब है, इसके माध्यम तक कोई आप जानकारी ले हो, उसने फैलाव हो, देखो हर तरह की जानकारी हर मीडिया के सोर्स पर उपलब्ध हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है नरेंद्र भाई की इसके निरे नुकसान है,
0: फायदे
1: भी
0: हैं, बहुत हैं,
1: लेकिन उसको तरीके से जब इस्तेमाल कराया जाओ। देखो टेक्नोलॉजी कोई भी हो, उसके दोनों पक्ष हैं, बुरा भी है और अच्छा भी है, लेकिन आपने ये निश्चित करना पड़ेगा, एक सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी कि आपने कितना यूज़ करना है, कितना इस्तेमाल करना है उसका, और कैसे उसका इस्तेमाल करना है। देखो सबसे पहले तो आप नेगेटिविटी की तरफ क्यों जाओ, आप पहले फायदे की बात करांगे कि फायदे सोशल मीडिया ते युवा पीढ़ी है या कोई भी है, कोई गृहिणी है, कोई बुजुर्ग है, किस प्रकार ते ले सके। अब मान लो उसके लाभ की जब बात करें, तो अगर मान लो व्हाट्सएप की बात करी आपने, कितने भी आपका यारा प्यारा रिश्तेदार भाई बंधु बहन बुआ चाचे ताऊ कितने भी हैं, एक मिनट में आपने जानकारी पूछे, एक मिनट में आपने हालचाल मेरा पट जे,
0: बिल्कुल
1: मेरा पट जे कि नहीं, विदेशों में भी अपना कोई रिश्तेदार है तो यूट्यूब उसके वीडियो कॉल के माध्यम से आप तुरंत उसका हालचाल जान सके, उसकी जानकारी ले सके हैं, किसा है, परिवार के बारे में जानकारी। तो वो जो पहला बिना बिना साल साल तक ही जो कोई कॉन्टेक्ट को नहीं आया करता, किसी भी प्रकार का जो कम्युनिकेशन को नहीं आया करता, वो तो सीमाएं हट गई ना ही।
0: बिल्कुल देखो ये तो फायदे हैं आपकी, बिल्कुल बात सही है कि आपने सेकंडा में आपके तक वह बात पहुंच जाए, चाहे दुख की बात हो चाहे सही बात हो। और जैसे मान लिया आपने कहा कि हाल चाल पूछना है, मान लिया कोई अपना बूढ़ा बुजुर्ग है, कोई बाहर रह रहा है, तो आप उसको सीधा उसका चेहरा घर बैठे देख सका, ये तो एक बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं,
1: अच्छी बात है। एक और अच्छी बात आपने बताऊंगी कि मान लो कोई बच्चा कुछ काम करना चाह रहा है, या कोई ऐसा प्रकार का कोई उद्योग या कोई काम धंधा कर रहा है कि जिसने उसने जानकारी, जैसे कोई मार्केटिंग की कोई विज्ञापन देना है उसने, या कोई भी ऑनलाइन युवा पीढ़ी की जहाँ बात करें आजकल ऑनलाइन शॉपिंग, शॉपिंग मतलब खरीदारी करनी है या कोई उत्पाद बेचना है, तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से तुरंत आपका उत्पाद के बारे में जानकारी बन। तो जो मीडिया है, टेक्नोलॉजी है, आईटी जिसने कहा है, इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर की सहायता, तो पूरा विश्व जो है एक गांव का रूप ले लिया पूरे विश्व में। ईब जो आप धड़ाधड़ ऑनलाइन जो खरीदारी करा, हाँ बहुत सारे उत्पाद हैं उनकी, और मिनटा का हिसाब था आपने बेरा पट जे है कि यू प्रोडक्ट इतनी कीमत पर उपलब्ध है, यू इसका ब्रांड है, लेकिन आप अन्य तो कौन बेरा यू पढ़ा कड़ा है,
0: बिल्कुल
1: पूरी दुनिया में चाहे कितने भी कोई प्रोडक्ट बन रहा हो पहुंच तो सारा जाओ है। तो कोई विज्ञापन का या किस प्रकार की मशहूरी आपने करनी है या कोई

0: एक कहीं पर मान लिया जो कर पीछे है, जो अपनी स्थिति थी दुनिया में, सारा देश बंद था, तो
1: जी
0: घर बैठे बच्चों को पूरी जानकारी मिल जाती। और आज शिक्षा का माध्यम है ना, इतना बढ़िया प्रारूप रूप ले लिया इस समय, हम कहीं से बैठ के कहीं भी कोई भी शिक्षा का फायदा उठा सका, नई जानकारी ले सका, तकनीकियों का फायदा भी है। लेकिन तकनीकियों के फायदे के साथ साथ ना उनके जो दुरुपयोग है वो गलत है।
1: दुरुपयोग भी हैं, लेकिन इससे जागरूकता भी आवा है और सामाजिक जितने भी कोई कार्यक्रम हो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ने हो तो जानकारी तुरंत प्रभाव से पहुँचे हैं। और नुकसान की जब बात करें, ये तो थे फायदे, लेकिन ये फायदे जद होंगे जद अगर किसी बच्चे के हाथ में कोई गैजेट है, कोई फ़ोन है या कोई लैपटॉप है, जो जो भी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ, इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई भी संसाधन है, तो ये सुनिश्चित करें कि बच्चा क्या देख रहा है, बड़ों की निगरानी में उसका देखा। आपने पढ़ाई की बात करी कि ऑनलाइन अगर पढ़ाई स्टडी कोई बच्चा कर रहा है, कोई क्लास ले रहा है, कोई वीडियो देख रहा है किसी सब्जेक्ट की, तो वो एक बार माता पिता नज़र ज़रूर डालें कि के देख रहा है बच्चा और कितना, मतलब सारी चीज़ है उसमें, अच्छा भी है बुरा भी है, तो
0: बिल्कुल
1: निगरानी में अगर करेंगे तो उसके नुकसान कम होंगे। अब बात आती है नुकसान की, कि सोशल मीडिया के जो नुकसान है वो के किस प्रकार, तो उसका है सबसे बड़ी बात, तो आपने मान लो मनोरंजन का साधन भी है आज के टाइम में सोशल मीडिया, तो अगर आप उस पर फोन लेके बैठ गए तो एक बार बैठे आपने मेरा एक 2 घंटे के ऊपर
0: हाँ,
1: लगा
0: दो
1: दिया,
0: घंटे का एक चार
1: उसमें
0: घंटे
1: आप भी शामिल हो, मैं भी
0: बिल्कुल
1: शामिल हूँ, बट बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। चलो बुजुर्गों को तो थोड़ा टाइम पास के लिए कोई भाई कोई कार्यक्रम देख लिया, कोई चुटकुला कुछ भी अपना मनोरंजन
0: हाँ
1: कर लिया
0: बिल्कुल
1: उसके माध्यम से, लेकिन जो बच्चे हैं जिनका पढ़ाई का समय है वो अगर ज्यादा देर सोशल मीडिया पर रहेंगे तो वो उनके टाइम समय की बर्बादी है, और अगर कुछ गलत आपने क्लिक कर दिया उसके ऊपर तो फिर वो आपका ध्यान भी भटका सकता है,
0: बिल्कुल
1: मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा है सारा दिन आपके दिमाग में, क्योंकि दिमाग खाली नहीं रहता, आपका सोने का टाइम है, आपका खाने का टाइम है, खांदे भी फोन लेटे हैं आप सोने के लिए, जिद भी फोन उठ दें फिर फोन चेक करना, तो एक मानसिक दबाव आपके दिमाग पर रहता है जो आपकी मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सके। इसके अलावा समय की बर्बादी की आपने बात कर ली, शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव है, लगातार आपने स्क्रीन आप देखोगे तो आपकी आंखों पे तो बुरा असर पड़ेगा पड़ेगा, कभी गर्दन सर्वाइकल स्रोत की आजकल दिक्कतें हो रही हैं, आंखों की रोशनी का कम होना, कमर का दर्द और खराब जो है पाचन क्रिया, क्योंकि आपका ध्यान तो खाने का स्वाद तो आप ले ही नहीं रहे,
0: बिल्कुल
1: फोन में
0: बिल्कुल
1: ही
0: आप
1: है
0: फोन फोन में आनंद ले रहे हो सिर्फ।
1: जी, तो वो सबसे बड़ा है नुकसान है आपके लिए, आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पर बुरा असर पड़ा है। और युवाओं के लिए जिनका समय बहुत कीमती है, पढ़ाई का समय है, अपने करियर अपने भविष्य बनाने का समय है, तो उनके लिए समय की बर्बादी।
0: तो अंजू देखो, समय की बर्बादी तो ठीक है, लेकिन इन्हें भाई बाट भी देखना लगा रहा हूँ कि मनोरंजन भी कराऊंगे,
1: जी
0: लेकिन सुनेंगे एक और रागनी।

0: नरेंद्र भाई रागनी सुनी भैया ना रणबीर बड़वासनी आवाज साथियों की आवाज में, और आप बातचीत कर रहे थे सोशल मीडिया के लिए चुनौतियां। देखो सबसे बड़ी चुनौती तो एक तो जो झूठी फेक अफवाहें जो हैं वो बहुत आम हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और इसमें फिर कई बार जो है आपके साथ धोखा भी हो जाए, आपका डेटा भी चोरी हो जाए, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी निजता का भी उल्लंघन इसमें कई बार देखने में आवे है। तो इस तरह की जो खबर है उन पर ज़्यादा ध्यान न दें, पहले उन्हें वेरीफाई करें या सही है या नहीं, उसके बाद किसी भी इस तरह का कोई मैसेज आओ तो उसने आगे पहुँचावें। और जो साइबर सिक्योरिटी है उसका थोड़ा सा ध्यान रखें, आपने जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में कि किस प्रकार से आप अपने जो आंकड़े हैं प्राइवेट आपके निजी जो जो भी आपके बारे में इन्फॉर्मेशन है चाहे कोई इमेजेस है उसको आप संभाल के रखें, और ऐसे ही न्यू शेयर ना करें किसी भी ग्रुप में, तो उसमें आपने बहुत बड़ा नुकसान कई बार उठाना पड़ सके है।
1: और कई बार तो जो आप देखा अपने जो जैसे बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके पास भी इस तरह का मैसेज आ जाएगा कि आपको कि आय दुगनी हो जाएगी,
0: ऑनलाइन फ्रॉड,
1: ऑनलाइन फ्रॉड, इतना फ्रॉड है, और कई बार तो पूरे पूरे खाते खत्म हो जाए लोगों, और बेचारों को ये भी नहीं पता उसकी शिकायत कहाँ करनी है।
0: हाँ तो थोड़ा सा साइबर क्राइम के बारे में जानकारी लें और कहाँ उसकी शिकायत करें, किस प्रकार से उससे बचा जा सका है, इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो हर चीज़ के देखो नरेंद्र भाई फायदे भी हैं नुकसान भी हैं, लेकिन आपको नुकसान से किस प्रकार से बचना है, कैसे उसका इस्तेमाल करना है, इन सब बातों का, और अपने बच्चों को भी इस बात की जानकारी दें और बच्चों पर नज़र रखें कि बच्चा के देखा है, कितनी बार देखा है, और किस प्रकार से उसने बतावा कि क्या क्या देखना है आपके लिए, कितनी समय के लिए आपने देखना है, ताकि उसके समय की बर्बादी ना हो और गलत दिशा में बच्चा ना जाए।
1: तो बिल्कुल समय का भी आपने भी ध्यान रखना जरूरी है, और ये घड़ी सारा कर रही अपने भाई नरेंद्र कौशिक ने
0: और अंजु दोहन को दे इजाजत सारे बाण भाई ने,
1: राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे गांव। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजे हैं, आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने। तो दोस्तों उठाइए फोन और हमें मैसेज कीजिए। हमारा नंबर है 972-925-3272-97-292-53-272। शुरू करते हैं सिलसिला आपके मैसेजेस का। सबसे पहले जो मैसेज आया हमारे पास वो पहुंचा है हमारे पास गांव नथाना पंजाब से। हरजिंदर शिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता हैं। इस मैसेज को भेजने वाले चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी, पप्पू मैक, सुनीता रानी जिंदल, आरजू, पप्पू खुशदिल, हंसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति, संजीव बंटी जिंदल।

दल और पूरा खुशदिल परिवार जो है वो हमें मैसेज भेज रहा है। अगला मैसेज हमारे पास आया है भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार हैं इस मैसेज को भेजने वाले। ग्राम दुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू और युवराज साहू जुड़े हैं हमारे साथ। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां और उनका पूरा परिवार आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से इस वक्त हमें सुन रहा है। गांव फांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी ने हमें मैसेज किया है। मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर, मोहल्ला हलवाइयान, शेरकुट, बिजनौर से जुड़ गए हैं हमारे साथ। हीरा वाली फाजिलका पंजाब से, सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा जो हैं वो भी इस वक्त हमें सुन रहे हैं। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय, दुबिया नेवादा, जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय ने हमें मैसेज किया है। गांव बांडी वाला फाजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा भी इस वक्त हमें सुन रहे हैं। ग्राम डाकघर निमनाबाद, जिला जींद, हरियाणा से जसवीर सिंह, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और कमरजीत कौर ने हमें मैसेज किया है। और मैसेज आपके बहुत सारे आ गए हैं और आ भी रहे हैं। करणवीर हाउस भुच्चों कैंचियाँ, बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन और अभिजोत ने हमें मैसेज भेजा है। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार इस वक्त हमारे साथ है। मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता जो है वो हमें सुन रहे हैं। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिवेंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष ने हमें मैसेज भेजा है। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्य मल्होत्रा, सुचा सिंह पाठक, विनोद पुरी और जयपाल यादव ने भी हमें मैसेज भेजा है। आपने अभी तक नहीं भेजा है तो उठाइए फ़ोन और हमारा नंबर नोट कीजिए 9729253272 यानी 9729253272। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने आकाशवाणी हिसार एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर मेरे यानी आनंद के साथ मैसेजेस आपके हम तक पहुंच रहे हैं। यदि आप अभी तक नहीं भेज पाए हैं तो उठाइए फ़ोन और नंबर हमारा नोट कीजिए 9729253272 यानी 97292-53272। राजू अग्रवाल विवेक प्रियांशी चौधरीवास से इस वक्त हमें सुन रहे हैं। अगला मैसेज हमारे पास आया है सुरेश पूनिया, डॉक्टर सोनू, अनिल कुमार उर्मी और पवन जी का हिसार से। वीपीओ ढाणी गोपाल डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से डॉक्टर सुशीला कासवान, डॉक्टर दीपांशु, दीक्षा कासवान, महावीर और उनका पूरा परिवार इस वक्त हमें सुन रहा है। लोकू कॉलोनी लोहारू हरियाणा से बिल्लू सिंह चिंदालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार, बरखा, योगेंद्र, नरेंद्र चिंदालिया ने हमें मैसेज किया है। विलेज कुकर थाना सिरसा हरियाणा से रविंद्र पनिहार, नायरा, यश, पूजा, सीरत, भूमि, पायल, अंजलि और सुशीला देवी भी इस वक्त हमारे साथ हैं इस कार्यक्रम में। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा, यश और प्रियान वर्मा हमें सुन रहे हैं। इनका मैसेज आया है कि आपकी प्रस्तुति को मैं लाइव सुन रहा हूं और शुक्रिया अच्छे गाने बजाने के लिए। गाने तो आपकी ही पसंद के हैं, मैं तो सिर्फ प्ले कर रहा हूं आपके लिए। दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति, गम्हारिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति, देव कुमार और अजय कुमार ने मैसेज किया है। अगला मैसेज हमारे पास आया है बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरित रमेश साहू का, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य और परमानंद आर्य ने हमें मैसेज भेजा है। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया।

0: निशानी और निमित आहूजा जुड़े हैं इस वक्त हमारे साथ इस कार्यक्रम में। अगला मैसेज हमारे पास आया है बबूरी बाजार चंदोली से, विजय जायसवाल और सरोज जायसवाल हैं लिखने वाले। गांव पनिहार चक हिसार से विनोद, साहिल, कृष्णा, कान्हा, लड्डू, ममता और समस्त दहिया परिवार। कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद ओमकार और साई गायकवाड़ ने मैसेज किया है। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल और निशा भी इस वक्त हमारे साथ हैं। गांव खारिया जिला सिरसा हरियाणा से प्रताप जनागल, इंदिरा, मुकेश, दिनेश, अंशु और बलदेव कटारिया ने मैसेज भेजा है। मलकापुर से नारायण इंगले, सुपान तायडे और आशीष मुरहेकर, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावकर, निर्मला नावकर और विशाल नावकर। नंबर एक बार फिर से नोट कीजिए हमारा, आपके मैसेजेस का मुझे इंतजार है, 9729253272।
1: 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने में। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आकाशवाणी हिसार एफएम बैंड 102.3 MHz पर मेरे यानी आनंद के साथ। यदि आपने अभी तक मैसेज नहीं किया तो उठाइए फोन और मैसेज कीजिए हमें अपना पसंदीदा गाना। हमारा नंबर है 9729253272। मैसेज आया हमारे पास धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू का ईद उल अजहा की उन्होंने मुबारकबाद दी है। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो ईद की। और गांव नंगल खेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बाल कृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा, राहुल शर्मा ने हमें मैसेज भेजा है। अगला मैसेज हमारे पास आया है चंडीगढ़ से शेफाली शेफी, डेविस विमला और सतीश अनेजा है लिखने वाले, मनाली से हर्ष, विनय, विनीत और रोजस। इस समय तो मनाली में बहुत लोग पहुंचे हुए हैं, अभी मैं कल ही देख रहा था कि बहुत भीड़ लगी हुई है मनाली में। अगला जो मैसेज आया हमारे पास सादुल शहर गंगानगर से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ है लिखने वाले, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीरा मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित खुराना, केशु खुराना ने मैसेज भेजा है हमें। अगला मैसेज हमारे पास आया है गांव जाखुद राजस्थान से शंभु दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा ने हमें मैसेज भेजा है। जेल रोड जालंधर से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आसमा कौर और धर्मजीत फातिमा कौर ने हमें मैसेज भेजा है। सरगुजा मैनपाट से असमा थापा, सोनम थापा, फातिमा आसमा, वसीम और अक्रम थापा। झांसी से फकरुद्दीन अंसारी, फर्जी वली अंसारी, फर्जुद्दीन अंसारी और फर्जु वली अंसारी भी हमें इस वक्त सुन रहे हैं। गांव घमड़िया सूरतगढ़ से जगदीश ढुकिया, प्रमिला ढुकिया, ज्योति, सरिता, तमन्ना, सचिन, विष्णु, शिवम ढुकिया और उनका पूरा परिवार हमें सुन रहा है इस वक्त। गंगाधर येमेकर, प्रमोद येमेकर और प्रदीप येमेकर मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिहारी कॉलोनी महासमुंद से मोहम्मद याकूब, आसमा कुरैशी, मोहम्मद यूसुफ, आसमा कुरैशी, जेल रोड मथुरा से सरफुद्दीन बेलदार और कल्लू मल्लू कालिया बेलदार ने भी हमें मैसेज भेजा है। छठिया पोखर डुमराव से फातिमा वली बेलदार, डब्लू वली बेलदार ने हमें मैसेज भेजा है। अगला मैसेज हमारे पास आया है साईं बाबा शिरडी से नवशाद और हसीन हैं इस मैसेज को भेजने वाले। रेलवे कॉलोनी लोनी से आफताब उल्लाह डोम, अल्ताफ, सोनम नाज डोम, सरफुद्दीन, फातिमा वली और बेबी अंसारी ने हमें मैसेज भेजा। आइए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
2: अब दोनों एक ही ऐप पर।
0: डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने, मेरे यानी आनंद के साथ आकाशवाणी हिसार FM बैंड 102.3 MHz पर। यदि आपने अभी तक मुझे मैसेज नहीं किया तो उठाइए फोन और नंबर नोट कीजिए हमारा 9729253272 9972। गांव कुम्हारखेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शायना हसन, अक्सा नाजिया, आफिया इब्राहिम, सद्दाम और अदीब हसन ने हमें मैसेज किया है। हमारे पास अगला मैसेज आया है SM जावेद गुमला झारखंड से, ये हमारे साथ हैं। इस वक्त प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक पैठन से डॉक्टर सुरेश, अनीता, आरती, प्रसाद, सोनल और बेबी सिया। जालना शहर से सोमनाथ, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता जाधव ने हमें मैसेज किया है। गांव ढाणी ढोला लोहारू से राजेंद्र सीलवाल और उनका पूरा परिवार हमारे साथ है। इस वक्त जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश, प्रीतेश और पूरा संघई परिवार ने मैसेज किया है हमें। और अगला मैसेज हमारे पास आया है एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी शाहदा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीरा मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित केशु रिधान खुराना ने हमें मैसेज किया है। एक और मैसेज हमारे पास आया है मुंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी है लिखने वाले, रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित और गर्वी, सेक्टर 5, सूर्य नगरी, जोधपुर, राजस्थान से हमें हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त। अगला मैसेज हमारे पास आया है

एमडी पतोड़ा, तहसील अनूपगढ़ से मंगल जनागल, राही श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु और डॉक्टर सुनील हैं इस मैसेज को भेजने वाले। अगला मैसेज गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन और परिवार के अन्य सदस्यगण। अग्रोहा से महेंद्र सिंह हुडा, दयावंती हुडा, नरेंद्र हुडा, अंकिता, सुमु, तानिया हुडा और उनका पूरा परिवार हमारे साथ है इस वक्त। गांव चौधरीवास हरियाणा से मांगेराम सतौड़, रितु सिंह, हिमानी, शुभम और यश कुमार भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी, जे एस नायक, शोभा और समस्त डागला परिवार। राकेश सोढ़ी, गगन सोढ़ी, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद विलेज थुहान से हमारे साथ हैं इस वक्त। और एक और मैसेज देंगे अगले गाने से पहले, जो कि हमें भेजा है मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा ने। आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद पर कार्यक्रम का अगला गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने आकाशवाणी हिसार एफ एम बैंड 102.3 MHz पर मेरे यानी आनंद के साथ, और आपका मैसेज अभी तक नहीं मिला है मुझे। जी हाँ, उठाइए फ़ोन और अभी मैसेज कीजिए। नंबर है मेरा 9729253272 9792-93-52-53-272। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, कीर्ति भारती, वर्षा सुमन और माधुरी किरण ने हमें मैसेज किया है। अगला मैसेज हमारे पास आया है भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा। आपसे रिक्वेस्ट थी, आपका एक बार मैसेज पढ़ा जा चुका है, तो प्लीज़ आप दोबारा मैसेज मत भेजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजान लल्ला, फरहान लल्ला और उनका पूरा परिवार हमें सुन रहा है इस वक्त। भुईवाड़ा पैठन से चांद मामू, अदनान, नुमान, शेख गुफरान और शेख फुरकान ने हमें मैसेज भेजा है। अगला मैसेज हमारे पास आया है जिला वारंगल से मोहम्मद खजा रिजवानुद्दीन, मोहम्मद खजा फासीउद्दीन और आयशा तबस्सुम जुबेरिया हैं इस मैसेज को भेजने वाले। हरगोविंद नगर नवाशहर पंजाब से सुरेंद्र संधू, अनीता, रोहित, रितेश, शिखा, प्रीतिशा और मैक्स संधू ने मैसेज भेजा है हमें। जनकपुर सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो भी हमें इस वक्त सुन रहे हैं। तेलंगाना से मोहम्मद अमजद और मुनीरू नीसा ने हमें मैसेज भेजा है। गांव जाखुद राजस्थान से समुद्रलाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक और कुमारी पूजा हमारे साथ हैं। जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल, आशुतोष और अभिनव ने हमें मैसेज किया है। खुशनुमा नमस्ते ऐसा कहते हैं गुरमीत सिंह मीता, साउथ एक्सटेंशन, नई दिल्ली से। रोहन जायसवाल और आर्य जायसवाल जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। अगला मैसेज हमारे पास है अम्बाला से, गांव कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, कुरक्रियत, गुरशब्द सिंह राहुल हैं इस मैसेज को भेजने वाले। सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभुजोत मिशन और बेबी जानविका ने हमें ये मैसेज भेजा है। एक और मैसेज जो हमारे पास आया है हिंगोली महाराष्ट्र से, शाहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे हैं इसको भेजने वाले। गांव जोगीवाला, श्रीगंगानगर से प्रेम सहारन, मोनिका और मनीष सहारन हमें सुन रहे हैं। गांव चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा। कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी पूजा तामोरिया, राधिका, प्रभा देवी तामोरिया और मास्टर अल कबीर ने हमें मैसेज भेजा है। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला जिला फिरोजपुर से हमारे साथ हैं स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अभिराज सिंह, गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह ने हमें ये मैसेज भेजा है। तो अगला मैसेज आया है हमारे पास जो मैं पहले पढ़ चुका हूँ इसलिए दोबारा नहीं पढ़ूंगा। मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून हैं भेजने वाले। पदमपुर जिला गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति और भूमिका ने हमें मैसेज भेजा है। तो आइए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन करे शोर।
0: हाँ जी यार।

0: when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
1: ये आवाज है भारतीय संस्कृति की।
2: पधारो हमारे देश रे।
1: ये आवाज है अनेकता में एकता की।
3: मिले सुर मेरा तुम्हारा।
1: ये आवाज है भारत के अदम्य साहस की।
4: At 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range.
1: ये आवाज है नए भारत की। 90 वर्षों से भारत की आत्मा की आवाज आकाशवाणी।
5: आप सुन रहे थे कार्यक्रम व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने, मेरे यानी आनंद के साथ। कुछ लोगों के नाम रह गए पर कोई चिंता की बात नहीं है, फिर मिलते हैं रात्रि 10 बजे। जी हाँ, आज रात 10 बजे आप फिर जुड़ सकते हैं मेरे साथ। कार्यक्रम रहेगा ई फरमाइश और हमारा ईमेल आईडी है radiohisar यानी radiohisar@gmail.com। आपकी प्रतिक्रियाएं अपेक्षित हैं हमेशा की तरह। नंबर हमारा वही है 9729253272 यानी 97292-53272। अब अपने दोस्त आनंद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। समाचार संध्या के लिए आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र। अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्यागपत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठी की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना, ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को

0: राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
1: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं, जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देबरॉय को पार्टी के प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देबरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देबरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थगंडी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग हैं, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
4: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की।

बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिरला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिरला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस क्षेत्र में छिपे होने की आशंका है। छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर गोलीबारी की गई। आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
2: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
3: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत और इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है।
2: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
3: जी हाँ, ऐसे ही कालजई अशरार ने उन्हें करोड़ों दिलों तक पहुंचाया। उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। उर्दू अदब की ये आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
2: अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।
1: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
4: जो हीटवेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण पश्चिम भारत के क्षेत्र में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूरी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीट वेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया है।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निम्हान ने श्योक मेहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्यागपत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर दाखला अमित शाह ने मुल्क में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के सरकार के अहद को दोहराया है। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि वो रियासत में सरगर्म सियासत में शामिल रहेंगे। मरकज ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 रियासतों के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं। नामवर उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने शिमाल मगरबी भारत के कई हिस्सों में गर्मी का जोर कम होने की पेशगोई की है। कौमी राजधानी खत्ते में आज शाम बारिश हुई और गरज चमक के साथ छींटे पड़े। और वियतनाम में 17 साल तक की उम्र के पहलवानों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में दो भारतीय पहलवान सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से।

अभी आपने मोहम्मद रफी की आवाज में अब्दुल्ला फिल्म का गाना सुना, गीत आनंद बख्शी का था, संगीत आर डी बर्मन का। आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार और एनिट की आवाजों में सत्ते पे सत्ता फिल्म का गाना। गीत गोशन बावरा ने लिखा है, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनो कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। ये बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में भर।

आज के फनकार कार्यक्रम में सभी दोस्तों को यूनुस खान का नमस्कार। आज उस फिल्मकार की कहानी जिसकी फिल्में इस शेर के साथ

0: शुरू होती है।
1: मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।
0: बहुत बरस पहले की बात है, गुजरात में बड़ौदा के पास एक गांव में एक गरीब परिवार में एक लड़का रहता था। उस लड़के को फिल्मों का ऐसा शौक था कि बड़ौदा से निकलने वाली किसी ट्रेन में सवार हो जाता और आसपास के गांव या कस्बे में पहुंच जाता, लाइन से एक दो फिल्में देखता और लौटती ट्रेन से चुपचाप वापस आ जाता। किसी को कुछ पता नहीं चलता। घर वाले ये सोचते कि ये लड़का यहाँ वहाँ भटकता रहता है, जाने किन किन के साथ खेलता रहता है। ऐसे ही एक दिन वो ट्रेन में बैठा, मुंबई की तरफ जाने के लिए इरादा ये था कि वो कभी वापस नहीं आएगा। पिताजी को पता चल गया, पिताजी ने जमकर कुटुंबस की और वापस ले आए। आज के फनकार कार्यक्रम में आज रोचक दास्तान

महबूब खान का जन्म 9 सितंबर 1906 को बड़ौदा के पास सरार गांव में हुआ था। बहुत सामान्य सा परिवार था, छोटा मोटा काम था, बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, जिंदगी खुशनुमा थी। जैसा कि हमने आपको बताया, महबूब खान की बचपन की जिंदगी में ट्रेनें चला करती थी और उन ट्रेनों पर सवार होकर वो आसपास जाते, फिल्में देखते और वापस लौट आते। जहन में बस ये चलता रहता कि किसी तरह से वो खुद को पर्दे पर देख पाए, शौक अभिनय करने का था। तो भाई ये सिलसिला जारी रहा। पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी थी नहीं, इसलिए कायदे से पढ़ाई लिखाई हो न सकी और फिर हुआ यूं कि आसपास के शहरों में फिल्में देखना होता रहा। समय बीतता गया। हुआ यूं कि महबूब खान की दोस्ती एक रेलवे गार्ड से हो गई थी और उस रेलवे गार्ड ने उनको पूरी तरह से यकीन दिला लिया कि उनके भीतर फिल्मी पर्दे पर अभिनेता बनने के गुण हैं और उन्हें भाग जाना चाहिए मुंबई। हुआ यही, 16 बरस की उम्र में महबूब खान मुंबई भाग आए और सिनेमा में अपना नसीब आजमाने लगे। कांस्टेबल पिता को पता चल गया, वो सीधे मुंबई आए, अपने बेटे को ढूंढा, उसका कान पकड़ा और उसको वापस बड़ौदा ले गए। वहां जबरदस्ती महबूब खान की शादी कर दी गई, ये सोचकर कि वो बस यहां बंध जाएंगे और सिनेमा के अपने जुनून को जहन से निकालकर फेंक देंगे। बहुत जल्दी महबूब खान एक बेटे के पिता भी बन गए, लेकिन जिम्मेदारी नहीं आनी थी सो नहीं आई और आखिरकार महबूब खान ट्रेन में सवार होकर आ पहुंचे।

मुंबई में महबूब खान उस जमाने के वीटी स्टेशन के पास ज्योति स्टूडियोज के बाहर खड़े रहते और इस फिराक में रहते कि किसी तरह से स्टूडियो में घुसने का मौका मिल जाए, बाकी का काम वो निपट लेंगे और किसी तरह से अभिनेता तो बन ही जाएंगे। लेकिन ये हो नहीं रहा था। दिन पर दिन बीत रहे थे, महबूब खान रातें प्लेटफॉर्म पर सोते हुए गुजारते, तरह तरह की परेशानियां होती। वो हौसला नहीं हारते, हर सुबह ज्योति स्टूडियोज के सामने खड़े हो जाते। एक दिन गार्ड सचमुच इंप्रेस हो गया और उसने महबूब खान की मुलाकात करवाई आर्देशिर ईरानी से, जो उन दिनों भारत की पहली बोलती फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे। यहां से महबूब खान की गाड़ी चल पड़ी क्योंकि आर्देशिर ईरानी ने उन्हें बतौर एक्स्ट्रा काम दिया। सन 1927 में ये फिल्म थी अली बाबा और 40 चोर। इसके बाद वो क्राउड का हिस्सा बनते रहे, फिर जूनियर आर्टिस्ट बने, फिर सपोर्टिंग रोल्स मिलते रहे और फिर ऐसा मौका आया जब भारत की पहली बोलती फिल्म के हीरो के तौर पर आर्देशिर ईरानी ने महबूब खान को बस चुन ही लिया था। लेकिन फिल्मों में पैसा लगाने वाले और तब के विशेषज्ञ ये मानते थे कि ऐसे लड़के पर दाम नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि बोलती हुई फिल्में बनाना अपने आप में एक बड़ा दाव है। महबूब खान को

रोल से हटा दिया गया। वहीं उन्हें समझ में आ गया कि अभिनय में वो कुछ ज्यादा तीर नहीं मार पाएंगे, उन्हें जिंदगी में कुछ और करना चाहिए। यहाँ से एक नया जुनून शुरू हुआ, अपनी एक स्क्रिप्ट लिखने और उसका निर्देशन करने का। उन्होंने आखिरकार अपनी एक स्क्रिप्ट पूरी की और अलग अलग स्टूडियोज के चक्कर फिर से काटने लगे। प्रोड्यूसर्स उनकी कहानी सुनते, उन पर हंसते और उन्हें दरवाजा दिखा देते। आखिरकार सन 1935 में एक प्रोड्यूसर को उनकी कहानी पसंद आई और तब आई महबूब खान की निर्देशित पहली फिल्म अल हिलाल। ये फिल्म सीसिल बी डिमेलो की जानी मानी फिल्म साइन ऑफ द क्रॉस से प्रेरित थी। फिल्म चल पड़ी और महबूब खान की गाड़ी भी चल पड़ी। लगभग यही दौर था जब चिमनलाल देसाई के सागर मूवी टोन में महबूब खान बतौर विलन काम करते थे और अच्छे खासे पैसे बना रहे थे। इसी दौरान सागर मूवी टोन ने उन्हें निर्देशन का मौका दिया। सन 1936 में महबूब खान ने डेक्कन क्वीन फिल्म बनाई। सन 1939 में आई एक ही रास्ता। सन 1940 में अली बाबा। सागर मूवी टोन के लिए उन्होंने सन 1940 में बनाई अपनी फिल्म औरत।

बाद महबूब खान सागर मूवी टोन और नेशनल स्टूडियोज की फिल्मों का निर्देशन करते रहे। सन 1940 में आई फिल्म औरत महबूब खान के करियर की एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। सन 1942 में महबूब खान ने बनाई फिल्म रोटी और उसके बाद फिल्म नजमा का निर्देशन किया। ये फिल्म साल 1943 में आई थी। इसके बाद उन्होंने तकदीर और हुमायूं जैसी फिल्में बनाई। सन 1946 महबूब खान के निर्देशन में आई फिल्म

अनमोल घड़ी के कलाकार थे नूरजहां, सुरैया और सुरेंद्र। इस फिल्म के गाने तनवीर नकवी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था। 11 नवंबर 1946 को रिलीज की गई ये फिल्म।

1949 महबूब खान के करियर की एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म आई अंदाज। कलाकार थे दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर फरीदुन ईरानी थे। 26 अगस्त 1949 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। ये फिल्म एक प्रेम त्रिकोण थी। इसके गाने मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था।

सन 1952 महबूब खान लेकर आए अपनी बेमिसाल फिल्म आन। इसके कलाकार थे दिलीप कुमार, निम्मी, प्रेमनाथ और नादिरा। संगीत नौशाद का था। ये फिल्म 4 जुलाई 1952 को रिलीज की गई थी।

1954 महबूब खान की फिल्म आई अमर। 1 अक्टूबर 1954 को रिलीज इस फिल्म के कलाकार थे दिलीप कुमार, मधुबाला और निम्मी। संगीत नौशाद।

ऐसा कलाकार जिसने अपनी यात्रा बतौर स्पॉट बॉय शुरू की हो और जिसके जहन में हो अनमोल ऊंचाइयों को छूने के सपने, उस कलाकार ने मुंबई फिल्म उद्योग को दिया हॉलीवुड स्टाइल का पहला फिल्म स्टूडियो महबूब स्टूडियोज। महबूब स्टूडियोज का आगाज सन 1952 में हुआ। मुंबई के बांद्रा में स्थित इस स्टूडियोज में आज भी फिल्मों की शूटिंग की जाती है।

0: भारत के इतिहास में 1957 का अक्टूबर महीना बड़ा मायने रखता है। इसी साल 3 अक्टूबर को यानी 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती अस्तित्व में आई थी और विविध भारती पर प्रसारण शुरू होने के कुल 23 दिन बाद रिलीज हुई थी महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया। रिलीज डेट है 25 अक्टूबर 1957। भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक कालजयी फिल्म। कलाकार नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार। दिलचस्प बात ये कि ये फिल्म महबूब खान की ही 1940 में आई फिल्म औरत का रीमेक थी। इस फिल्म की पटकथा और संवाद एस अली रजा, वजाहत मिर्जा और महबूब खान ने मिलकर लिखे थे। संगीत नौशाद का था, गीत शकील बदायूनी के। मदर इंडिया भारत की एक बेमिसाल फेमिनिस्ट फिल्म। महबूब खान एक स्त्रीवादी फिल्मकार माने जाते हैं, एक ऐसे फिल्मकार जो महिलाओं के पक्ष में खड़े नजर आते हैं, चाहे उनकी फिल्म आन हो, अमर हो, मदर इंडिया हो या औरत। सशक्त नायिकाओं की भूमिकाओं वाली ये फिल्में सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद की जाएंगी। मदर इंडिया को तो एकेडमी अवार्ड्स के लिए शॉर्ट लिस्ट भी किया गया था। ये अलग बात है कि ये फिल्म पुरस्कार जीत नहीं पाई, लेकिन विश्व स्तर पर जितना हंगामा मदर इंडिया ने उस जमाने में किया शायद ही किसी फिल्म ने किया होगा। कुछ गानों की झलक।
1: पर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पाए।

मदर इंडिया जैसी बड़ी लकीर खींचने के बाद महबूब खान ने ज्यादा फिल्में नहीं बनाई। सन 1962 में आई उनकी निर्देशित फिल्म सन ऑफ

एक फिल्मकार जिसे अभी और आसमान छूने थे, जिसे कामयाबी की और बुलंदियां छूनी थी, जिसके सहन में सपनों की फसल लहलहा रही थी, लेकिन वक्त ने उसकी रफ्तार को रोक लिया। 28 मई 1964 को सिर्फ 56 बरस की उम्र में महबूब खान ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। रह गया महबूब खान का सिनेमा और सिनेमा की महबूब खान की विरासत महबूब स्टूडियोज। आज भी महबूब खान को अपने समय से आगे का फिल्मकार माना जाता है। महबूब खान के सम्मान में भारत सरकार ने एक पोस्टल स्टैंप जारी किया था, जो डाक टिकट के संग्रहकर्ताओं के लिए एक अनमोल विरासत है। महान फिल्मकार महबूब खान को

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था फिल्मकार महबूब खान पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।
2: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के प्रसारण। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 102.3 MHz पर। आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम ई फरमाइश। हमारा ईमेल आईडी है radiohisar यानी radiohisar@gmail.com। तो भेजिए अपना पसंदीदा गाना जो आप सुनना चाहते हैं इस कार्यक्रम में हमारे ईमेल आईडी पर, और मुझे इंतजार है आपकी ईमेल्स का। हमारे पास पहली ईमेल पहुंची है चंडीगढ़ सिटी से, सतीश अनेजा और बिमला अनेजा हैं इस ईमेल को भेजने वाले। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साहब इराही, मेहराज जहां ने आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हमें मेल भेजा है। अगला ईमेल हमारे पास आया है मजनू काटिला से, कमल वालूजा, मधु वालूजा, सागर वालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक हैं इस मेल को भेजने वाले। दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखीलाल वर्मा ने हमें मेल भेजा है। अगला ईमेल हमारे पास आया है तालुका निवासा खुपटी महाराष्ट्र से बंडू लोहार, पोपलघट, चंद्रकला और देवीदास पोपल घटाइए। इन सब की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

वेलकम बैक। मैं हूँ आनंद, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ई फरमाइश आकाशवाणी हिसार से। यदि आप भी शामिल होना चाहें इस कार्यक्रम में तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है RADIOHISAR यानी रेडियो हिसार @gmail.com। नज़दीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा ने हमें ईमेल भेजा है। अगला ईमेल हमारे पास आया है छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई दुखनी सदफ जूही इकबाल इमरान अहमद कापसहेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से आमना नसरीन आसमा परी राबिया मंतशा आशु अहमद और समस्त फैमिली जो है उनकी, वो हमें ईमेल भेज रहे हैं। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताड़े वसंतराव भोजने और PS नावकर ने हमें ईमेल भेजा है। अगला ईमेल हमारे पास पहुंचा है दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून और मोहम्मद इरफान हैं इसको भेजने वाले। तो आइए इन सब की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: अर्ज किया है, रांझे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया। रांझे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया और एक जैसी छतों को देख कबूतर ने खत गलत पते पर गिराया। कबूतर की गलती ने बेचारे रांझे को सरे बाजार बहुत पिटवाया। तब हीर ने रांझे को समझाया,
1: अरे बुद्धू, मैसेज ही भेजना था तो ईमेल से क्यों नहीं भिजवाया।
2: RADIOHISAR यानी RadioHisar@gmail.com पर
1: आप भी भेजिए अपने मैसेज ईमेल के माध्यम से अपनी पसंद के गाने सुनने के लिए कार्यक्रम ई फरमाइश में
2: हर मंगलवार शाम 5 बजे
1: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
3: एक बार फिर आपका स्वागत है आकाशवाणी हिसार पर, मैं हूँ आनंद और आपकी ईमेल का सिलसिला जारी है। अगला ईमेल हमारे पास आया है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन, आसना, मोहम्मद कैफ अंसारी और उनका पूरा परिवार जो है वो हमें सुन रहा है। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला ज़िला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और गुरनूर सिंह के साथ हैं शुभदीप सिंह, इन्होंने हमें मेल भेजा है। अगला मेल हमारे पास आया है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय हैं इस ईमेल को लिखने वाले। गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश और युद्धव कड़वासरा ने हमें मेल भेजा है। अगला मेल हमारे पास आया है प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश, अनीता, आरती, प्रसाद, सोनल और बेबी सिया, जालना शहर से सोमनाथ, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता जाधव। आइए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: हिंदुस्तान जमीन है सितारों की।
1: अगर तुम्हारी आरजू एक कमीज है तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा।
2: एक से बढ़कर एक उम्दा फनकारों की।
0: कोई साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है?
3: न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता।
2: तो कोई विज्ञान में अद्वितीय है?
4: Will he be remembered as a great scientist, say La Thomas Alva Edison?
0: कोई कला में उत्कृष्ट है?
2: तो कोई संगीत का शिरोमणि?
0: किंतु कोई है जो इन सब को ले आया है आपके लिए, आपके घर में, आपके बेहद करीब।
2: कार्यक्रम एक शख्सियत,
0: हर सोमवार शाम 5 बजे
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ई फरमाइश आकाशवाणी हिसार FM बैंड 102.3 MHz पर। यदि आपने अभी तक ईमेल हमें नहीं भेजा है तो उठाइए फोन, हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है radiohisar यानी radiohisar@gmail.com। अगला ईमेल हमारे पास पहुंचा है गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख और दानिश शेख हैं इस ईमेल को भेजने वाले। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा ने हमें मेल भेजा है। अगला ईमेल हमारे पास पहुंचा है गंज डुंडवाड़ा से ही मोहम्मद कलीम अंसारी, ज़ाहिरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद यासीन और शमसुल कमर राही हैं इस ईमेल को भेजने वाले। हिंदुस्तान रेडियो मित्र टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा ने हमें मेल भेजा है। अगला ईमेल हमारे पास पहुंचा है शेरवानी स्कूल उत्तर प्रदेश गंज डुंडवाड़ा से ही आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी का। तो आइए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम ई फरमाइश में। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आकाशवाणी हिसार एफ एम बैंड 102.3 MHz पर, मेरे यानी आनंद के साथ। गांव जाखोद से शंभूलाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक का ईमेल हमारे पास पहुंचा है। अगला ईमेल

पास आया है वडिंगेरा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा हैं इस मेल को भेजने वाले। कस्बा बराड़ा, ज़िला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल ने हमें मेल भेजा है। अगला मेल हमारे पास आया है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ ने ये मेल हमें भेजा है। तो एक और मेल लेंगे अगले गाने से पहले, जो कि आया है चौटाला हरियाणा से, दारा पंडित, संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा का। आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद पर कार्यक्रम का अगला गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ई फरमाइश आकाशवाणी हिसार FM बैंड 102.3 MHz पर मेरे यानी आनंद के साथ। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी पसंद का गाना यहाँ बजे तो उठाइए फ़ोन और हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है RADIOHISAR यानी RadioHisar@gmail.com। शुरू करते हैं सिलसिला आपकी ईमेल्स का। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा हमें मेल भेज रहे हैं। अगला ईमेल हमारे पास आया है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान और पूजा परिहार का। कहते हैं कि प्रोग्राम सुन रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन गीत आप सुनवा रहे हैं। तो यकीन मानिए गीत आप ही सुनवा रहे हैं जिनका मैं भी मज़ा ले रहा हूँ, क्योंकि सब गीत आपकी पसंद के ही हैं। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बेबी बॉय हिमाक्ष, ये सब हमें ईमेल भेज रहे हैं। अगला ईमेल हमारे पास आया है गांव फांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी हैं इस मेल को लिखने वाले। गांव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शायना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम सद्दाम और अदीब हसन ने हमें ईमेल भेजा है। एक और ईमेल लेंगे अगले गाने से पहले, जो कि आया है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता का। तो आइए सुनते हैं सबकी पसंद पर कार्यक्रम का अगला गीत।

एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम ई फरमाइश में। यदि आप भी चाहते हैं कि आप के नाम के साथ आपकी पसंद का गाना प्ले हो, तो उठाइए फ़ोन और हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है RADIOHISAR, यानी रेडियो हिसार @gmail.com। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा ने हमें ईमेल भेजा है। और कुछ लोग बार बार बार बार ईमेल क्यों भेजते हैं, ऐसा क्यों आपको लगता है कि यदि आप 10 बार भेजेंगे तो मैं उसे 10 बार ही पढ़ दूंगा? आई डोंट नो। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना लदावली ज़िला मुरादाबाद से हमारे पास मेल भेज रहे हैं। और इन्होंने बड़ा अच्छा कैप्शन दिया है आज के शो को, बेस्ट प्रोग्राम ऑफ द डे, फुल ऑफ एनर्जी, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगला ईमेल हमारे पास आया है जो कि हमें भेजा है समस्तीपुरा बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से सोनम सिंह और अनामिका सिंह हैं इस मेल को भेजने वाले। साकेत जैन ने हमें ईमेल भेजा है, ये नहीं बताया कि वो कहाँ से भेज रहे हैं मेल को। गांव और डाकघर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और कमरजीत कौर ने हमें मेल भेजा है। अगला मेल हमारे पास आया है ज़िला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह का। एक और ईमेल लेंगे जो कि हमारे पास आया है मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा का। तो आइए इन सब की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम ई फरमाइश आकाशवाणी हिसार एफ एम 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। मेरे यानी आनंद के साथ आपकी प्रतिक्रियाएं अपेक्षित हैं। हमारा ईमेल आईडी है radiohisar@gmail.com। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं एफ एम 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजने को है। अब समाचार होंगे, प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की।

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की।

1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हांगकांग में आज से शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकेंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। 4 दिवसीय यह चैंपियनशिप 31 मई को संपन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।